आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
3: किसी आदमी ने कर्ज लिया, आसानी से मिला, इसलिए ज्यादा लिया और खर्चा करते हुए कोई संकोच नहीं रखा। बाद में देखा कि कर्जा चुकाने की उसकी न तो ताकत है और न ही गुंजाइश। दिन रात कर्जे की चिंता इतनी बड़ी कि नींद हराम हो गई। कर्जा चुकाने का जब कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ा तब उसने अपना रुख ही बदल दिया। उसने ये बात ही भूलने की कोशिश शुरू कर दी कि उसके सिर पर कर्जा है। इसी में आसानी भी थी। अब कर्जे की बात उसके ध्यान से ही बाहर रहने लगी। अगर किसी ने और खासतौर से उसके हिसाब नवीस ने उसे कर्जे का स्मरण कराया

0: तो बड़ा नाराज होता था। कर्जे का जिक्र तो क्या, उसके स्मरण को भी टालना, यही उसके जीने की तरकीब हो गई। भूल जाने से जिस तरह कर्ज नहीं टलता, उसी तरह मनुष्य अपनी मृत्यु को चाहे जितनी भूलने की कोशिश करे, मृत्यु नहीं टलती। लोग कहते ही हैं, कर्जा और मृत्यु दोनों की यात्रा दिन रात चलती ही रहती है। मृत्यु की बात, मृत्यु का स्मरण टालने से मनुष्य ने कभी कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ खोया है। मृत्यु का स्मरण अगर बहुत तीव्रता से जागा रहे तो मनुष्य गलतियों से और गुनाहों से बहुत कुछ अपने को बचा सकेगा, उसके जीवन में गहराई आएगी। फिजूल बातों में वो अपना दिन बर्बाद नहीं करेगा और जीवन को कृतार्थ बनाने के उसके प्रयत्न में उसे सफलता मिलेगी। जब मृत्यु अनिवार्य है, तब उसी को हम अपने जीवन का चौकीदार क्यों न बनाएं? जीवन जीने का अच्छा तरीका यही है कि मनुष्य मृत्यु को अपने साथ लेकर उसके साथ बातचीत करते करते जीवन यात्रा चलाए। जीवन के साथ मृत्यु तो आती ही है, जिस तरह वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, दिन की प्रवृत्ति के अंत में नींद, नाटक समाप्त होते ही जैसे पर्दा, यात्रा खत्म होते ही जैसे इष्ट के दर्शन, उसी तरह जीवन के अंत में मृत्यु का आगमन होता ही है। गीता कहती है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, तीनों को समान समझना। अकेले दुख से जीवन असत्य और विकृत हो जाएगा, अकेले सुख में जीवन विकृत हो जाएगा। सभी प्राणियों के लिए और खास करके मनुष्य के लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक से महत्व के हैं। जैसे सुख केवल पोषक है और दुख बोधक है, सुख जीवन रूपी महासागर पर तैरना सिखाता है, दुख उस महासागर में डुबकी लगाकर अंदर से महान तत्व रूपी मोती लाने की कला और हिम्मत देता है। मृत्यु के महासागर में डुबकी लगाकर ही तत्ववेता मनीषी और अपने समय के शिल्पी समय से ऊपर उठे हैं, मृत्युंजय कहलाए हैं। गीता में कहा गया है, जैसे कपड़े पुराने होने पर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह एक देह के जीर्ण होने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरी देह ले लेता है। जो कोई भी जीवन और मृत्यु के परिवर्तनशील संस्कार को समझ लेता है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, अपने हर पल को पूरी सामर्थ्य के साथ जीता है। तत्ववेता काल की निरंतरता में रमता है, मनीषी अतीत को भविष्य से जोड़ता है और विज्ञानी अपने समय के नए नए रूपों में उसको रचता है। मृत्यु एक भय है यदि हम जीवन और समय के प्रति ईमानदार नहीं हैं। मृत्यु एक दोस्त बन जाती है जब हम जीवन और समय के प्रति ईमानदारी निभाते हैं।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जीवन की निरंतरता के संबंध में विचार, वाचक स्वर था प्रेम कुमार सडाना का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए देवों में प्रथम पूजनीय विघ्नों का नाश करने वाले कार्य सिद्ध करने वाले भगवान गणेश की वंदना करते हैं। सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

अयोध्या के दशरथ नंदन हैं रघुनंदन भगवान श्री राम, जिन्होंने असुरों का नाश किया, अधर्म और पाप का विनाश किया, जिनके सुमिरन मात्र से जीवन आनंदित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम को नमन करते हुए सुनते हैं ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। माँ गंगा का कल कल करता जल अमृत के समान है। माँ गंगे जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, जो हर मनोकामना पूरी करती है। आइए सुनते हैं ये गंगा गीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में ये मसीही भक्ति गीत। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो रहे हैं। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री रामचरित मानस गान का संगीत पदपाठ।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थे सुरेश वाडकर और साथी। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 8 बजे इस सप्ताह संसद में रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। नमस्कार देहरादून, ये दैनिक कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8:15 पर। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी श्रीमती सुधा थपलियाल की वार्ता। विषय रहेगा जीवन की सांझ में भी जोश और जज्बा बनाए रखें। साथ ही बहनें सुन पाएंगी ब्यूटी टिप्स। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:10

मिनट पर आज के आकर्षण रहेंगे आज की बात फिल्म संगीत और कैंपस से। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा सध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम स्टूडियो से बहर।

किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा हेलो किसान के अंतर्गत डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल से मत्स्य पालकों और किसानों से फोन इन बातचीत। समय एक बार फिर से सुन लीजिए शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा निवेदिता घोष का सितार वादन। सुबह 7:30 पर आप सुन पाएंगे शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गंभीर दास के गाए जौनसारी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में पवन सिंह की गायी रागिणी सुनवाई जाएगी सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा कव्वाली। कलाकार होंगे गुलाम हुसैन और साथी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों के मोती प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:10 पर। इसमें आज की थीम रहेगी मौसम। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे सुबह 9 बजे सदाबहार कार्यक्रम में। 10:12 पर दिन में 11 बजे वर्षा फरमाइश के अंतर्गत। 1:15 पर 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। दिन में 3 बजे गाने नए तराने। शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम को 7:40 पर रात्रि 8:30 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह की 6:55 होने को अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26 पारितम्। लोकसभया एतद् ह्यः अनुमोदितम्। राज्यसभया च सोमवासरे एव पारितम्। विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति धनदाने विलम्बनस्य निवारणम्, विवादसमाधानस्य च सरलीकरणम्। अस्य विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येकः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रोपक्रमः व्यापार प्राप्य विपणन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः वस्तूनां सेवानां वा क्रयण सम्बद्धानां सर्वेषां देयानां निस्तारणं करिष्यति। विधेयकानुसारं विवादस्थितौ मध्यस्थता विफला भवति चेत् तस्यै सन्दर्भः मध्यस्थतायाः समाप्तेः दिनांकात् 30 एव करणीयः। नीट सम्बद्धे छात्रान्दोलने कथितारक्षकैः कृतकार्याणि सहितेषु विविधविषयेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं पुनरपि बाधितम्। विपक्षसद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students, and 587 PhD scholars. The Prime Minister said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institution. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Director IIT Delhi Rangan Banerjee said that Mr. Modi will present the institute's most prestigious awards, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited in Mumbai today. The Home Minister will also interact with representatives of state urban cooperative bank federations and district associations of Maharashtra. During the program, a memorandum of understanding will be exchanged between the corporation and the National Forensic Sciences University. The collaboration will play an important role in strengthening cybersecurity, technological capabilities and institutional capacity in the urban cooperative banking sector. India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
3: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the Parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
2: Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. Payments Council of India has announced that UPI will continue to be free of consumers. In a statement, the Payments Council affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The Payments Council of India clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. The first formal talks between the Jharkhand government and the students' delegation were held late last evening amid ongoing agitation over alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations. During the meeting, the students reiterated their demands for transparency in the recruitment examinations and impartial probe into the alleged irregularities and comprehensive reforms in the recruitment process. Four state ministers and the development commissioner represented the government in talks. The minister said the government will take positive steps on the students' demands and assured them that all issues raised during the meeting would be placed before the chief minister. The students described the talks as positive but said their sit-in protest and hunger strike would continue until a written decision is taken and concrete action is initiated on their demands. The US Senate has voted overwhelmingly to approve a bill to punish Russia and key buyers of its petroleum products, such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are top five importers of Russian oil and gas. In badminton, Indian shuttler Ashmita Chaliha will face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles semi-finals of the Korea Masters Super 300 tournament in Assam this morning. Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj won their respective quarter-final matches to advance to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
4: Yeah. एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों के मोती। आज की गीतों की थीम है मौसम।

किशोर थे उदित नारायण और साधना सरगम की फिल्म का नाम था नाड़ी। गीत था समीर का और संगीत आनंद मिलिंद का था। गीतों के मोती कार्यक्रम का ये अगला गीत आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की फिल्म का नाम स्वर्ग से सुंदर। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये था फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती। आज के गीतों की थीम थी मौसम। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और कांवड़ मेले में हरिद्वार से गंगाजल लेने वाले शिव भक्तों की संख्या 2,64,00,000 के पार हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योशिता पांडे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को देहरादून में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और राज्य देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने।

0: साइबर अपराध नियंत्रण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस देश भर के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में गत 6 अगस्त को आयोजित समीक्षा बैठक में 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को यह उपलब्धि हासिल हुई है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की विभिन्न राष्ट्रीय साइबर पहलों की प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया। इसमें साइबर अपराध प्रबंधन, सूचना साझाकरण, साइबर जागरूकता, तकनीकी क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय साइबर हॉटस्पॉट विश्लेषण सहित विभिन्न मानकों को शामिल किया गया। उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन अधिकांश प्रमुख मानकों पर प्रभावी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर उत्तराखंड पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और प्रतिबद्धता से राज्य में नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड पुलिस भविष्य में भी साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने हर की पैड़ी क्षेत्र के विभिन्न ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और भोजनालय का औचक निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, कर्मचारियों की स्वच्छता और लाइसेंस समेत अन्य मानकों की जांच की। कुछ स्थानों पर एक्सपायरी और बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि होटल और ढाबा संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 35 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
1: कावड़ को देखते हुए कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है हमारी। हम लोगों ने जरा की कैंपेन निरीक्षण किया, जिसमें हमने 9 सैंपल की जांच के लिए और वहाँ पे मिर्च पाउडर था जो जिसमें जो संदिग्ध लग रहा था, जिसमें मिलावट की आशंका था, सैंपल भी लिया और उसको हमने डिस्टर्ब भी कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने रोड़ी बेल वाला और आसपास का क्षेत्र, रोड़ी बेल वाला घर की पेड़ के आसपास निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो भी कमियाँ पाई गई, मौके में कई नोटिस भी जारी किया गया और एक जगह हमें जो बंद के पैकेट है काफ़ी मात्रा में हमको जो फंगस लगे मिले, उसको हमने मौके में डिस्टर्ब कर दिया और मौके उनको नोटिस जारी किया। ये लगातार आप देखिए, लगातार हमारा अभियान 15 जुलाई से लेकर हमारा अभी तक चल रहा है।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही संबंधित विभागों को एक मंच पर लाने और स्किल हब के लिए एक डैशबोर्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव कौशल विकास सी रविशंकर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 119 ITI संचालित हैं, जिनमें से 90 को पोर्टल पर मैप किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और भाषा कौशल देने की तैयारी की जा रही है। वहीं रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अब तक 162 निजी नियोक्ताओं को जोड़ा जा चुका है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। अठावले ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं ने नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नशा मुक्ति केंद्रों, वृद्धजनों के कल्याण, वित्तीय समावेशन और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है। कांवड़ मेले में अब तक हरिद्वार से गंगा जल लेकर प्रस्थान करने वाले शिव भक्तों की संख्या 2,64,00,000 को पार कर गई है। मेले के कल 9वें दिन 44,38,000 से अधिक कांवड़ियों ने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने

0: तब के लिए रवाना हुए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कांवड़ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से तैनात हैं।
1: मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स कार्य कर रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार जनपद से प्रस्थान कर चुके हैं। जो कांवड़ मार्ग है और जो हमारा हाईवे है, वहाँ पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। शौचालय हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, खाने पीने की सुविधाएं हो, सफिशियंट लाइट आदि का इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है और ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स एक टीम के द्वारा कार्य करके कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराएं। सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं, सभी गैर सरकारी संस्थान भी हैं, एनजीओ हैं, कई उनके द्वारा भी शिविर लगाए गए हैं और आम जनता जो है
0: उधर उत्तरकाशी जिले में कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अब तक 35,000 से अधिक शिव भक्त गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुखी यात्रा कर चुके हैं। वहीं श्रद्धालु यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन की सराहना की।
2: मैं गौमुख से जल लेकर के और यहाँ तक आ चुका हूँ, मनेरी डैम तक। मैं बहुत आनंद में आया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे उत्तराखंड सरकार से बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय।
3: हम झाला में पिछले 9 सालों से सेवा लगाते आ रहे हैं, कांवड़ सेवा। इस बार देखा मैंने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है, प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 12 दिन का शिविर लगा के आ रहे हैं।
0: अल्मोड़ा के युवा नवाचारी रवि टमटा ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का सफल ट्रायल कर नई उपलब्धि हासिल की है। रवि ने स्वयं निर्मित एक सीट वाले फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काइनेक्स की सफल उड़ान भरकर तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित ट्रायल के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के मौजूद रहे। प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा मानकों के साथ ट्रायल उड़ान संपन्न हुई। पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर से संचालित यह फ्लाइंग व्हीकल स्वच्छ और सतत तकनीकी की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल से रवि टमटा से बातचीत कर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नवाचार प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और कांवड़ मेले में हरिद्वार से गंगा जल लेने वाले शिव भक्तों की संख्या 2,64,00,000 के पार हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: .5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गंभीर दास के गाए जौनसारी लोकगीत। लीजिए कार्यक्रम में पहले सुनिए जौनसारी महासुवंदना, कलाकार गंभीर दास।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.GOV.IN पर प्राप्त कर सकते हैं।

शैल संगीत आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे गंभीर दास का गाया जोन सारी हारुल गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं इनका गाया कार्यक्रम में ये अगला जोन सारी लोकगीत।

0: गंभीर दास के गाय से जौनसरीलो गीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा AI, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्रीमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्री ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
6: UPI के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
7: We have seen the comments.
8: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
7: Regulate the flow of foreign funds.
3: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
8: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
3: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और GSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र

0: प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
4: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अनापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
8: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honors, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
9: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. It highlighted that UPI has become a critical national digital infrastructure used daily by many citizens. The PCI further noted that as transaction volumes continue to grow, sustained investment in security, resilience, innovation, fraud prevention and infrastructure will remain essential to ensure UPI reliably serves consumers and businesses for years to come. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
10: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
7: On safety and security of Indian vessels and seafarers, Mr. Jaiswal said, New Delhi attaches high priority to the issue. He said Indian missions all across Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for a safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
10: While we are coordinated with Ministry of Shipping and local authorities in West Asia in the Gulf region, we continue to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways. We also call upon all parties to refrain from targeting civilian infrastructure and civilians, especially commercial vessels and seafarers.
7: Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited today in Mumbai. The Home Minister will also interact with the representatives of State Urban Cooperative Bank Federations and District Associations of Maharashtra. During the program, a memorandum of understanding will be exchanged between the corporation and the National Forensic Sciences University. The collaboration will play an important role in strengthening cybersecurity, technological capabilities and institutional capacity in the urban cooperative banking sector. Mr. Shah will later attend the BSE International Convention Center alongside Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. He will also inaugurate a security operations center to strengthen the cyber security of urban cooperative banks. Union Education Minister Prahlad Joshi has reaffirmed that government is committed to ensure timely and effective execution of programs aimed at strengthening India's education ecosystem. He said this while chairing a meeting with senior officials of the Education Ministry held last night after returning to New Delhi from the 13 BRICS Education Ministers meeting. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed various ongoing initiatives of the ministry and discussed implementation priorities to ensure their timely and effective execution.

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार देहरादून। सुबह के 8:30 और मैं पुष्पा पुंडीर एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। और अगले आधे घंटे तक यानी कि 9 बजे तक मैं रहूँगी आपके साथ। श्रोताओं, आज 8 अगस्त का दिन हिंदी साहित्य के लिए एक ख़ास दिन है। आज ही के दिन साल 1915 में जन्म हुआ था साहित्यकार भीष्म साहनी का। प्रगतिशील हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार भीष्म साहनी एक लेखक होने के साथ ही अनुवादक, संपादक और अध्यापक भी रहे। उनकी रचनाओं में आम आदमी की जिंदगी, समाज की सच्चाई और मानवीय संवेदनाएं बेहद सहजता से दिखाई देती हैं। उनके कालजयी उपन्यास तमस ने तो हिंदी साहित्य में एक अलग ही पहचान बनाई। साल 1973 में प्रकाशित ये उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी और उस दौर की सामाजिक उथल पुथल को बेहद संवेदनशीलता से सामने लाता है। बाद में निर्देशक गोविंद नहलानी ने इस पर एक धारावाहिक भी बनाया। तमस के लिए भीष्म साहनी को साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीफ की दावत अमृतसर आ गया है, वांगचू, झरोखे, मैयादास की माड़ी, हानुष और कई अन्य रचनाएं उनकी साहित्यिक विरासत का हिस्सा हैं। 11 जुलाई साल 2003 को भीष्म साहनी इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे साथ हैं। महान साहित्यकार भीष्म साहनी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार देहरादून। सुबह के 8:36 और 38 सेकंड हो चुके हैं और अब आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में आज क्या कुछ है खास आपके लिए। आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर कॉलम राइटर चंद्रनाथ मिश्र संग बातचीत हम करेंगे। सावन के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को लेकर बात होगी मेडिटेशन और योगा इंस्ट्रक्टर प्रमिला रावत से। कुछ मधुर गीत भी हम आपको प्रोग्राम में सुनवाएंगे, लेकिन पहले कुछ स्थानीय महत्वपूर्ण खबरें, इन पर नजर डालते हैं अखबार के पन्नों से। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि, श्रमिकों पशुपालकों को दी सौगात। कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर। अनुसूचित जाति के छात्रावासों के संचालन की नियमावली मंजूर। उत्तराखंड में नकली डेयरी उत्पादन और बिक्री पर रोक, उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पाद अब नहीं बिकेंगे। यमुना टोन्स में आई गाद, 19 घंटे बाद शुरू हुई 5 परियोजनाएं। डाक पत्थर बैराज के 12 गेट खोलकर निकाला गया मलबा, 74,803 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। देहरादून में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा, बुजुर्ग से 21 लाख रुपए ठगे। प्रदेश भर में 116 मुख्य मार्ग बंद। प्रदेश में शुक्रवार को 116 मार्ग बंद रहे, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 6, चमोली में 16 मार्ग बंद, तो वहीं देहरादून में 18, नैनीताल में 7, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग और टिहरी में 7 और उत्तरकाशी में 21 मार्ग बंद रहे। और अब हाल मौसम का। प्रदेश के मैदानी जिलों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। देहरादून में 27 डिग्री अधिकतम तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा तापमान। ये थी कुछ खबरें देहरादून शहर और राज्य से जुड़ी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: श्रोताओं, सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली से भर उठती है और वातावरण में भक्ति का रंग भी घुल जाता है। भगवान शिव की आराधना से जुड़े इस महीने का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही सावन हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा है। झूले, लोकगीत, मेल मिलाप और त्यौहार इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। आखिर सावन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन और योगा इंस्ट्रक्टर प्रमिला रावत से। मैम, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार देहरादून में।
1: जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी, तो सबसे पहले प्रमिला रावत जी, यही आपसे पूछेंगे, यही आपसे जानना चाहेंगे, यही आपसे सवाल है हमारा कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों माना गया है?
1: देखिए, सावन का महीना जो है ना, शिव को समर्पित माना जाता है ना। इसके अतिरिक्त प्रकृति के अनुसार सावन का महीना वर्षा का है ना, तो तब क्या होता है, सब नदियाँ, जल स्रोत सब पानी से भर जाते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। तो सावन का महीना आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति और श्रद्धा को भी एक साथ जोड़ता है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सावन के महीने में सभी मंदिरों में खूब पूजा पाठ होती है, खूब चहल पहल रहती है। तो इस माह लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, इसके साथ ही क्या है कि ध्यान भी करते हैं, जप और पूजा के द्वारा भी लोग जो है ना अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिव को ना त्याग और संयम का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए लोगों के मन में शांति और सकारात्मकता लाने के लिए सोमवार के व्रत रखते हैं लोग, और महामृत्युंजय का जाप करते हैं, और अधिकतर मंदिरों में जो है यज्ञ अनुष्ठान भी होते हैं, चलते रहते हैं सावन के महीने में। और सावन के महीने में एक रुद्र पूजा का भी बहुत महत्व होता है, तो रुद्र पूजा भी की जाती है। तो सरल शब्दों में कहें तो सावन मास आत्मनियंत्रण और भक्ति दोनों का संतुलन सिखाता है हमें।
0: जी, आपने कहा कि आत्मसंतुलन और भक्ति और ध्यान की भी आपने बात की, तो आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें सावन का महत्व कितना प्रासंगिक है?
1: देखिए, आज जो है ना, हर व्यक्ति का जीवन कितना व्यस्त है ये हम सभी जानते हैं ना, और लेकिन इस तनाव के बीच भी, इस व्यस्तता के बीच भी सावन का महीना ऐसे है ना कि लोग जो है किसी भी तरह से मंदिर तो अवश्य जाते हैं, पूजा जप के लिए भी समय निकालते हैं। तो सावन का महीना हमें कुछ पल रुककर जो है अपने मन, परिवार और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है।
0: जी बिल्कुल, आपने कहा कि परिवार से जुड़ने का मौका देता है ये महीना, प्रकृति से जुड़ने का मौका देता है और कहीं ना कहीं समाज से भी जुड़ने का मौका देता है। क्या महत्व है सामाजिक सावन के महीने का?
1: देखिए, वैसे देखा जाए तो सावन का महीना लोगों को आपस में जोड़ने का महीना है ना। कैसे, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण तो अभी देखिए, उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, और कांवड़ यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, चलकर जाते हैं गंगा जल लेने और अपने आराध्य को अर्पित करते हैं जा करके। और इसके साथ ही भजन कीर्तन और साथ में सामूहिक पूजा होती हैं। इस माह में लोग वृक्षारोपण का भी आयोजन रखते हैं। तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं तो इससे सामाजिक एकता तो मजबूत होती ही है, और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना भी बढ़ती है।
0: सावन और प्रकृति का रिश्ता भी बहुत गहरा माना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: सावन और प्रकृति का रिश्ता, देखिए जैसा कि सभी जानते हैं कि सावन जो है वर्षा ऋतु का समय है, और इस समय धरती चारों ओर हरियाली से भरी रहती है, हरा भरा चारों ओर रहता है, सूखी नदियाँ और जल स्रोत जो हैं वो पानी से भी भर जाते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं। तो हमारी संस्कृति में ना प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, और इसलिए इस महीने में वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण की रक्षा करना, इस तरह के संदेश भी हमें मिलते हैं।
0: बहुत धन्यवाद प्रमिला रावत जी आपका, आप हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़े और अपने विचार हमारे साथ आपने साझा किया, हमारे श्रोताओं संग साझा किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: आज का दिन भारतीय इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, करो या मरो, इस नारे के साथ गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा और तीसरा आंदोलन शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने के लिए 1942 में सबसे लंबी लड़ाई की शुरुआत की गई थी। और आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कॉलम राइटर चंद्रनाथ मिश्र से। बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: नमस्कार जी।
0: सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, क्यों ज़रूरत पड़ी इस आंदोलन की?
1: भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू किया गया। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने चरम पर था। इस आंदोलन का मुख्य नारा था, करो या मरो। इसमें सभी देशवासियों का आह्वान किया गया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जाए, ये इसका मुख्य मोटो था। इस आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था, 9 अगस्त तक सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे। भारी दमन के बावजूद प्रतिरोध और हड़ताल का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा था। इसमें सारे देशवासियों की अपने देश को आज़ाद करने की उद्दाम इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा का प्रदर्शन था और आगे चलकर ये आज़ादी हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद कोई ब्रिटिश शासन का अंत नहीं हो गया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इससे ब्रिटिश शासन की कमजोरी काफ़ी हद तक सामने आई और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक दृढ़ता प्रदान की। इस आंदोलन की प्रमुख भूमिका में महात्मा गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि थे, जिन्होंने जनता के सहयोग से आंदोलन को आगे बढ़ाया। और अन्य नेताओं के साथ ये गिरफ्तार भी किए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन की कूटनीति को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अरुणा आसिफ अली ने आंदोलन के प्रतीक स्वरूप कांग्रेस का झंडा ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में लहराया। जयप्रकाश नारायण जेल से निकलकर भूमिगत आंदोलनकारियों को गठित करने में लग गए। राम मनोहर लोहिया ने भी भूमिगत आंदोलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उषा मेहता, उन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो स्थापित किया और इसकी मदद से आंदोलन को विस्तार देने में सहयोग दिया। इस आंदोलन में विद्यार्थियों, कामगारों, किसानों, महिलाओं और सामान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
0: क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन बाकी आंदोलन जो हुए उस समय उनसे कैसे भिन्न था, कैसे अलग था?
1: देखिए, असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग इस आंदोलन में क्षेत्रीय समूहों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्र रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्षेत्रीय नेताओं और सामान्य व्यक्तियों द्वारा संघर्ष को जारी रखा गया। सीक्रेट न्यूज़पेपर, रेडियो प्रसारण और भूमिगत नेटवर्क स्थान स्थान पर अपना काम कर रहे थे। इसकी वजह से भीषण दमन चक्र के बावजूद आंदोलन अपनी गति से चलता रहा। कई जगह जैसे सतारा, बलिया, तामलुक, ऐसी जगहों पर समानांतर सरकार का गठन हुआ। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी। युवाओं का इस आंदोलन में विशेष योगदान रहा। इस मामले में भी ये आंदोलन थोड़ा डिफरेंट कुछ मामलों में रहा। औपनिवेशिक प्रशासन को बाधित करने के लिए रेलवे ट्रैक्स, टेलीग्राफ लाइंस और विभिन्न संचार साधनों को तहस नहस कर दिया गया। गांधी जी के अन्य आंदोलनों से अलग एक केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित आंदोलन ये नहीं था। इस अर्थ में ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसमें स्त्रियों ने अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाया। जैसा कि मैंने पहले बताया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता जैसी महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ये आंदोलन और आंदोलनों से अलग सिर्फ मुख्य शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सुदूर ग्रामीण गांव के इलाकों में भी बहुत से क्षेत्र में ग्रामीण किसान इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी साबित हुए, क्योंकि ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और इंग्लैंड उस समय एक वैश्विक युद्ध में जूझ रहा था, इन्वॉल्व था उसमें। इससे आंदोलन को एक अनोखा वैश्विक संदर्भ मिला, ग्लोबल एक जो है ना रेफरेंस मिला। इससे अंग्रेज़ों ने आंदोलन को बाधित करने के लिए सेंसरशिप, गिरफ्तारी और फौजी कार्यवाही का पूरा सहारा लिया। अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ नीति निर्धारकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीयों के समर्थन तथा सहमति के बिना यहाँ की गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ का शासन पॉसिबल नहीं है। ये एक चीज़ उनके समझ में आ गई। एक तरह से देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन का अंतिम चरण जैसा था। इस आंदोलन ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता का रास्ता काफ़ी हद तक आसान कर दिया।
0: बहुत धन्यवाद आपका। आप थे कॉलम राइटर चंद्रनाथ मिश्र, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज का अंतिम गीत सुनते हैं।

तो श्रोताओं नमस्कार, देहरादून में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े आपके कुछ सुझाव हों तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। साथ ही पत्रों के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नमस्कार देहरादून, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन कोड है 2480001। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय किसी और साथी के साथ, मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार देहरादून।

यथा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे जसपाल सिंह और साथियों को, फिल्म का नाम था गीत गाता चल। श्रोताओं, सावन के महीने में बरसात की बूंदें जहां जीवन को खुशनुमा बनाती है, वहीं चारों ओर फैली हरियाली और सुबह का खूबसूरत नज़ारा मन को खुश कर देता है। जी हां श्रोताओं, इसी तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम शागिर्द। गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गीत आनंद बख्शी का, आवाज़ लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म का नाम आप आए बाहर आई।

समय 9:21 और 3 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ही अगला गीत यशुदास की आवाज़ में फिल्म का नाम सुनैना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये थे आशा भोसले और किशोर कुमार। फिल्म का नाम था यादों की बारात। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, बरसात का मौसम, जी हाँ, जितनी हमें खुशियाँ देता है उतनी ही ज़रूरत होती है उसे सहेजने की, यानी कि इस मौसम में लापरवाही न बरतें, अपने मौसम के अनुसार खान पान और रहन सहन में बदलाव करें। आप सभी खुश और स्वस्थ रहे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस अगले गीत की ओर सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम एक नज़र।

सदाबहार फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले हम आपको याद दिला दें

दोपहर 12:30 पर महिला जगत कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी श्रीमती सुधा थपलियाल की वार्ता। विषय रहेगा जीवन की सांझ में भी जोश और जज्बा बनाए रखें। साथ ही बहनें सुन पाएंगी ब्यूटी टिप्स। युवाणी कार्यक्रम में 5:10 पर आज की बात होगी। फिल्म संगीत के अलावा सुनिएगा कैंपस से। 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुने के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम स्टूडियो से बहर। किसानवाणी कार्यक्रम में 7:00 सुनिएगा हेलो किसान के अंतर्गत डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल से मत्स्य पालकों और किसानों से फोन इन बातचीत। रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। और दिन में 11:00 श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। आइए आपको सुनवाते हैं सदाबहार कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है जमीन आसमान और शब्द हैं अनजान के और संगीत आरडी बर्मन का है।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे एसएच बिहारी का लिखा गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर। फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने। गीतकार हैं निदा फासली और संगीतकार उषा खन्ना।

0: ए यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ

0: ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म का नाम था शर्मिली। नीरज के शब्दों को संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बजे आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप यशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। कहा, राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण, पीड़ित सहायता और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, देशभर के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, केंद्र सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने नैनीताल जिले के भीमताल में जिला स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों, विशेषज्ञ और प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार से योजनाओं की समीक्षा की। कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए जाने पर जोर दिया। अल्मोड़ा के युवा नवाचारी रवि टमटा ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का सफल ट्रायल कर नई उपलब्धि हासिल की। उन्होंने स्वयं निर्मित एक सीट वाले फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काइनेक्स की सफल उड़ान भरकर तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन किया। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नोटिस के वितरण, दावों, आपत्तियों और प्राप्त प्रपत्रों की स्थिति की समीक्षा की। वन उपज के अवैध भंडारण और व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वन विभाग ने हरिद्वार और ऋषिकेश स्थित पंजीकृत लीसा इकाइयों का औचक निरीक्षण किया और कांवड़ मेले में हरिद्वार से गंगाजल लेकर प्रस्थान करने वाले शिव भक्तों की संख्या 2,64,00,000 के पार हुई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। मेडिकल हिस्ट्री में अहम रोल प्ले करते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप से न सिर्फ किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को भी बताने में भी काफ़ी मदद करती है। हेल्थ चेकअप के द्वारा डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में अच्छी समझ मिलती है, साथ ही उसे डॉक्टर मरीज की बॉडी और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके आधार

पर डॉक्टर मरीज को दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लोग क्यों नहीं कराते रेगुलर हेल्थ चेकअप? अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपने बजट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आम आदमी के रेगुलर हेल्थ चेकअप न कराने के पीछे उसका बजट एक कारण है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप के फायदे के बारे में जागरूक तो होते हैं, लेकिन वो इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके हेल्थ प्लान में शामिल नहीं होता है। दरअसल अधिकतर हेल्थ प्लान पैथोलॉजी टेस्ट जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट, हार्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। ऐसे में लोग अलग से इन्हें कराने से कतराते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। तो दोस्तों, अब सुनिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने के फायदे। अपने बीमार होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों और जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। बीमारी का पता लगने पर इलाज और उपचार में मदद मिलती है। मौजूदा स्थितियों की बारीकी से निगरानी करके जटिलताओं के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। महंगी चिकित्सा सेवाओं से बचकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डॉक्टर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जो इलाज को आसान बनाती है। नई चिकित्सा और तकनीक की जानकारी मिलती है। तो इतने फायदे हैं दोस्तों, और बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनिए लम्हे प्रोग्राम चेतन से।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। एक महिला को परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है और घर के हर सदस्य की देखभाल, हर चीज और हर किसी की देखभाल करती है। एक महिला घर की हर जरूरत और अनुरोध को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है। कई बार इस वजह से महिलाएं अपने सेहत को भी नज़रअंदाज कर देती है। इसलिए एक महिला को विशेष देखभाल और समय पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराने की आवश्यकता होती है, वे अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रह सके और सेहतमंद रहे। रूटीन ब्लड टेस्ट संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। ये टेस्ट एक महिला के समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। नियमित अंतराल पर परीक्षण करवाने से महिलाएं देख सकती है कि समय के साथ उनका शरीर किस तरह से बदलता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए जागरूक होना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आमतौर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट, एनीमिया परीक्षण, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी सहित अन्य टेस्ट शामिल हैं। एक महिला साल में 2 बार इन रक्त परीक्षण को करना चाहिए। मैमोग्राम मूल रूप से महिलाओं के स्तनों का एक्सरे होता है। मैमोग्राम स्तनों कैंसर के लक्षण को पता लगाने में मदद करता है। ये महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक महिला को आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए और फिर हर 1 या 2 साल के बाद इसे दोहराना चाहिए। कुछ डॉक्टर आपको 50

साल की उम्र तक मैमोग्राम करने की सलाह दे सकते हैं। ये परीक्षण एक महिला के स्तनों में होने वाले सौहार्दपूर्ण परिवर्तन जैसे गांठ, असामान्य त्वचा और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को ये परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। BMD ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है। विभिन्न मशीनों का उपयोग करके बोन डेंसिटी टेस्ट किया जा सकता है। इस सभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हर महिला को समय समय पर जरूर करवाना चाहिए, जिससे सेहत की उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सके और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने RJ चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।
1: हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शाहबाद के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान और साथियों को। फिल्म का नाम था सूरमा, गीत था गुलजार का और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, राजेश शेखर के संगीत निर्देशन में। आवाजें हैं लेम्बर हुसैनपुरी और साथियों की। फिल्म का नाम तनवर्स मनु।

0: आप सुन रहे थे देवनी की ओर साथियों को, फिल्म का नाम था टोटल धमाल। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं,

0: 8700014242 पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की। फिल्म का नाम है

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR प्रसार भारती

0: वर्चुअल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओ, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, दोपहर 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा सैनिकों के लिए। शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे अभिनेता दिनेश ठाकुर। दिन में 11 बजे श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने नैनीताल जिले के भीमताल में जिला स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए केवल आधुनिक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय रहते की गई तैयारी, जन जागरूकता और सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कौशिक ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यक जानकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे प्रत्येक नागरिक जागरूक बने और सुरक्षित व सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। अल्मोड़ा के युवा नवाचारी रवि टमटा ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का सफल ट्रायल कर नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने स्वयं निर्मित एक सीट वाले फ्लाइंग व्हीकल हैपिडा स्काइनेक्स की सफल उड़ान भरकर तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित ट्रायल के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़ के मौजूद रहे। प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा मानकों के साथ ट्रायल उड़ान संपन्न हुई। पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर से संचालित यह फ्लाइंग व्हीकल स्वच्छ और सतत तकनीक की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल से रवि टमटा से बातचीत कर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नवाचार प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है और विज्ञान एवं के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जिलाधिकारी ने भी इस उपलब्धि को अल्मोड़ा के लिए गौरव का विषय बताते हुए स्थानीय प्रतिभाओं और नवाचार को हर संभव प्रोत्साहन देने की बात कही। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नोटिसों के वितरण, दावों, आपत्तियों और प्राप्त प्रपत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मतदाताओं को SIR प्रक्रिया की सही जानकारी देने और दावों, आपत्तियों का निष्पक्ष व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक दलों से भी SIR कार्य में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। कांवड़ मेले में अब तक हरिद्वार से गंगा जल लेकर प्रस्थान करने वाले शिव भक्तों की संख्या 2,64,00,000 पार कर गई है। मेले के कल 9वें दिन 44,38,000 से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कांवड़ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से तैनात रहे। जिला प्रशासन ने सभी शिव भक्तों से निर्धारित यात्रा मार्गों का पालन करने और पुलिस व प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है। उधर उत्तरकाशी जिले में कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अब तक 35,000 से अधिक शिव भक्त गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुख की यात्रा कर चुके हैं। वहीं श्रद्धालु यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन की सराहना की है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में जन सुविधा केंद्रों की व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों की जांच के लिए उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई केंद्रों

पर रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने, प्रमाण पत्रों की पंजिका उपलब्ध न होने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने जैसी अनियमितताएं मिली। एक केंद्र का लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने के बावजूद संचालन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना भी पाया गया। कुछ केंद्रों पर आवेदकों के आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए गए, जबकि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत भी सामने आई। एक केंद्र को सील करने के भी निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी ने संचालकों को निर्धारित शुल्क लेने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और आवेदकों के दस्तावेजों का नियमानुसार रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुविधा केंद्रों में किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पवन सिंह की गाई इरागणी।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं पवन सिंह की गायी।

0: ठीक नहीं मारे सतगुरु सो बार राम कहे भाई।
1: लोक संगीत कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पवन सिंह की गाय रागिणिया।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, पेश है हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी श्रुति शर्मा। श्रोताओं कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हमारे इन सब श्रोताओं की पसंद पर गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, मोहम्मद अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयत सिकंदर अली, मोहम्मद और आदेश, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद इसी गीत को सुन रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। आपके साथ हैं बोगाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुट्टी भगत। कार्यक्रम की ये फरमाइश है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की। हमारे ये श्रोता हैं गंगनोला दाता गंज जिला बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, शबरीन बेगम, शाहबाज खान, शैफ खान और ईशान खान। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये फरमाइश है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी की। हमारे श्रोता हैं सिमंधर पार्क वीरनगाम से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार, राजेश कुमार भावसार। कार्यक्रम की ये फरमाइश आ रही है हमारे श्रोता हैं जिला नांदेड़ एकाता इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी और तृप्ति जायसवाल। ये श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कार्यक्रम की ये फरमाइश भेज रहे हैं रितिका मस्किन, विनय आरव, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी। ये हैं दयानंद कॉलेज भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। कार्यक्रम की ये फरमाइश आ रही है राकेश थपलियाल जी हैं देहरादून उत्तराखंड से। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं ये हैं ग्राम अमलीडीह करधवा छत्तीसगढ़ से संतोष राजपूत, हेम प्रभा पूर्वी और गौरव राजपूत, सहसपुर लोहारा दनिया, खुर्द जिला करवरघा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज और सूरत राजपूत। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा। आप सब ने सुनना चाहे है नागिन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं, ये हैं ग्राम फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी। ये अगले श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं, ये हैं गांव खोंखवारी श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और सगुन बरासा। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से हैं विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें कर रहे हैं, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसबीर जसी, सीता और गीता। ये अगले श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से हैं नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, मुलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हमारे ये श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आरिफ शेख तेलंगाना निजामाबाद से हमें फरमाइश कर रहे हैं। हमारे ये श्रोता हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। ये श्रोता हैं गांगडे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और पूरा ही लोखंडे परिवार इस गीत को सुनना चाहता है। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब कंडरकर, शाखरबाई कणंकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी कणंकर परिवार इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो। ये श्रोता हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, ये हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं। हमारे अगले श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। ये अगली फरमाइश है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। कार्यक्रम में ये श्रोता हमें फरमाइश कर रहे हैं गांव छगोड़ी जिला यमुनानगर से रणथीर पागड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मन कीरत और मनराज। आप सबकी फरमाइश पर निगाहें फिल्म से ये गीत है जिसे आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने।

व्हाट्सएप फरमाइश में ये अगली फरमाइश है। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना सुदामा नगर खंडवा से हैं, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। कार्यक्रम में इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं गांव हाड़ी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। ये अगले श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़। कार्यक्रम की ये फरमाइश आ रही है मस्जिद कलोनी करेली से इंतजार अंसारी, बेटी हिजबा नूर, नथु चाचा, जाहिर अंसारी, नन्हे ठेकेदार और इनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता है। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। सब्बीर हुसैन, सहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन हमें फरमाइश भेजे सब्जी मंडी बुलढाना से। गोकुल चौक से हमारे श्रोता हैं सहरसा बिहार से हैं ये राधे कुमार विद्यार्थी, सरिता राधे विद्यार्थी।

विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, अच्छे राय, बुल्की वाली और फलना झा। ये श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह, ये हैं कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हमें मैसेज कर रहे हैं पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। कार्यक्रम की ये फरमाइश है, ये हमारे श्रोता हमें फरमाइश भेज रहे हैं मगनपुर झारखंड से, अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके सभी दोस्त, नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े, आकांक्षा नरवड़े और आकाश कुमार फरमाइश कर रहे हैं राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से। ये सप्तरंग श्रोता परिवार से मैसेज आ रहा है, कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावने पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने की। मुसरत जहानास, तलतना जहानास, फसरत फरहत नाज, रिफकत नाज, नुसरत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, ये हैं नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम की ये जो अगली फरमाइश है, कुंभार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडु रंग कुंभार हमें मैसेज कर रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत आए मिलन की रात फिल्म से है, अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

श्रोताओ, कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे आ रही है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रचित भाटिया और मयंक भाटिया की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडवलकर, मीरा बंडवलकर और विविधा। कार्यक्रम की ये फरमाइश है, ये है लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे, सागर लखनौदा मध्य प्रदेश से। रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और पूरा ही रामेकर परिवार इस गीत को सुनना चाहता है। अमरोहा नई बस्ती पेते खालसा से हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया आलिशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी। नलगोड़ा तेलंगाना से हैं मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मेहरुनिशा। कार्यक्रम में ये हैं कस्बा चिलकाना मोड़ से जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नाजिम अंसारी। ये फरमाइश है नर्मदा पार मंगलबेढ़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल की। ये श्रोता हैं लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय साई किरण, करीमनगर से। हमारे श्रोता कलानौर से हैं नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कार्यक्रम की ये फरमाइश आ रही है, हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी, नाच पैलेस, अजमेर शरीफ से। हमारे कुछ और श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, कुछ श्रोता ऐसे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कई बार उनका नाम हम ले लेते हैं, हो सकता है उन्हें सुनाई ना देता हो, पर हमारे पास जो डिटेल होती है उसमें हमें पता रहता है कि हम किन किन श्रोताओं के नाम ले चुके हैं। और उनके किसी और दूसरे नंबर से मैसेज करने से क्या होता है कि और जो श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाम का, उनका नाम छूट जाता है और फिर वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग अगर एक बार मैसेज कर देते हैं ना, तो उसके बाद फिर दोबारा से ना करें, ताकि और का नंबर आ सके। ऐसी फरमाइश हमें कर रहे रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। ये अगली फरमाइश है भाटापारा से के आर शाहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री की। बरेड़ी से है राजेश सोनी, कंचत सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे। ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगपाल सिंह डाग।

है पीडागला जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जरगांव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। कोल सिटी बरकाना से हैं अफजलताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निम्मी शाहनी और अफजल मलिक। ये फरमाइश है करताल जिला रंगा रेड्डी तेलंगाना से कानू गोपाल, गुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश की। ये श्रोता है भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमें मैसेज कर रहे हैं। आप सबकी फरमाइश पर बाहर आने तक फिल्म का गीत अनुराधा पोडवार और मंगल सिंह की आवाज में। इसी गीत को बिहारी कॉलोनी सहाद्रा दिल्ली से सुन रहे हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। ये श्रोता है छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और पूरा ही सिद्दीकी परिवार। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

संभलपुर कांकेर से अगली फरमाइश में आ रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भविका सिक्का। इसी गीत को नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से सुन रहे हैं निसार अहमद अंसारी, महजाबी निसार अंसारी, बेटी नुजत, फातिमा अबरार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी इस गीत को सुन रहे हैं। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये है भाई मोहम्मद कुरैसी, भाई जुनैद कुरैसी, भतीजा अलीसा कुरैसी, आसमीन कुरैसी, ग्राम बुढ़ा खेड़ा, कातला जिला सहारनपुर से इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता। ये है भाई रफत साहब, भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर से हमें फरमाइश कर रहे हैं। कोहिनूर ये हैं समस्तीपुर बिहार से, मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम सिंह और अनामिका सिंह ये फरमाइश कर रहे हैं। योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी करीमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी हैं बांडीवाला फजल का पंजाब से और इनके साथ हैं क्रियांश बगड़िया। ये अगले श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। लक्सर रोड ग्राम सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। यह है मोहम्मद साबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद साहिब, कहकशां और इनका पूरा ही परिवार। कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। कार्यक्रम की ये फरमाइश है छोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से, लक्ष्मण से ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर और ईश्वर सिंह ठाकुर। इनके साथ हैं मानू, शानू, बबन, मुन्नू, कान्हा और हरिप्रिया। ये अगले श्रोता हैं जो फरमाइश कर रहे हैं प्रभाकर गुप्ता, आदेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, गौरी गुप्ता, शनि बाजार कस्बा उखेती से। ये हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से फरमाइश कर रहे हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू हैं। ये हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। जैन वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो खाली गुड मॉर्निंग लिख के हमें भेज दे रहे हैं, उनके नाम हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून जी का। ये श्रोता है तेलापारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष्य श्रीवास, कोरबी बेलतारा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत जिसे अब हम आपको सुनवा रहे हैं आजाद फिल्म है, आवाज दी है किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने।

इसी गीत को फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से सुन रहे हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। नरेश पंजवानी सतना से इसी गीत को सुन रहे हैं।

कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं कराली डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से, वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य एंजेल, नेहा अंजलि, गुरमीत कौर प्रजापति इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महमूद, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी और माही नूर अंसारी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हमारे ये श्रोता हैं, यह है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बेट

संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुश दिल परिवार चकला बाजार समाना शहर पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं। छगनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। ये अगले श्रोता हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, हीरामन शेंडे, किशोर धनाड़े, हेमंत राव सुरांगे, संजय कुमार गेडाम, राजेश गुप्ता और दीपक कुल्हाड़े। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। ये अगले श्रोता हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ये है हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, निशा, नेहा नामदेव, छन्नूलाल शाह और रज्जक साहू। आप सबने सुनना चाहा है दो बदन फिल्म का गीत, आपको भी सुनवाते हैं। थोड़े से और श्रोताओं के हम नाम ले लेते हैं, वो भी इंतजार में हैं। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी से है, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, ब्रजेश संघई, प्रतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार। हेमंत नामदेव इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हमारे अगले श्रोता हैं, ये हमें फरमाइश कर रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खिलोफो की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। ये फरमाइश आ रही है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी की, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हमें फरमाइश कर रहे हैं। ये श्रोता है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, सन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। ये अगले श्रोता हैं राजेश खन्ना, अनिता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और इनकी अम्मी तेलंगाना से हमें मैसेज कर रहे हैं। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश छत्रपति संभाजी नगर से फरमाइश कर रहे हैं। लीजिए आप सबके लिए आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म का ये गीत।

एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, साथ में हैं स्वाति प्रयाग चौधरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग हैं, ये हमारे श्रोता सहारनपुर से हमें फरमाइश कर रहे हैं। कृष्णा कॉलोनी हासी से हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, टप्पू पप्पू, राजू मिंगलानी और बबीता मिंगलानी। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशनी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार फजल का पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू शुद्ध सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर की। ये हमारे श्रोता हैं दीवाना रोड श्रोता क्लब राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, बगड़वाल, सुखबीर काजल बड़वाल, रखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारे बेटे चटकू और मटकू फरमाइश कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हैं ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान और पूरा ही अब्बासी परिवार। ये श्रोता है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दीवांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममला, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, अक्षय कॉलोनी, गोंदूर रोड, धूलिया, महाराष्ट्र से। हमारे कुछ और श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, ये हैं, हमने कहा ना कि हमारे कुछ श्रोता हमें लगातार मैसेज करते हैं और अलग अलग नंबरों से करते हैं और जब हम सर्च करते हैं तो वो वही निकलते हैं। ऐसे ही एक मैसेज है रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनावर, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम। ये है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। ये फरमाइश है एम ए वाहिद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाइज की फुलोंग नजीबाबाद तेलंगाना से मैसेज कर रहे हैं। ये हैं प्रकाश वर्मा, पूजा वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से मैसेज कर रहे हैं। आप सबकी फरमाइश पर फरार फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और अब आज के कार्यक्रम की समापन गीत में कुछ और फरमाइश हम ले लेते हैं। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया राजे से। हरियाणा से हैं ग्राम सातड़ी से ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज, भव्य काम्बोज, अमित कुमार काम्बोज और पुनित काम्बोज हमें मैसेज कर रहे हैं। ये अगले श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, ये हैं मोहम्मद पुराउद्दीन, फरजान लला, फरहान लला, सईमा आजमीन गुड़िया हैं तेलंगाना भोरिंग से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद आरिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम और बेबी मरियम नाला सुपारा मुंबई से मैसेज कर रहे हैं। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हैं पंचोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप सबकी फरमाइश पर बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमरीका में विश्व एथलेटिक्स

0: in Telangana. And India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, US, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में समाज कल्याण विभाग के तहत 9,87,000 से अधिक विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ से अधिक की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय गोलापार नैनीताल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण, पीड़ित सहायता और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देशभर के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी किए जाने पर जोर दिया। अल्मोड़ा के युवा नवाचारी रवि टमटा ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का सफल ट्रायल कर नई उपलब्धि हासिल की। उन्होंने स्वयं निर्मित 1 सीट वाले फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काइनेक्स की सफल उड़ान भरकर तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समारोह को गरिमापूर्ण भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन उपज के अवैध भंडारण और व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वन विभाग ने हरिद्वार और ऋषिकेश स्थित पंजीकरण लीसा इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हरिद्वार स्थित एक लीसा डिपो में अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर उसे अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:12 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं गुलाम हुसैन और साथियों से कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम हुसैन और साथियों से कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। अब पहने सुने कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार अभिनंदन, बहनों लेकर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत आ गई हूँ मैं आज आपकी अपनी सखी किरण जोशी। बहनों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पेड़ों के बीच कुछ समय बिताने में मन अपने आप शांत हो जाता है। पक्षियों की चहचहाट, ठंडी हवा, चारों ओर हरियाली और प्रकृति की सुंदरता हमारे मन को सुकून देती है और एक खूबसूरत एहसास देती है। यही खूबसूरत एहसास हमारी सेहत, खुशियाँ और जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहनों जब हम खुश रहेंगे तो हर काम को भी खुशी से और ऊर्जा से कर सकेंगे। बहनों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में हमारी प्रकृति हमारे लिए किसी प्राकृतिक उपचार से कम नहीं है। इसलिए बहनों, कुछ समय अपनी छत पर, आंगन में या पार्क में जरूर टहलिए, पौधों की देखभाल करिए, खुले आसमान के नीचे बैठिए, जिससे हमारे तन और मन दोनों को ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे दोनों ही और हमारे तनाव को भी कम कर देता है। बहनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति को समझिए, क्योंकि प्रकृति से जुड़कर मन स्वयं शांत हो जाता है। बहनों, पर्यावरण से प्रेम केवल पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है। पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम ही तो है। बहनों, कहते हैं ना, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ मन की पहचान है। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रकृति की देखभाल और रक्षा करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए, जिसमें हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रख सकें। ज्यादा नहीं तो एक पौधा तो जरूर लगाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें और कुछ पल अपनी प्रकृति के साथ जरूर बिताएं, जिससे आप अपने आसपास के लोगों और बच्चों को भी अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और लगाव याद दिला सकें। क्योंकि हरियाली बढ़ाएंगे, तनाव घटाएंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, जीवन को खुशहाल बनाएंगे। और क्योंकि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो चलिए लिए चलते हैं आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और ये गीत इंजॉय करते हैं जो लिया है फिल्म मिशन कश्मीर से।

0: पता है 2026-27 से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNA स्पर्श प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
1: अच्छा,
0: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
1: तो उसके लिए क्या करना होगा?
0: बताता हूँ, बस आपकी आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार जोड़ने के साथ ही DBT की

0: सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल आईडी swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मैनू एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में हार्दिक स्वागत है। मैनू जीवन की सांझ उम्र का पड़ाव जरूर है, लेकिन ये उत्साह और उमंग के थम जाने का नाम नहीं। इसी खूबसूरत सोच के साथ कि जीवन की हर उम्र को उत्साह और खुशियों के साथ कैसे जिया जाए, आइए सुनते हैं ये वार्ता जिसका विषय है जीवन की सांझ में भी जोश और जज्बा बनाए रखें। और हमारी वार्ताकार हैं श्रीमती सुधा थपलियाल।
2: जीवन की सांझ में जोश और जज्बा बनाए रखें। जीवन एक अनवरत यात्रा है। इस यात्रा में बचपन की चंचलता, युवावस्था का उत्साह, प्रौढ़ावस्था की जिम्मेदारियां और अंततः जीवन की सांझ। हर पड़ाव का अपना रंग और अपना महत्व होता है। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि वृद्धावस्था केवल विश्राम का समय है, जब व्यक्ति के जीवन की गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। जीवन की सांझ केवल उम्र का पड़ाव है, जीवन का अंत नहीं। यह वह समय है जब अनुभव, धैर्य, परिपक्वता, आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। यदि इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर जोश और जज्बा बनाए रखे तो उसका जीवन न केवल स्वयं के लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आज चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, बेहतर जीवन शैली, बढ़ती औसत आयु ने सिद्ध कर दिया है कि उम्र का पड़ाव पड़ना सक्रिय जीवन जीने में बाधा नहीं है। दुनिया भर में असंख्य लोग 70, 80 और 90 वर्ष की आयु में भी लेखन, संगीत, चित्रकला, समाज सेवा, शिक्षण, खेती, व्यवसाय और खेल जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। उनका उत्साह यह संदेश देता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके शरीर में नहीं वरन उसके मन मस्तिष्क में होती है। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक निराशा होती है, जब व्यक्ति अनुपयोगी समझने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि जीवन की इस अवस्था को नई संभावनाओं के रूप में देखा जाए। वर्षों का अनुभव किसी विश्वविद्यालय की डिग्री से कम नहीं होता। बुजुर्गों के पास जीवन के संघर्षों से अर्जित वह ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकता है। बुजुर्गों को कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने मनोबल को कायम रखते हुए जीवन के प्रति अपने उत्साह को कभी छीन न होने दें। जोश और जज्बा बनाए रखने का पहला मंत्र है स्वास्थ्य के प्रति सजग। नियमित सैर, हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। थोड़ी सी शारीरिक सक्रियता व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन के प्रति सकारात्मकता बनाए रखती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानसिक सक्रियता। मस्तिष्क भी एक मांसपेशी की तरह है जिसका निरंतर उपयोग आवश्यक है। पुस्तक पढ़ना, लेखन करना, नई भाषा सीखना, संगीत सुनना, पहेलियां हल करना या किसी विषय का अध्ययन करना मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। नई चीज सीखने की कोई आयु नहीं होती। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वे वास्तव में जीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है। जीवन की संध्या में व्यक्ति नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों की व्यस्तता से मुक्त होने के कारण एक खालीपन से भर जाता है। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त और अन्यत्र जगह पर होने के कारण अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। ऐसे में सामाजिक संबंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवार, मित्रों, पड़ोसियों से संवाद बनाए रखना मन को प्रसन्न रखता है। अकेलापन धीरे धीरे अवसाद का कारण बन सकता है, इसलिए लोगों के बीच रहना, अपने अनुभव साझा करना, दूसरों की बातें सुनना जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। आज तकनीकी ने भी दूरियों को कम कर दिया है। मोबाइल और वीडियो कॉल के माध्यम से अपनों से जुड़े रहना आसान हो गया है। सेवा का भाव भी जीवन में नई उमंग भरता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वे कभी अकेला नहीं होता। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना, पर्यावरण संरक्षण

0: शिक्षण के कार्यों में भाग लेना या जरूरतमंदों की सहायता करना जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। जब किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आती है, तब हमें भी संतोष और प्रसन्नता मिलती है। सकारात्मक सोच जोश और जज्बे की सबसे बड़ी शक्ति है। परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में बदलती है। बीमारी, आर्थिक कठिनाइयाँ या प्रियजनों से बिछड़ने का दुख जीवन का हिस्सा है, किंतु इन परिस्थितियों के सामने हार मान लेना समाधान नहीं है। आशा का दीपक जलाए रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई से उभरने का साहस पा लेता है। जीवन का प्रत्येक नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जीवन की संध्या आत्मचिंतन का भी समय है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने जीवन की सफलताओं और असफलताओं को समझते हुए नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकता है। अपनी गलतियों से मिले अनुभवों को साझा करना भी समाज की बड़ी सेवा है। अनुभवों की ये धरोहर आने वाली जनरेशन को सही दिशा दे सकती है। रुचियों को जीवित रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जिन कार्यों को समय के अभाव के कारण नहीं कर पाए, उन्हें फिर से अपनाया जा सकता है। बागवानी, सिलाई, कढ़ाई, फोटोग्राफी या यात्रा, ये सभी गतिविधियाँ जीवन में नई ताजगी भरती है। जब मन किसी रचनात्मक कार्य में लगा रहता है, तब निराशा पास नहीं फटकती। परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को सम्मान, अपनापन और सहभागिता का अवसर मिलना चाहिए। उनसे सलाह लेना, उनके साथ समय बिताना, उन्हें अपने निर्णय में शामिल करना उनके आत्मविश्वास को बनाए रखता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ संस्कार, धैर्य और प्रेम की नींव भी मजबूत होती है। भारतीय संस्कृति में वृद्धों को सदैव ज्ञान और अनुभव का भंडार माना गया है। परिवार के परंपराएं, नैतिक मूल्य, जीवन के संस्कार प्रायः बुजुर्गों के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुँचते हैं। इसलिए समाज का यह दायित्व तो बनता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करे जहाँ वे सम्मान पूर्वक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन जी सके। बुजुर्गों को भी बच्चों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। वे अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखें, लेकिन वो यथार्थवादी और संतुलित हो। अत्यधिक अपेक्षाएं अक्सर दोनों पीढ़ियों के बीच तनाव का कारण बन जाती है। कुछ अपेक्षाएं स्वाभाविक और उचित है, उन्हें सम्मान और स्नेह मिले, बीमारी या आवश्यकता के समय साथ और सहयोग मिले, समय समय पे उनका हालचाल पूछ लिया जाए, उनके अनुभवों और भावनाओं का आदर किया जाए। लेकिन कुछ अपेक्षाओं पे बुजुर्गों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बच्चे हर निर्णय उनकी इच्छा के अनुसार, ये जरूरी नहीं वे हर समय उनके साथ रहे। उनकी प्राथमिकता हमेशा माता पिता ही हो। वे उसी तरह जीवन जिए जैसे बुजुर्ग चाहते हैं। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती है। आज के बच्चों पे नौकरी, परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव पहले से कहीं अधिक है। उसका मतलब ये नहीं कि वे अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, बस उनके जीवन की चुनौतियाँ अलग है। इसलिए सबसे स्वस्थ दृष्टिकोण यह है कि वे अपेक्षा से अधिक विश्वास, अधिकार से अधिक संवाद और शिकायत से अधिक स्नेह को महत्व दे। जब बुजुर्ग आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करते हैं और बच्चे अपने सामर्थ्य के अनुसार निभाते हैं, तब रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र केवल चुनौतियां ही नहीं, अनेक अवसर भी लेकर आती है। अब जीवन की भागदौड़ अपेक्षाकृत कम है। व्यक्ति स्वयं को समझने, प्रकृति के निकट रहने, आध्यात्मिक चिंतन करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए समय निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह चरण सबसे संतुलित और परिपक्व काल बन सकता है। अंततः यह कहना उचित होगा कि जीवन की सांझ किसी दीपक के बुझने का संकेत नहीं, बल्कि उस प्रकाश का समय है जो लंबे अनुभवों से और अधिक उज्जवल हो चुका है। उम्र केवल कैलेंडर के पन्नों पर बढ़ती है। यदि मन उत्साही, जिज्ञासु, आशावादी बने रहे, तो जीवन हर दिन नया लगता है। जो व्यक्ति अपने मुस्कान, अपने सपनों, अपने उद्देश्यों को जीवित रखता है, उसके लिए वृद्धावस्था भी एक नई शुरुआत बन जाती है। जीवन की सांझ को निराशा का नहीं, वरन ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेवा, सीखने और प्रेम का उत्सव मनाए। अपने भीतर के जोश और जज्बे को कभी मंद न होने दे, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उम्र में नहीं बल्कि उत्साह में है, जिसके साथ हम हर नए दिन, हर नए प्रभात का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।
1: मैनु अभी आप सुन रहे थे वार्ताकार श्रीमती सुधा थपलियाल से जीवन की सांझ में भी जोश और जज्बा बनाए रखें इस विषय पर की गई ये वार्ता। मैनु बातें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
2: मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: मैनू अब हम इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की बात करते हैं जब भारत की धरती ने अंग्रेजी हुकूमत को स्पष्ट शब्दों में कहा था, अब भारत छोड़ो। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात है बहनों समय की, जब हमारा भारत अंग्रेजी शासन की गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन हम देशवासियों के मन में आज़ादी की लौ लगातार प्रज्वलित हो रही थी। और 8 अगस्त 1942 को, यानी आज ही के दिन, बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक बैठक में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर करो या मरो का नारा दिया, जो कि केवल शब्द नहीं भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने का एक संकल्प था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत होते ही गांधी जी और कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने स्वतंत्रता की आवाज़ को और बुलंद कर दिया। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे कई महान लोगों ने भी साहस, नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, स्वतंत्रता की आवाज़ को और बुलंद किया। ऐसे में ये पंक्तियां भी क्या खूब कहती हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों को यही बाकी निशान होगा। बहनों, इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर करना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र भारत की निर्माण करना भी था, कल्पना करना था, जहां हर नागरिक को सम्मान और अधिकार मिल सके। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जो कि हमें असंख्य ज्ञात और अज्ञात वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान से मिली है। इसलिए आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और अपने देश के प्रति वफादार रहने का प्रण भी लेते हैं कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। अन्याय के सामने झुकना नहीं, सत्य और साहस के साथ आगे बढ़ना है। और इसी देशभक्ति से ओतप्रोत आइए सुनते हैं ये गीत, जो लिया है फिल्म भुज से।

एक बार फिर से कार्यक्रम महिला जगत में बहनों आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि बहनों आज है शनिवार और आज हम लाते हैं आपके लिए ब्यूटी टिप्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं मानसून में त्वचा और बालों की देखभाल कैसे से रख सकते हैं, इसके लिए छोटी सी ब्यूटी टिप्स। बहनों मानसून में हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, इसलिए फेस को अच्छे माइल्ड और जेल बेस्ड फेस वॉश से साफ करें। और साथ ही बहनों लाइट मॉइस्चराइजर लगाइए जिससे आपको स्वेटिंग कम हो, पसीना कम आए। और हाँ, अगर बहनों आप धूप में बाहर निकल रही हैं तो बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ऐसे ही बहनों हफ्ते में कम से कम 2 बार माइल्ड स्क्रब से अपनी स्क्रीन को ज़रूर क्लीन करें, जिससे आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन क्लीन होगी। ऐसे ही बहनों बालों को अपने मानसून में अच्छा बनाने के लिए और उसकी केयर करने के लिए आपको छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स यूज़ करने हैं। जैसे कि ज़्यादातर हमारे बाल मानसून में बहुत झड़ने लगते हैं, तो ये एक आम समस्या है जो कि हर महिला हो या पुरुष सभी के लिए है। तो बहनों मानसून में अगर बारिश में आपके बाल गीले हो जाते हैं तो उन्हें घर आने पर अगर पॉसिबल है तो साफ पानी से ज़रूर धोएं, जिससे आपके स्कैल्प में संक्रमण नहीं होगा। और गीले बालों को कभी भी कंघी नहीं करें, कंघी करने से बचिए क्योंकि गीले बाल हमारे कमज़ोर होते हैं और टूटते भी हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स से अपने बालों की और अपनी स्किन की मानसून में देखभाल कर सकते हैं। तो बहनों ये थी छोटी सी ब्यूटी टिप्स। और बहनों ये था हमारा आज का कार्यक्रम महिला जगत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताइए। और साथ ही बहनों आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में टाइप करना है MJ स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं, और भेज देनी है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी निकट रिस्पना पुल हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून। हमारा पिन कोड नंबर है 248001 यानी कि 248001। और बहनों जाते जाते एक छोटी सी जानकारी कि आज है 8 अगस्त और हम प्रतिवर्ष हमारी उत्तराखंड की वीर बाला वीरांगना तीलू रौतेली जी की जयंती मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को योगदान देने पर उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से प्रदान सम्मानित किया जाता है। तो बहनों जाते जाते एक छोटी सी जानकारी, और अब अपनी सखी किरण जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चारिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने खेल विजन, नई खेल नीति और लिगेसी प्लान के अनुरूप आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के निर्देश दिए। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेगा। और कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में देशभर से बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ 32 लाख की पेंशन राशि का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जुलाई माह की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। श्री धामी ने कहा कि समाज का कमजोर वर्ग सरकार के परिवार का हिस्सा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग माता पिता, विधवा बहन या दिव्यांग भाई को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग की ओर से नैनीताल स्थित उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय ग्वालापार के निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान परिसर में विकसित की जा रही खेल अवसंरचना, शैक्षणिक भवनों, प्रशिक्षण सुविधाओं, छात्रावासों, खेल विज्ञान केंद्र, अनुसंधान सुविधाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने तथा गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि प्रदेश के खेल भविष्य को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसलिए प्रत्येक निर्माण कार्य उच्च मानकों के अनुरूप और दीर्घकालिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार को खेल उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी रणनीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विकास राज्य की नई खेल नीति, खेल विजन और लिगेसी प्लान के अनुरूप किया जाए, ताकि यह संस्थान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व स्तरीय अवसर उपलब्ध करा सके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 के समाचार बुलेटिन में एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। श्रोता अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com पर भेज सकते हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: अथवा फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
2: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे।
1: हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए लगातार धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नोएडा और हरियाणा से पहुंचे शिवभक्तों ने बताया कि उन्हें पूरी यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने कहा कि जगह जगह प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया है।
3: सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो भाई हम कल आए थे, मेरा नाम 001 अखिल पंडित है और अमित और ओमी, हम तीनों साथ में आए हैं जल लेने के लिए। हर साल ही आते हैं, काफी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रखी थी। पुष्प वर्षा भी हुई है, काफी 2-3 बार पुष्प वर्षा हुई है इधर, और व्यवस्था भी बहुत मतलब बहुत बढ़िया। अब की बार भीड़ का कुछ ऐसा मसला नहीं है, और उत्तराखंड सरकार को हम बहुत ही जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावा एवं दान सामग्री चोरी प्रकरण में चमोली पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनोज कुमार जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लामबगड़ बैराज स्थित जल विद्युत परियोजना में सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात था और परियोजना अधिकारियों के अतिथियों व रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए मंदिर पहुंचाता था। पुलिस को आरोपित के मोबाइल फोन की रिसाइकिल बिन से चोरी की गई सामग्री के फोटो बरामद हुए हैं। आरोपित की निशानदेही पर रामगढ़ स्थित उनके कमरे से चोरी की गई दान सामग्री बरामद की गई। हरिद्वार जिला कारागार में 7 दिवसीय माता श्री गंगा कथा का भव्य आयोजन कराया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में जेल के कैदियों ने बेहद उत्साह और भक्तिभाव से भाग लिया। इस दौरान कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने माँ गंगा की धरती पर अवतरण, उनकी उत्पत्ति और उससे जुड़े विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि कारागार में ऐसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बंदियों का मानसिक और आचरण संबंधी सुधार करना है। इन आयोजनों से कैदियों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वे पुरानी गलतियों को भूलकर समाज की मुख्यधारा में सकारात्मक और रचनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने खेल विजन, नई खेल नीति और लिगेसी प्लान के अनुरूप आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के निर्देश दिए। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा और कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में देशभर से बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz।

कब्बन मिर्ज़ा को अभी आप रज़िया सुल्तान फिल्म में सुन रहे थे। जानेसार अख्तर के बोल थे और खयाम का संगीत। कार्यक्रम का ये गीत हीरो फिल्म से, अनजान के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज़ रेशमा की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ योशिता पांडे। उत्तराखंड विशेष में आज हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक जन भागीदारी अभियान है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति सम्मान, गर्व और देशभक्ति की भावना से जोड़ना है।

0: अभियान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र भसीन, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उत्तराखंड सरकार से। हमारे दूसरे मेहमान हैं पूर्व अपर निदेशक SCERT के प्रदीप रावत जी, और इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी रेणु प्रीति पंत।
1: तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हर भारतीय के दिल में बसता तिरंगा भारत की पहचान है। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत, विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान की। ये एक ऐसा अभियान है जो देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश देता है। और साल 2022 से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। हर वर्ष इसे बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष साल 2026 में भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक इसे पूरे देश भर में मनाया जाएगा। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान आखिर पूरे देश में क्या संदेश देता है, इस अभियान का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनका परिचय करते हैं और स्वागत कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, जो उपाध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उत्तराखंड सरकार से। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं पूर्व अपर निदेशक SCERT के प्रदीप रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत, दोनों ने अपना कीमती समय हमें दिया है। तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी आपके पास, क्योंकि साल 2022 से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ हम देख रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या, आखिर क्यों इसे शुरू किया गया, क्या कहता है ये अभियान?
2: जैसा कि आपने अभी स्वयं कहा कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है
1: जी।
2: तो निश्चित तौर पर ये जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, इसको हर व्यक्ति तक और गहराई से पहुंचाने के लिए और जो नई पीढ़ी है उसको इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए ये अभियान चलाया गया। सन 2022 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी
1: जी।
2: और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये विजन था कि हम इस तारीख से जो है अपना जो कार्यक्रम चले हैं अमृतकाल के, उसमें हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। और तब से ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर चल रहा है। उसी क्रम में इस साल भी जो है ये कार्यक्रम पूरे देश में और उत्तराखंड में चलने वाला है। ये कार्यक्रम का जो समय है वो 9 अगस्त से रहेगा और 15 अगस्त तक ये चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जो 9 अगस्त का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देहरादून के अंदर एक विशाल रैली, तिरंगा रैली निकाली जाएगी। और इसके साथ ही फिर अलग अलग स्थानों पर भी जो है हर दिन जो है कार्यक्रम किए जाएंगे और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान चलने वाला है। तो ये प्रारंभिक स्थिति हमारी है, क्योंकि मूल जिसके पीछे उद्देश्य है वो यही है कि देश में हर घर तक तिरंगे का संदेश जाए। देशभक्ति की भावना हर भारतीय की एक अंतर्निहित भावना है, उस भावना को और अधिक पुष्ट किया जाए।
1: प्रदीप जी, आपके हिसाब से आज के समय में हर घर तिरंगा अभियान जो साल 2022 से इसकी शुरुआत की गई है, ये कितना जरूरी आप इसे मानते हैं?
3: तिरंगा राष्ट्रीय अस्मिता का एक सिंबल है
1: जी।
3: और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, देश कंट्री और नेशन राष्ट्र। राष्ट्र देश जो है एक भौगोलिक बाउंड्री होती है
1: जी।
3: लेकिन राष्ट्र एक भावनात्मक कनेक्शन होता है
1: जी।
3: तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो देश के समस्त लोग, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उन सब लोगों का जो भावनात्मक कनेक्शन है वो राष्ट्र को जोड़ता है और उसके आधार पर राष्ट्र बनता है। और तिरंगा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि राष्ट्र की भावनाओं का, ठीक है। तो वो जब तिरंगा होता है तो हम जब तिरंगों के सम्मान की बात करते हैं तो राष्ट्र की सामूहिक भावनाओं का सम्मान होता है कि हम सारा राष्ट्र एक है। डायवर्सिटी देश के अंदर हो सकती है, लैंग्वेज डायवर्सिटी हो सकती है, आपके पहनावे की डायवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलियां सब चीज अलग होती है, लेकिन इमोशनली हम एक हैं। तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो हमारा झंडा करता है, इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व।
1: हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है तो लगता है कि पूरा देश एक है।
3: बिल्कुल,
1: क्योंकि एकता का संदेश
3: बिल्कुल बिल्कुल, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई साउथ में है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई इस जाति का है, कुछ उस धर्म का है, लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात है, तिरंगे की बात है, तो हम सब लोग एक हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको प्रत्येक घर में होना चाहिए।
1: जब आप भसीन जी तिरंगे को हर घर में लहराता हुआ देखते हैं, क्योंकि स्पेशली साल 2022 के बाद हम ऐसा देख रहे हैं, उससे पहले ऐसा नहीं था, ऑफिस में होता था या स्कूलों में तिरंगा लहराया जाता था, लेकिन अब हर घर में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके मन में क्या भाव निकलता है?
2: तो आज तिरंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हम जहां कहीं तिरंगा देखते हैं तो भारत दिखाई देता है हमको, और जब हर घर में देखते हैं तो हर घर में भारत दिखाई देता है। अभी जैसा कि बात आई कि ये सामूहिकता का प्रतीक है, और तिरंगे की जो महत्ता है ये है कि हम कहीं भी कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो उसको हम अपने तिरंगे के फहरा करके उसका प्रतिकरण भी करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी चोटी हमारे देश के जो है प्रतियोगी जीतते हैं तो वहां भी तिरंगा फहराते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ा कार्य होता है, खेल कार्यक्रम होते हैं, तो वहां भी तिरंगा होता है। इसी प्रकार से हर बड़ी जो इवेंट है उसके अंदर तिरंगा हमारे देश को प्रतिनिधित्व करता है, और तिरंगे की तो भावना की स्थिति यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगे का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में जब जो है हमारे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंस गए थे, तो उनको निकालने के बारे में जब चर्चा हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात की, और कुछ समय का युद्ध विराम केवल उन छात्रों को निकालने के लिए किया गया। लेकिन उनकी पहचान कैसे हो? उनकी पहचान हुई हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ। जिस जगह पर तिरंगा लगा था वो भारतीयता का था, और उसकी जो छत्रछाया में सभी हजारों जो है छात्र वो जो है बहुत सुरक्षित निकले। और यहाँ तो मैं एक बात और जोड़ूंगा कि केवल भारत के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और दूसरे देशों के छात्र भी उस तिरंगे की जो है छाया में बहुत सुरक्षित निकल आए। तो ये तिरंगे का हमारा महत्व है। तो निश्चित तौर पर जो हर घर में जब तिरंगा दिखता है तो हमारी सभी की एक सामूहिक एकता दिखाई देती है, हमारी सभी की सामूहिक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दिखाई देती है। और हमारा तो मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राष्ट्र पहले है। हम अपने पार्टी के अंदर भी यही कहते हैं, राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और मैं स्वयं तृतीय अंत में। तो वो जो राष्ट्र प्रथम है वो उसको भी जो है प्रकृति करता है।
1: ठीक है, आगे आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन का गौरव हर घर तिरंगा, इस पर एक खास रिपोर्ट।
4: तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक, इसी राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक से अपने घर पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में सहभागी बनने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में भी इस अभियान को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा है। विभिन्न सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठन लोगों को अभियान से जोड़ने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड में भी इस अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि साल भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 15 अगस्त से पहले विचार और सुझाव माईगोव पर साझा करने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के मंत्री भी प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रव्यापी अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान कर रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और देश के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने घर के सर्वोच्च स्थान पर तिरंगा फहराने की अपील की।
5: 15 अगस्त हम सब के लिए हमारी आज़ादी का एक ऐतिहासिक दिन है, और निश्चित रूप से ये दिन तिरंगा के रूप में हम सबको अपनी राष्ट्रभक्ति का स्मरण कराता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझती हूँ कि हर वर्ष जो है तिरंगा को लेकर जो हमारा मान सम्मान, जो हमारी भावनाएं हैं, उसे अपने घर में, अपने घर के सबसे उच्चतम स्थान पर उसे स्थापित करने का जो है एक संकल्प जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों से करी है। तो हमारी पार्टी भी, स्वयं मैं भी और आम जनमानस भी जो है हर घर तिरंगा में प्रतिभाग करेंगे, हर घर तिरंगा लगाने का काम करेंगे।
4: उत्तराखंड में इस अभियान को लेकर व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली और अन्य जिलों में प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, युवा, महिलाएं और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। बाजारों में तिरंगे की खरीदारी बढ़ी है और लोग अपने घरों को राष्ट्रीय ध्वज से सजा रहे हैं। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि हर घर तिरंगा, हैरानी से।

0: राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने लोगों से इस अभियान को जन भागीदारी का उत्सव बनाने की अपील की।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है और जब भी उन्होंने देशवासियों से कोई अपील की है, देशवासियों ने उसको हाथों हाथ लिया है। वो चाहते हैं कि 15 अगस्त के इस पवित्र अवसर पर, आजादी के इस मौके पर हर देशवासी हाथ में एक तिरंगा लिए हुए हो, हर घर में एक तिरंगा फहरा रहा हो, जिसे पूरा देश राष्ट्र प्रेम की भावना से और एक राष्ट्रीयता की भावना से।
0: इस अभियान के तहत देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, पंचायतों और विभिन्न संस्थानों में तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, जागरूकता रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन भागीदारी से जुड़े अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे पूरे सम्मान के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियमों का पालन करें। हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्य बोध को सशक्त करने का माध्यम है। यही भावना देश की एकता और अखंडता को नई ऊर्जा देती है।
2: तो इस रिपोर्ट के बाद लौटते हैं अपनी चर्चा पर और सीधे हम बात करेंगे प्रदीप रावत जी आपसे, क्योंकि तिरंगा हमारे देश शान है। ऐसे में स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसी क्या गतिविधियां होनी चाहिए ताकि तिरंगे के प्रति सम्मान जो आज की युवा पीढ़ी है, जिसे हम जैन जी कहकर भी अब बुला रहे हैं, उनको होना चाहिए।
3: देखिए, विद्यालयों में राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होना चाहिए और उसकी दृष्टि से तिरंगा का जो महत्व है, जिसे कहा जाता है कि भाई स्वधर्म जिसका है, तो बच्चे तिरंगे को जोड़े, जो ड्यूटी उनको दी गई है, अगर वो पढ़ने का उनका उम्र है तो वो पढ़ाई में अपने को संलिप्त करें। ये ड्यूटी है नेशन के प्रति, उनकी भी एक ड्यूटी है कि वो बेहतर शिक्षा लेंगे तो राष्ट्र और समाज के लिए बेहतर काम कर सके। तो तिरंगा एक तो कहा कि भाई क्योंकि हमारा राष्ट्र विभिन्नताओं से भरा हुआ है, एक ही विद्यालय में विभिन्न समाजों के लोग भी रहते हैं, तो बच्चे उस तिरंगे के माध्यम से एक यूनिटी बच्चों के अंदर, मतलब वो भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं। तो बच्चों को एक तो देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, तो ये जो पीढ़ी है वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो वहां पर जो त्याग किए गए थे उसके साथ सीधे संपर्क में नहीं है, वो किताबों से मिलता है। तो इस पीढ़ी को भी उसे संघर्ष की याद दिलाना और उसमें जो समर्पण था राष्ट्र के भावों को व्यक्त करने, इसके लिए विद्यालयों में इस तरह के जैसे ऐसे राइटिंग होता है, क्या कहते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती है या फिर तिरंग को लेकर के दौड़ प्रतियोगिता होती है, जैसे हम को देते हैं जब क्रॉस कंट्री होती है बच्चे को, तो वो झंडे को पकड़ते हैं, तो इससे उनको फील होगा कि हम इस राष्ट्र के बच्चे हैं और इस राष्ट्र की अस्मिता है, इस राष्ट्र की पावर है हम, ठीक है। तो हमको अपने कार्यों को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, ये भाव उनके अंदर विकसित होगा इस तरह के कार्यक्रमों से।
2: मैंने भसीन जी आपके पास हम आना चाहेंगे, जो झंडे के तीन रंग है, यानी जो हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, उसके तीन रंग आज के समाज में जो लोग हैं उन्हें क्या संदेश देते हैं?
4: देखिए, हमारे झंडे में जो तीन पट्टियां हैं, सबसे ऊपर जो है वो केसरिया है, और केसरिया जो है अपने आप में त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। इसके बाद जो सफेद पट्टी है वो अपने आप में शांति, उदारता का प्रतीक है, और नीचे जो हरी पट्टी है वो अपने आप में कृषि का और पर्यावरण का, इन सब बातों को उसमें समाहित किया गया है। बीच की पट्टी के मध्य में अशोक चक्र है, जो कि अशोक स्तंभ से सारनाथ में जो स्थापित है उससे लिया गया है, और ये अपने आप में राष्ट्र की जो अपने प्रतीक है उसको दिखाता है, और बीच में जो 24 जो है उसमें तीलियां या रेखाएं हैं वो हमारी जो लगातार जो काम करने की वो है प्रक्रिया, उसको इंगित करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो हमारा झंडा है वो शौर्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और साथ ही हमारे विकास का प्रतीक है, और हमारा जो बीच का चक्र है वो अपने आप हमको नवरत कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये झंडा हमको एक प्रकार से कई संदेश देता है। और दूसरी बात जो अभी सामने आ रही थी कि हमारे विद्यालयों में और शिक्षण संस्थाओं में, तो हम जानते हैं कि एक कार्यक्रम ये होते हैं हर जगह पर, लेकिन अब जब ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के रूप में आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पहले आमतौर पर एक

0: कार्यक्रम जो है वो शुभ होता था, झंडारोहण हुआ और कुछ कार्यक्रमों के साथ ये अपना आप समाप्त हो गया। लेकिन इस बार जो है कहा गया है, इससे पहले भी ऐसा हुआ कि विद्यालयों से महाविद्यालयों से जो है जो छात्र और शिक्षक है वो अपनी तिरंगा यात्राएं चलाएंगे, वो निकलेंगे लेकर के, सीधा सीधा तिरंगा उनके हाथ में होगा। तो तिरंगा उनके हाथ में होगा तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्र की भावना है उनके अंदर और अधिक गहराई से स्थापित होती है। और जहां तक उसके सम्मान का सवाल है तो निश्चित तौर पर तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, वो हमारा सबसे ऊपर रहने वाला है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे जब कोई बड़ा काम होता है तो सबसे ऊंची चोटी पर भी हमारा तिरंगा जाता है, और इसका हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा भारी महत्व है। जो हमारी सेनाएं हैं वे अपने तिरंगे की जो है छाया में अपने देश की सुरक्षा करती है, और अगर कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो उनके जो पार्थिव शरीर होता है उसको भी तिरंगा में लपेट के लाया जाता है। तो ये देश के प्रति जो उनका एक बलिदान है उसको परिचायक है। तो राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावना हमारे स्कूलों में महाविद्यालयों में बच्चों में जाए, और हम जो भी काम करें वो काम जो है प्रथमता हमारे ध्यान में होना चाहिए, हम राष्ट्र के प्रति कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत विकास तो होगा ही होगा, हमारा एक पारिवारिक विकास भी होगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा ध्यान रहना चाहिए वो देश के हित का रहना चाहिए। ये संदेश भी जो है हम कहिए
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हम हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, उत्तराखंड में क्या कुछ खास तैयारियां हैं? हर दिन जो 9 से 15 की अवधि है उसमें क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे? क्या स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है? यानी किस तरीके से आम नागरिक की भागीदारी उसमें होने वाली है, वो जानकारी आप दीजिए।
0: 9 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 9 अगस्त के पहले दिन प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देहरादून में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालने के साथ की जाएगी। इसके साथ फिर अगले दिनों में जो है वो अन्य विभिन्न कार्यक्रम होंगे, और 13 से 15 अगस्त तक जो है हर घर पर तिरंगा लहराने का अपना कार्यक्रम चलेगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संगठन हैं, अलग अलग एनजीओज हैं, नागरिक हैं, इन सबके सहयोग लेते हुए हर घर में तिरंगा जो है उसको स्थापित किया जाएगा। और ये फिर एक निर्देश भी दिया गया है कि 15 अगस्त के बाद हम तिरंगे को बड़े सम्मान के साथ उतार लें और सुरक्षित जो है उसको रख लें, जिससे कि तिरंगा जो लगातार लगा रहेगा तो उसे कल खराब होने की संभावना भी रहती है, तो उसका सम्मान किसी स्थिति में जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और एक संदेश देने की जो एक बात है वो भी तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश होगा वे भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में भी जो है वहाँ पर निदेशक या अन्य जो संदेश भेजते हैं उनको पढ़ के बताया जाता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आदि यही आते हैं।
1: ठीक है, तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा आपने हमें बताई है। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि जब हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है तो कई सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली हम बात करें गांव की, जिन्हें नहीं जानकारी होती है कि तिरंगे को जब हम फहराते हैं तो उसके सम्मान में क्या नियम होते हैं, तो आप बताइए कि तिरंगा फहराने के क्या नियम है।
2: देखिए, फ्लैग कोड है जी, फ्लैग कोड में बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से इसको सम्मान से किस तरह से झंडे को ऊपर चढ़ाया जाता है, किस तरह से नीचे तोड़ा जाता है। लेकिन अभी जो फ्लैग कोड जो रिसेंट बना है उसमें थोड़ा सा ढीलताएं दी गई है। पहले बहुत ही कठोर फ्लैग कोड था, इसलिए कि आम जनता उस सामने के मुख्य चीज है फ्लैग के प्रति सम्मान के भावना, जैसे कि सर ने बताया कि भाई उसको कैसे उसको मतलब कटाफटा नहीं होना चाहिए, उसका क्या कहते हैं जब आप उसको मतलब कहीं पर भी उसका प्रदर्शन कर रहे होंगे तो सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि जमीन पे वो न गिरे, और जब कटाफटा हो जाए उसे न लगाया जाए। तो एक फ्लैग कोड में स्पष्ट है ठीक है कि कैसे जब आप राष्ट्र फ्लैग कोड पढ़ाते हैं उसके बाद राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान में किस मुद्रा में आप खड़े होंगे, इत्यादि सारी चीजें हैं। लेकिन अब पहले की अपेक्षा फ्लैग कोड को थोड़ा आम जनता की वजह से इसको क्या कहते हैं इसको थोड़ा शिथिलीकरण किया गया, लेकिन मूल भावना ये कि चूंकि फ्लैग राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, भावना का प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रतीक है वो, तो उसके प्रति सम्मान का भाव रखा जाना चाहिए। एक सैनिक जब क्या कहते हैं अगर सेना कहीं पर युद्ध लड़ रही है, अगर किसी सैनिक के पास झंडा होता है तो अगर उसको गोली भी लग जाए तो अपने साथी को वो हैंड ओवर करता है, ये कस्टम है ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ये परिस्थितियां रही हैं कि जब हजारों की संख्या में लोग तिरंगे को लेकर के वहां पर उन पर लाठीचार्ज या गोली चार्ज हो रहा है, तो जब कोई हताहत हो जाता है, उसके हाथ में तिरंगा है, तो कभी तिरंगे को नीचे नहीं गिरने देता, वो तिरंगे को अपने सक्षम सहयोगी के हाथ में फैला देता, तो उससे उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता के बारे में एक संदेश जाता है। तो वो सारी चीजें आम जनता को भी समझनी चाहिए, और मैं समझता हूँ भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, सारे लोग चाहे वो क्या कहते हैं साक्षर नहीं हो उस तरीके से, लेकिन राष्ट्र की उस भावना से वो परिचित हैं, और कभी ऐसा नहीं पाया गया है कि लोग जो है क्या कहते हैं तिरंगा का अपमान कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, देश के लोग जागरूक है अपने तिरंगे के प्रति किस तरीके से सम्मान करना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। वसीम जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था, उसकी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो तिरंगे का बड़ा योगदान कहा जाता है। हम चाहेंगे कि उस समय में जब तिरंगे की क्या भूमिका रही और आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
0: अगर हम आजादी के आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो तिरंगा भारत में झंडे के रूप में आया है तो 1906 में कलकत्ता में इसको फहराया गया था, लेकिन इसका स्वरूप दूसरा था। इसके जो है सबसे ऊपर जो है वो हरी पट्टी थी, उस पर कुछ कमल बने हुए थे, बीच में पीली पट्टी थी जिसमें कि वंदे मातरम लिखा था, और नीचे लाल पट्टी थी जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा थे। इसके बाद 1907 में लगभग ऐसा ही झंडा जो है मैडम भीमा कामा जी के द्वारा जो है वो जर्मनी में प्रस्तुत किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, तो पहली बार जो है भारतीय झंडे का जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है प्रस्तुतिकरण हुआ
1: जी।
0: इसके बाद जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तो एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने एक और झंडा बनाया होम रूल आंदोलन के लिए, और उस आंदोलन में जो झंडा था उसमें एक और जो है वो यूनियन जैक का हिस्सा था। इसके अलावा चार लाल और तीन हरी पट्टियां थी, सात सप्तऋषि के नाते सात सितारे थे, और कोने में जो है एक चंद्रमा और सितारा बना था, उसका स्वरूप अलग था। लेकिन जो वर्तमान झंडा है अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के एक सतना सेनानी थे पिंगली वेंकैया जी, उनके द्वारा ये झंडा जो प्रस्तुत किया गया। लेकिन मूल रूप से जब उन्होंने झंडा प्रस्तुत किया था तो उसमें लाल और हरा रंग थे, उन्होंने गांधी जी को दिखाया तो गांधी जी ने कहा नहीं इसमें जो है सफेद पट्टी और जोड़ दी जाए। तो वहां से जो आज का झंडा है उसका एक प्रकार से स्वरूप उभरना शुरू हो गया। फिर गांधी जी के कहने पर जो है ऊपर जो है केसरिया रंग, बीच में जो है सफेद पट्टी और नीचे हरी पट्टी हो गई, और बीच में चरखा, वो जो स्वदेशी का एक प्रकार से अभिव्यक्ति थी वो रखा गया। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जो है इसको 1931 में अपना लिया, जब देश आजाद हुआ है तो इसी पे प्रकाश हम गए कि जो झंडा उस समय था इसमें चरखा था, उसमें एक परिवर्तन हुआ कि चरखे के स्थान पर अशोक चक्र आ गया। और फिर जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसको स्वीकार किया गया, और फिर 15 अगस्त 1947 को ये तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है पहली बार जो है वो फहराया गया, और तब से तिरंगा जो है हमारा इस रूप में हमारे सामने है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो एक प्रकार से संघर्ष हुआ, देश के लिए जो बलिदान दिए गए, देश भावनाओं को लेकर के लोगों ने प्रताड़नाएं सही, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है, देश की आजादी की लड़ाई को भी हमको बताता है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी हमें याद दिलाता है, और उसके बाद जो विकास की यात्रा और देश के गौरव की बात है उसका भी साबित करता है। तो आज हमारे लिए जो तिरंगा है वो हमारा स्वाभिमान भी है, हमारी पहचान भी है, हमारा गौरव भी है, और सबसे ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ये भावना हम हर भारतीय के बीच में है।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है तिरंगे को लेकर। जब इसे सुन रहे होंगे तो उन्हें अच्छी खासी जानकारी इसकी मिल रही होगी। प्रदीप राव जी, आपके पास हम आना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक अनुभव होता है तिरंगे को लेकर, क्या आपके कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना जो आपको प्रेरित करती हो तिरंगे के प्रति?
2: देखिए, तिरंगा तो अपने आप में एक नहीं है, कई घटनाएं ऐसी हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय के लिए जाए, चाहे क्या कहते हैं युद्ध की किसी भी परिस्थिति में लिया जाए, तो तिरंगे के साथ तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा, पूर्व में भी कहा मैंने कि तिरंगे का जो सम्मान था, जैसे जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था कि उस समय लोग तिरंगे को लेकर साथ में चलते थे, और तिरंगे के की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी अहताहत होता था तो सामने को दे देता। तो ये सारी एक केवल एक कहानी वाली बात नहीं है, ये सभी जगह एक तरीके से तिरंगे के बारे में एक भावनात्मक जो संबंध है वो जब से राष्ट्र की अवधारणा में हम लोग कि भाई राष्ट्र का क्या महत्व है, हम लोग सब लोग इस राष्ट्र में चाहे किसी भी प्रदेश की हों, किसी भी समाज की हों, किसी भी धर्म की हों, जाति हों, हम राष्ट्र के रूप में हों के रूप में है और ये तिरंगा हमारा, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। तो ये प्राय सभी जगहों पर और भारत राष्ट्र से जो हम सब लोग भारत के जो नागरिक हैं, चाहे किसी भी आज हमने जो हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात कहें, वो संविधान और लोकतंत्र के आधार पर आप किसी विभिन्न पार्टियां शासन में आती हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो सब लोग एक होते हैं। तो सारे जो तिरंगे से संबंधित जितनी भी ये बातें हैं ये तिरंगे के महत्व को स्थापित करती हैं।
1: यानी कि हर तिरंगे की कहानी अपने आप में हमें गौरवान्वित महसूस कराती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वसीम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को आज के समय में, खासतौर पर जो हमारी जेनजी जनरेशन है, उन्हें तिरंगे का इतिहास पढ़ाना क्यों आवश्यक है, तिरंगे की जानकारी क्यों उन्हें होनी चाहिए?
0: देखिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। इसका कारण ये है कि जो हमारा पिछले 7 दशक में इतिहास पढ़ाया गया उसके अंदर कई इस प्रकार की ऐसी बातें रही कि जो देशभक्ति की जो भावना उनमें आनी चाहिए थी, जो गौरवमय इतिहास था उसके बारे में कम जानकारियां दी गई और किसी कारण विशेष से उनको कुछ और जानकारियां देते गए। तो उससे ये निष्कर्ष निकल रहा था कि जो नई पीढ़ी थी उसको देश की गौरव गाथा के बारे में पता नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है उसके अंतर्गत विरासत से लेकर के विकास दोनों की बात कही गई है और उसी में भारतीय ज्ञान परंपरा भी जोड़ी गई है, जिससे कि हमारे छात्रों को अपने देश की जो परंपरा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। और ये कहा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी नहीं है तो वे आगे न्याय इतिहास नहीं रच सकते। तो हमारी पीढ़ी जो है वो तो इस बारे में थोड़ा जानती है, लेकिन नई पीढ़ी को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, जिससे कि विश्व भारत के जो स्वरूप है उसको समझें और विश्व गुरु बनाने की जो हमारी एक परिकल्पना है जिसकी दिशा में मोदी जी बढ़ रहे हैं उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सके। तो युवाओं को अपने इतिहास के बारे में, अपने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो एक राष्ट्रभावना बैठी हुई है उसको और अधिक प्रस्फुटित कर सके और वे कोई ऐसा कदम उठाने से दूर रहें जो राष्ट्र के हित में ना हो।
1: ठीक है प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, संक्षिप्त में आप बताइएगा एक या दो लाइन में कि प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: हम यही निवेदन करेंगे कि तिरंगा राष्ट्र का प्रतित्व करता है और आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, आप लोगों को इस राष्ट्र के प्रति अपना जो सम्मान है उसको व्यक्त करने देंगे तिरंगा के इस कार्यक्रम में, जो हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का, हम करेंगे आप स्टूडियो में आए, कीमती समय दिया और एक बहुत ही खास विषय पर आपने हमसे चर्चा की। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसी संकल्प के साथ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। ऐसे में आप सभी लोग अपने घर के सबसे सर्वोत्तम उच्च स्थान पर अपने देश के राष्ट्र ध्वज को यानी तिरंगे को फहराए और उसका सम्मान करें। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में की गई चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आ गया नमस्कार।
3: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, इसी के साथ मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति उत्तराखंड विशेष। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 2 बजने को है, अब कुछ ही पलों में हमारे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of

0: traveling home for Onam and to ease the seasonal rush. Of these, 38 special services will be operated within the jurisdiction of the Southern Railway. Southern Railway has also announced 16 additional special services to other railway zones. Other railway zones will operate another 58 Onam special services during the period. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: The government has debunked a message circulating on social media that claims that India Post is offering gifts and rewards under dark seva gifts. The fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that India Post has no connection with any such dark seva gifts offer, reward scheme or lucky draw. The unit advised citizens to not click on any suspicious links or web pages and never share personal information such as bank details, OTP or Aadhaar number. It also urged citizens to send any suspicious information related to the central government at the rate PIB fact check or on WhatsApp on 9187997112592. US President Donald Trump has defended plans to build a new ballroom and military complex on the White House grounds, describing a proposed rooftop drone port as an important military asset. Trump shared a graphic of the proposed installation on his Truth Social platform. The image shows military drones on a rooftop above the planned ballroom, with armed personnel and Washington Monument visible in the background. Trump said the facility would strengthen national security in Washington, D.C. and protect future presidents. His comments come amid a legal dispute over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
3: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
3: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
2: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता घोषणा पर संतोष जताया है लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा

0: गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने

0: हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी सैनिक साथियों को जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जिसकी दास्तान कहते हैं, दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जिसकी दास्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी हां श्रोताओ, आज का दिन कुछ खास

दिवस है। आज एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारतीय इतिहास को अभूतपूर्व और युगांतरकारी बना दिया, जहां भारत का हर नागरिक सैनिक बन गया। महात्मा गांधी का एक नारा केवल वक्तव्य नहीं बना, बल्कि इसने भारतीयों के मन से ब्रिटिश हुकूमत का डर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। नारा था, करो या मरो। उस समय के लोगों ने इस नारे को इतना आत्मसात कर लिया कि उन्होंने जेल या मृत्यु के डर को पीछे छोड़ दिया। और जब लोग मौत से बेखौफ हो जाते हैं ना, तो अच्छी से अच्छी हुकूमतें बर्बाद हो जाती हैं। हर भारतीय के मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सुपुर्दे खाक हो जाएंगे तेरी मिट्टी में ए वतन, सुपुर्दे खाक हो जाएंगे तेरी मिट्टी में ए वतन, हमने तुझसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की।

श्रोतो, इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे निर्णायक जन आंदोलन था। आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी द्वारा दिया गया ओजस्वी नारा बना करो या मरो। इसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग करना। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हर भारतीय ने ब्रिटिश हुकूमत को स्पष्ट कर दिया था कि अब वो न तो गुलाम रहेंगे न गुलामी सहेंगे, और अब भारतीयों पर राज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और हर दिल बस यही कह रहा था, गुलामी सोच है, गुलामी सच नहीं है, गुलामी सोच है, गुलामी सच नहीं है, अभी आजादी की जंग बाकी है, गुलामी और नफरत से इस देश को आजादी पाना अभी बाकी है।

श्रोताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण थे क्रिप्स मिशन की असफलता, यानी भारतीयों को युद्ध में सहयोग के बदले मन माफिक अधिकार न मिलना। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी थी और सामान की कमी होने लगी थी, और अब जनता भी कार्मिक सुधारों के बजाय अंग्रेजों से मुक्ति चाहती थी। ये आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं, वरन इसमें विद्यार्थी, किसान, मजदूर और आम जनता भी बड़ी संख्या में जुड़ गई थी। आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त को गांधीजी, नेहरू, पटेल और आजाद जैसे कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, पर जन आंदोलन ने इस मिशन को और भी गहरा और उग्र कर दिया, जिसमें अब महिलाएं भी जुड़ गईं। भूमिगत गतिविधियों ने इस आंदोलन को चलाए रखने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें वो महिलाएं थी अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, मातंगिनी हाजरा, और इनका साथ दिया था राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जैसे नेताओं। अब महिलाएं भी इस जुलूस का नेतृत्व करने लगी थी और हर दिल सिर्फ यही गा रहा था, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में अब हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में।

को जमीन पर नहीं गिरने दिया, भले ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, पर अब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि वे अब और भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रवाद की भावना हर गांव, हर शहर और हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी। इसके दूरगामी परिणाम सामने आने वाले थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को पूरी तरह से थका दिया। युद्ध खत्म होते ही कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया और अंततः 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और हम आजाद हो गए। और हर भारतीय अपने मन से कुछ इन शब्दों का उद्गार कर रहा था, इस वतन की फिजाओं से बेशुमार इश्क हुआ है, इस वतन की फिजाओं से बेशुमार इश्क हुआ है, इसलिए इसका कर्ज अदा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है।

ब्रिटिश सरकार रणनीतिक रूप से युद्ध हार चुकी थी। विश्व युद्ध की मार और भारत छोड़ो आंदोलन की चौतरफा चोट ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सम्मानजनक तरीके से भारत छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। ये वो दौर था जब भारत की धरती गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी और तोड़ने के लिए छटपटा रही थी। हर भारतीय के हृदय से निकली पीड़ा ने इस देश को स्वतंत्र बनाने में अपना अपना एक अलग योगदान दिया, क्योंकि अत्याचार की भी एक सीमा होती है जिसे पार कर लिया गया था और भारत की जनता ने ठान लिया था कि न अब वो सहेंगे और न वो रुकेंगे। ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं रही, हर भारतीय की बन गई। हर भारतीय इस आंदोलन में अपना अपना एक हिस्सा देना चाहता था। उस रात भारत सोया नहीं था, हर दिल में तूफान था। गुलामी की जंजीरों से लड़ने को हर हिंदुस्तानी तैयार था। न कोई जाति थी, न कोई भेद था, न कोई ऊंच नीच की दीवार थी। सिर्फ एक ही सपना, एक ही संकल्प था कि आजाद होना है इस बार, सिर्फ आजाद।

भारत छोड़ो आंदोलन करोड़ों भारतीयों के साहस, त्याग और एकता की गाथा थी, जिसने स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष को नई दिशा दी। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। सभी सैनिक साथियों को जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और चंदलाई ने आपके लिए और हम सब के लिए जमीन पे घर बनाया है, हम जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है, हम जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन।

लाल सिंह चड्डा फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कार्यक्रम का ये अगला गीत पद्मावत फिल्म से, जिसे आवाज दी है शिवम पाठक ने, AM तुरास के बोल हैं और संजय लीला भंसाली का संगीत।

कार्यक्रम का ये अगला गीत दम लगा के हैसा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में, अनु मलिक का संगीत है और वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ है।

गाने नए तराने इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। समय हुआ है 3:16। आइए आपको सुनवाते हैं भाग मिल्खा भाग फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल और जावेद बशीर।

अग्निपथ फिल्म में आप सोनू निगम को सुन रहे थे, आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है AM तुराज ने और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

गदर टू फिल्म में अभी आप नीति मोहन और साथियों को सुन रहे थे। सईद कादरी के बोल थे और मिथुन का संगीत। आइए अब सुनते हैं रांझना फिल्म का गीत जावेद अली और साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम का ये गीत शेरशाह फिल्म से जुबीन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में तनिष्क बागची के बोल हैं और संगीत भी तनिष्क बागची ने ही दिया है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

सत्यमेव जयते टू फिल्म में अभी आप जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर के बोल थे और रोचक कोहली का संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में नीति मोहन की ही आवाज़ में एक और गीत। कुमार के बोल हैं और संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: लापता लेडीज फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के अपराह्न के 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि का DBT के माध्यम से भुगतान किया। श्री धामी राज्य की नई पीढ़ी के साथ सीधे संवाद कर अगले 5 वर्षों के उत्तराखंड का विजन तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने खेल विजन, नई खेल नीति और लिगेसी प्लान के अनुरूप आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के निर्देश दिए। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए UPI लेनदेन निःशुल्क रहेगा। केंद्र सरकार ने डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार देने के दावों का खंडन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में देशभर से बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने अल्मोड़ा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से चंपावत में श्रमिक कल्याण शिविर के आयोजन में निःशुल्क जाँच की गई। ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार जिले की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 चोरों को 5 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया। चमोली जिले के गोपेश्वर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर नगरवासियों से स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई। और प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM

100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं निवेदिता घोष से राग चारुकेशी में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संतोष कुमार।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निवेदिता घोष से राग चारुकेशी में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और लेखक को याद कर रहे हैं जिन्होंने अभिनय को जीवन का उद्देश्य बनाया, रंगमंच को अपनी कर्मभूमि माना और कला को समाज से जोड़ने का काम किया। आपका नाम है दिनेश ठाकुर। इनके विषय में हम आगे भी बात करेंगे, पर पहले आपको इन पर फिल्माया इनके अभिनय से सजी फिल्म का कोई गीत सुनाएंगे, क्योंकि दिनेश ठाकुर ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अभिनय को केवल पेशा नहीं समझा बल्कि समाज और संस्कृति से जोड़ने का सृजन माध्यम चुना। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी अभिनीत फिल्म मेरे अपने फिल्म का ये गीत।

युवाओं के संघर्ष को दिखाती ये फिल्म थी मेरे अपने। इस फिल्म में उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया था। दिनेश ठाकुर का जन्म 8 अगस्त 1947 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका रुझान साहित्य, अभिनय और रंगमंच की ओर बढ़ता गया, क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज में उन्होंने इस रंगमंच की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। युवावस्था में ही उन्होंने समझ लिया था कि अभिनय केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने रंगमंच को अपने अभिनय की जीवन की शुरुआत का पहला मंच माना। मंच का किसी भी मंच पर जब वो अभिनय करते थे तो उसमें संवाद, अभिनय, भाव अभिव्यक्ति और चरित्र की गहराइयों को जरूर समझते थे। यही अनुभव आगे चलकर उनके फिल्मी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उस समय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और निरंतर अभ्यास से का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में अवसर मिलने लगे और उन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आइए सुनवाते हैं आपको उनके अभिनय से सजी एक फिल्म का गीत। फिल्म का नाम है परिणय।

एक प्रख्यात भारतीय रंगमंच फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे दिनेश ठाकुर। उन्होंने 1974 में रिलीज हुई फिल्म रजनीगंधा में मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई थी, जिसमें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला था। फिल्म फेयर समीक्षक पुरस्कार दोनों ही इस फिल्म को मिले थे। उन्होंने 1976 में मुंबई स्थित थिएटर कंपनी एनके प्रोडक्शन की भी स्थापना की थी। उन्होंने समानांतर यानी आर्ट सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा दोनों में प्रभावशाली अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्में थी रजनीगंधा, घर, गृह प्रवेश, अनुभव, कालीचरण। वे अपने सहज, स्वाभाविक और यथार्थवादी अभिनय के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने थिएटर को जीवन भर प्राथमिकता दी और कई युवा कलाकारों को अभिनय का प्रशिक्षण भी दिया। भारतीय रंगमंच और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। वे केवल अभिनेता नहीं हैं, बल्कि सफल लेखक, निर्देशक और नाटककार भी रहे हैं। उन्होंने अंक थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसमें कई नए कलाकारों को मंच दिया। वे हिंदी रंगमंच के सबसे समर्पित कलाकारों में से एक रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का ये गीत, जिसमें उनके अभिनय का एक अलग रूप देखने को मिलता है।

श्रोताओं, दिनेश ठाकुर ने अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। फिल्म घर की कहानी और पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि बताती है कि वे केवल अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि संवेदनशील लेखक भी थे। जब भी भारतीय समानांतर सिनेमा और हिंदी रंगमंच का इतिहास लिखा जाएगा, दिनेश ठाकुर का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। उन्होंने कभी लोकप्रियता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका लक्ष्य था अच्छी कला, सशक्त अभिनय और समाज को विचार देने वाला रंगमंच। उनकी अभिनय शैली में बनावट नहीं थी बल्कि सहजता थी। उनके संवादों में कृत्रिमता नहीं थी बल्कि जीवन की सच्चाई दिखाई देती थी। यही कारण है कि उनके द्वारा निभाए गए छोटे से छोटे पात्र भी दर्शकों के मन में स्थायी स्थान

श्रोताओं, किसी कलाकार का मूल्य केवल उसकी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके द्वारा समाज और संस्कृति को दिए गए योगदान से भी आंका जाता है। दिनेश ठाकुर ऐसे ही कलाकार थे जिनका जीवन कला के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने अभिनय से कभी अनावश्यक दिखावे का सहारा नहीं लिया। उनके चेहरे के भाव, संवादों की सहजता और पात्र के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव दर्शकों को प्रभावित करता रहा। यही कारण है कि उनकी भूमि

गीतिकाएं आज भी याद की जाती हैं। उन्होंने रंगमंच को केवल अभिनय का मंच नहीं बल्कि सीखने, सोचने और समाज से संवाद करने का माध्यम माना। उनके द्वारा स्थापित अंक थिएटर ग्रुप में अनेक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासतों में से एक है।

श्रोताओं, दिनेश ठाकुर का निधन 20 सितंबर 2012 को 65 वर्ष की आयु में अंधेरी मुंबई में हुआ। फनकार कभी दुनिया से सचमुच जुदा नहीं होता, उनका हुनर हर दिल में हमेशा जिंदा रहता है। जो अपनी कला से रोशनी बांट जाते हैं, वो समय की धूल में कभी नहीं खोते। आज का ये कार्यक्रम केवल उन्हें याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जिसे दिनेश कुमार जैसे कलाकारों ने अपने परिश्रम, सृजन और समर्पण से समृद्ध किया। हम सब उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी कला से प्रेरणा लेते हुए समाज में संवेदनशीलता, सृजनशीलता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेते हैं और आज के कार्यक्रम को इस गीत के साथ छोड़े जाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के अभिनेता थे दिनेश ठाकुर। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सायं के 5 बजने को अब आप समाचार सुने।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
3: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही पलों में यानी 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसके ठीक बाद संध्या 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वत्यांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जोशीमठ ब्लॉक के पुलना और ढाक गांव के स्थल रिकॉर्डिंग, प्रस्तुति होगी विनय ध्यानी की।

7:30 कार्यक्रम किसान वाणी में आज आप सुनेंगे डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल से मत्स्य पालकों और किसानों की फोन इन बातचीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो किसान।

क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम योजना संवाद का समय रहेगा साय 7:50 पर। रात्रि 8:15 पर सुनिए का कार्यक्रम आपका पत्र मिला। कल सुबह 6:10 पर प्रसारित किया जाएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे श्री राम।

पुष्पा रावत के स्वर में गाए गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे शैल संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, और लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 10:35 पर सुनिएगा अनीता सिंघल के स्वर में गाए बुंदेलखंडी लोकगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। दोपहर 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंडल। कार्यक्रम में कल होगी डॉक्टर वैशाली शर्मा से भेंट वार्ता, नन्हे कदम सशक्त भारत, राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भूमिका। शास्त्र संगीत कार्यक्रम में 4:02 पर सुनिएगा अरुण कुमार मिश्रा का ख्याल गायन। अपने पसंदीदा फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में प्रातः 11:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराह्न 3:02 पर, साय 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को। कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्यज बहुगुणा।
1: और दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी मानस उनियाल। और कार्यक्रम को लेकर के एक बार हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच कुछ नए विषयों और बेहतरीन गीतों के साथ। और साथियों, आज तो हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट भी लेकर के आए हैं।
0: दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस अध्याय की, जिसने केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती नहीं दी बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि जब एक पूरी जनता स्वतंत्रता के लिए उठ खड़ी हो तो सत्ता की सबसे मजबूत दीवारें भी टिक नहीं सकती हैं।
1: साथियों, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की हम आज चर्चा करेंगे, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ दिया था।
0: दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत को ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना युद्ध में शामिल कर दिया था। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन उनके प्रस्ताव तत्काल स्वतंत्रता देने के बजाय युद्ध के बाद संवैधानिक व्यवस्था का वादा किया। बातचीत विफल हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग तेज कर दी।
1: साथियों, 8 अगस्त सन 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया था, करो या मरो। लेकिन इसके अगले ही दिन 9 अगस्त की सुबह गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
0: और यहीं इस आंदोलन की सबसे असाधारण बात सामने आई। नेतृत्व जेल में था, फिर भी आंदोलन रुकने के बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने रूप में फैल गया। कहीं हड़तालें हुई, कहीं जुलूस निकले, तो कहीं रेल और संचार व्यवस्था को बाधित किया गया।
1: साथियों, आंदोलन का एक बहुत ही कम चर्चित पहलू यह भी है कि बड़े बड़े लीडर्स जब जेल में थे तो उनके अनुयायियों ने हार नहीं मानी और रेडियो संचालन करके अंग्रेजी हुकूमत की सेंसरशिप के बीच कई सारी खबरें पूरी देश तक पहुंचाई और सन 1942 में सूचना को पूरे राष्ट्र तक पहुंचाया और एक हथियार बनाया।
0: दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने वैकल्पिक प्रशासन की कोशिश भी की। बंगाल के मिदनापुर में और महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकारें बनी। इससे संदेश गया कि स्वतंत्रता केवल विदेशी सत्ता को हटाने का नाम नहीं बल्कि

0: जनता को अपने शासन में सक्षम बनाने की प्रक्रिया भी है।
1: तो साथ ही दुनिया ने इस आंदोलन से क्या क्या सीखा? पहला कि किसी भी शासन को आप झकझोर कर सकते हैं, कोई भी जबरदस्ती किसी भी राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता। दूसरा, यदि आपने नेतृत्व को गिरफ्तार कर भी लिया तो उनके जितने भी अनुयायी हैं वे जेल के बाहर रह कर के भी उनका पूरा का पूरा आंदोलन एक साथ मिल करके चला सकते हैं, यानी कि एकता में साथियों बल होता है।
0: दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसने ब्रिटिश शासन के सामने ये बात निर्णायक रूप से रख दी कि भारत में औपनिवेशिक शासन की स्वीकार्यता लगातार समाप्त हो रही थी। 1942 का आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्वतंत्रता को केवल नेताओं की मांग नहीं रहने दिया, बल्कि उसे करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा के रूप में स्थापित कर दिया।
1: यही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी साथियों। स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जनता के आत्मविश्वास, सहभागिता और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का नाम है। साथियों, इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं हम फिल्म जब तक है जान से सिंगर श्वेता राव, शिल्पा राव और राघव माथुर जी की आवाज़ में बेहतरीन सा गीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सोशल मीडिया तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही सोशल मीडिया आपको नौकरी भी दिला सकता है क्या?
4: और इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में। हमारा विषय है सोशल मीडिया नेटवर्क से नौकरी कैसे मिलती है।
3: मानस, जब हम सोशल मीडिया का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है?
4: मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम रील्स, पोस्ट्स, वीडियोस और दोस्तों की फोटोज, शायद मीम्स भी।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दोस्तों, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए?
4: बिल्कुल भी नहीं। आज सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जरिया बन चुका है। आप प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और आप नौकरी भी पा सकते हैं।
3: और दोस्तों, खासकर युवाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है।
4: सही कहा आपने। आपको भी यह सीखना पड़ेगा साथियों कि आप सोशल मीडिया से कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे और आप कैसे उनसे बातचीत बढ़ाएंगे।
3: और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट या फ्रेशर सिर्फ अपना नाम और लुकिंग फॉर जॉब लिखकर प्रोफाइल छोड़ दे तो क्या उसे नौकरी मिल जाएगी?
4: शायद नहीं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनानी पड़ेंगी। आपको एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेशंस भी वहां पर आपको उनकी जानकारियां देनी पड़ेंगी।
3: और दोस्तों, सिर्फ प्रोफाइल बनाकर छोड़ना नहीं है, अपने फील्ड से जुड़े डेवलपर्स, रिक्रूटर्स, एचआर प्रोफेशनल्स और दूसरे लोगों से कनेक्ट भी करना है।
4: बिल्कुल। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नौकरी मांगना नहीं होता साथियों, बल्कि लोगों से जुड़ना भी होता है।
3: और दोस्तों, जैसे अगर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व की है तो उसे शेयर कीजिए।
4: यानी कि लोगों को भी दिखना चाहिए कि आप किस विषय में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये साथियों वैल्यू क्रिएट करता है आपके लिए।
3: और दोस्तों, अब सवाल है कि क्या सिर्फ लिंक्डइन ही नौकरी पाने में मदद कर सकता है?
4: बिल्कुल भी नहीं। आप कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी आपको करियर बनाने में काफी हद तक मदद कर सकता है।
3: दोस्तों, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर अपने डिजाइन्स, फोटोग्राफ्स, अपना पोर्टफोलियो और प्रोग्रामर अपने कोडिंग प्रोजेक्ट्स या ट्यूटोरियल शेयर कर सकता है यूट्यूब के जरिए।
4: और कंटेंट क्रिएटर अपनी कम्युनिकेशनल्स और प्रेजेंटेशनल स्किल्स दिखा सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया आपका डिजिटल पोर्टफोलियो बन सकता है।
3: और दोस्तों, इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और वो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप।
4: साथियों, कई बार हम जॉब पोर्टल्स के जरिए नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से भी व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, अपने सीनियर्स, अपने कलीग से जुड़ सकते हैं और उनसे रेफरल्स वगैरह मांग सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: इसलिए दोस्तों, अपने कॉलेज सीनियर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल से संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। आज का कोई सीनियर कल किसी कंपनी में हो सकता है और आपको किसी जॉब ओपनिंग के बारे में भी बता सकता है।
4: चलिए साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक स्टूडेंट है जिसने एग्जामिनेशंस क्लियर करी है, लेकिन उसके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है
3: और वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक करता है, अपने प्रोजेक्ट्स गिफ्ट हब पर रखता है और उनके बारे में लिंक्डइन पर पोस्ट करता है।
4: साथ ही वह अपने फील्ड के डेवलपर्स और रिक्रूटर से कनेक्ट भी करता है।
3: और दोस्तों, जब किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो उसके नेटवर्क का कोई व्यक्ति उसे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकता है
4: और फिर कोई रिक्रूटर उसकी प्रोफाइल देख करके उसे कांटेक्ट कर सकता है। साथियों,
3: यानी कि दोस्तों, सोशल मीडिया ने सीधे उसे नौकरी नहीं दी, लेकिन उसे उस अपॉर्चुनिटी तक जरूर पहुंचाया।
4: बिल्कुल, और यही तो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग की ताकत।
3: लेकिन सोशल मीडिया का एक दूसरा पहलू भी है, हर जॉब पोस्ट जेन्युइन नहीं होती। दोस्तों
4: सही कहा, और कई बार आपको गारंटीड जॉब भी

0: आपको जो लोग सपने दिखाते हैं, आपको उससे सावधान रहना चाहिए।
1: और दोस्तों, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और रिक्रूटर का प्रोफाइल जरूर चेक कीजिए और जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िए।
0: और बिना वेरिफिकेशन या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप किसी के साथ भी आप शेयर मत कीजिए।
1: तो दोस्तों, क्या हमें सोशल मीडिया पर बिल्कुल पर्सनल कंटेंट नहीं डालना चाहिए? सवाल ये भी है।
0: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य है करियर बनाना, तो आप अपनी प्रोफाइल को काफी प्रोफेशनल आइडेंटिटी दीजिए।
1: यानी कि मानस रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखकर समझ सके कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और किस फील्ड में काम करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत से 5 बातें याद रखते हैं।
0: पहली बात कि अपना आप प्रोफेशनल प्रोफाइल अवश्य बनाएं।
1: दूसरी बात, अपने फील्ड के लोगों से नेटवर्क बनाइए।
0: तीसरी कि अपने स्किल्स और प्रोजेक्ट को शोकेस कीजिए, जिसे कहते हैं बिल्ड इन पब्लिक।
1: चौथी, सिर्फ नौकरी मांगने के बजाय वैल्यू भी क्रिएट कीजिए दोस्तों।
0: और पांचवी, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को वेरीफाई किए बिना आप अपनी इन्फॉर्मेशन मत भेजिए।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोशल मीडिया खोलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कौन सी नई रील आई है।
0: आप ये सोचिए कि क्या मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, मेरी प्रोफाइल, मेरे करियर को एक नई दिशा और दशा दे सकता है,
1: क्योंकि दोस्तों, आज आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी डिजिटल पहचान बन सकता है।
0: और आपका नेटवर्क आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे भी खोल सकता है।
1: तो दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और अपने भविष्य के लिए भी। और दोस्तों, इसी कड़ी में बढ़ते हैं गीत की तरफ, जो कि लिया गया है फिल्म जीनियस से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: नई जान आ जाती है, हरियाली चारों तरफ फैल जाती है। और उत्तराखंड के खासतौर पर बात करें तो हरेले का महोत्सव मनाया जाता है, जगह जगह पर फूल जो है वो खिलना शुरू हो जाते हैं। बारिश अपने साथ कुछ अच्छा भी लाती है तो कुछ परेशानी भी साथ में लाती है, जैसे कि ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, कभी कभी हमें कॉलेजेस पहुँचने में लेट भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये मौसम बहुत प्लेजेंट है और बहुत अच्छा मौसम है।
1: बिल्कुल। तो सोनाली, जैसा कि अभी आपने बात ही की, कुछ परेशानियां भी लाता है, तो जैसा कि हम जानती हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी एक काफी डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो सोनाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है डिजास्टर या आपदा के वक्त युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?
0: युवाओं की अगर आप बात करें तो, जैसे कि पहले आपदा की बात करें, तो डिजास्टर के टाइम क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां सामने आती है, एक बड़ा क्षेत्र जो है उससे प्रभावित होता है, बहुत नुकसान होता है जान माल का। ऐसे समय में सभी को वैसे तो मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप युवाओं पे फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है दूसरी एज कैटेगरीज के मुकाबले। मुझे लगता है कि जो आज का युवा है वो डिसीजंस, जो निर्णय है वो भी बहुत तेज़ी से लेता है, और रिस्क लेने की जो क्षमता है, जो जोखिम उठाने का की क्षमता है, वो उसमें दूसरे लोगों से, दूसरी एज कैटेगरी से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसीलिए वो हर जगह पे बहुत जल्दी भी पहुँच सकते हैं और बहुत अच्छे से भी मदद कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उस स्थिति को समझते हुए, जायज़ा लेते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। और इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि डिजिटली बहुत साउंड है। तो इससे क्या होता है कि आपदा के समय लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से टूट जाता है। तो पहले तो आपदा जब आने वाली होती है उसमें भी जागरूकता फैलाने के लिए युवा बहुत काम आ सकते हैं, और जैसे कि अगर आपदा आ ही गई है तो उस समय भी युवा बहुत ही इम्पोर्टेंटली इस काम को ये कर सकते हैं कि वो लोगों से जो एक दूसरे का कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को अपने सोशल मीडिया पावर के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, इंटरनेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों तक जागरूकता फैलाने के साथ साथ सूचनाएँ पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। और NDRF और SDRF की अगर हम बात करें तो उसमें एज ए वॉलंटियर वो जुड़ कर भी इन सारी स्थिति को समझते हुए उसमें बहुत मदद कर सकते हैं लोगों की। तो युवाओं का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं पर इस तरह का डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है तो।
1: बिल्कुल सोनाली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो अभी हम यहाँ कॉलेज में घूम ही रहे थे और हमारी मुलाकात होगी हमारे एक और साथी से। जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम है प्रकाश चंद्र सनवाल और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इकोनॉमिक्स में।
1: प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्कार।
2: जी नमस्कार सर।
1: तो प्रकाश जी, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल ही रहा है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है बरसात का मौसम?
2: बरसात तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अगर बात जब पर्वतीय क्षेत्र की आती है तो फिर ये बहुत खराब मौसम भी हो सकता है, क्योंकि जैसे पर्वतों में भूस्खलन हो गया, सड़कों का टूटना हो गया, और जैसे आम जनजीवन को बहुत हानि होती है।
1: बिल्कुल। तो जैसे अभी तक आपने आपदा की बात ही कर रहे हैं आप, और हम जानते हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड काफी डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो प्रकाश जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस आपदा में युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?
2: देखिए, आपदा के समय पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जहाँ पे आपदा आ रही है वहाँ पे सामान की सप्लाई करना। अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है, भूस्खलन जैसी कंडीशन हो जाती है या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी कहीं पे होती है, तो वहाँ पे हमें सामान पहुँचाना, उन तक खाना, इस सब में युवाओं की एक बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है, जहाँ पे युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं और प्रॉपर टाइम पर उन लोगों को राहत सामग्री पहुँचा सकते हैं। जैसे आज का युवा पढ़ाई में भी बहुत आगे है, ठीक है, और अलग अलग फील्ड से आता है, कोई NCC वाला है, कोई NSS वाला है, और कई सारे लोग मेडिकल फील्ड से भी हैं। तो आपदा के टाइम पे जो मेडिकल सप्लाई है, या फिर गांव के लोगों को प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना, जगह जगह पर कैंप लगाना, ये सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी यहाँ कैंपस में हमारी मुलाकात हो चुकी है हमारे एक और दोस्त से, जिनका नाम है
3: मानस त्रिपाठी।
1: मानस जी, बहुत बहुत नमस्कार।
3: नमस्कार
1: मानस जी, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इस कॉलेज से?
3: जी, मैं इस वक्त MSc मैथमेटिक्स का छात्र हूँ।
1: मानस जी, तो जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल ही रहा है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगता है बरसात का मौसम?
3: जी, बरसात के मौसम से बढ़िया कोई मौसम नहीं हो सकता, बरसात का मौसम बहुत सुंदर होता है।
1: तो मानस जी, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल ही रहा है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड काफी डिजास्टर प्रोन एरिया में आता है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस आपदा या डिजास्टर के वक्त युवा इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं?
3: जी, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड लगभग 95% भाग उच्च हिमालयी क्षेत्र या मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है। ये एक बहुत ही युवा पर्वत है जो निरंतर रूप से अपना आकार और शेप बदल रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें आपदा और लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक प्रोन भी है ये, तो इस टाइप के डिजास्टर आते रहते हैं। तो इसमें युवा क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, युवा सबसे पहले सूचना लोगों तक पहुंचा सकता है। हमें अगर आपदा आई है तो पहाड़ी क्षेत्रों में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में समय लगता है।
1: बिल्कुल।
3: बरसात हो रही है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तो इसलिए युवा सूचना पहुंचा सकता है कि ऊपर से पानी आ रहा है, तो आप रास्ता खाली कर दीजिए। और युवा डिजास्टर के बाद, डिजास्टर आ गया है तो उसके बाद

0: जो मिटिगेशन या बचाव कार्य है उसके लिए युवा एक बहुत बड़ी कड़ी है जो
1: बिल्कुल
0: उससे बचाव कार्य में निभा सकता है। डिजास्टर के बारे में लोगों को जानकारी देना कि कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, और कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद फर्स्ट एड उपलब्ध कराना, कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसे कैसे निकालना, और विभागों तक, पुलिस तक या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तक ये सूचना पहुंचाना कि यहाँ डिजास्टर हो गया है और मदद के लिए बताना।
2: चलिए माना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सर।
2: तो यहाँ कैंपस में अभी हमारे मुलाकात हो चुकी है हमारे एक और साथी से, जिनका नाम है जी, आपका नाम?
3: मेघा शर्मा।
2: मेघा जी, बहुत बहुत नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: मेघा जी, कौन सा कोर्स कर रही हैं आप इस कॉलेज से?
3: मैं सर बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ।
2: तो मेघा जी, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बरसात का मौसम आपको कैसा लगता है?
3: सर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है बरसात का मौसम।
2: तो जैसा कि हमारा राज्य उत्तराखंड एक काफी डिजास्टर प्रोन एरिया है, क्यों?
3: हाँ हाँ सर, आप सही कह रहे हैं।
2: तो आपको क्या लगता है कि आपदा या डिजास्टर के वक्त युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?
3: सर मुझे लगता है कि आपदा के समय युवा अपनी ऊर्जा और अपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करके, अपनी समझ से वो सही उपयोग करके बहुत सारी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे वो कर सकते हैं राहत और बचाव का कार्य भी कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, और जरूरतमंदों तक भोजन या कुछ आवश्यक जो सामग्री होती है वो पहुँचा सकते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही यस अवेयर कर सकते हैं लोगों को।
2: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद सर।
2: तो अभी हम यहाँ कैंपस में घूम ही रहे थे और अभी हमारी मुलाकात होगी हमारे एक और साथी से, जी आपका नाम?
4: मेरा नाम गौरव उपाध्याय है।
2: गौरव जी, बहुत बहुत नमस्कार।
4: धन्यवाद।
2: तो गौरव जी, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य काफी एक डिजास्टर प्रोन एरिया है, क्यों?
4: जी बिल्कुल। एक तो ये देखना होगा कि जो हमारी ज्योग्राफिकल स्टैंडिंग है या जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से बहुत आपदाएं यहाँ पर आती जाती रहती हैं। हिमालयी राज्य है हमारा, तो आपदाओं का आना एक तरीके से कहा जा सकता है कि राज्य के लिए एक बहुत सामान्य एक तरह का है।
2: तो गौरव जी, जैसा कि हमको पता है कि डिजास्टर आ ही रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस डिजास्टर या आपदा के वक्त युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?
4: देखिए, सबसे पहले तो वो एज अ वॉलंटियर युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो सकता है। इसके अलावा युवाओं जो डिजास्टर के बाद राहत का कार्य होता है, उस समय वो वॉलंटियर्स के रूप में मात्र उनको देखना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें उनको ट्रेंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में भी देखना होगा। सबसे बात करते हैं कि हम जो डिजास्टर के समय में प्रिपेयर्डनेस यानी उससे पहले आने की जो तैयारी की बात करते हैं, उसका उसमें यह है कि अगर आपदा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो, आपदा आने के बाद जो मतलब हानिकारक परिणाम हो सकते हैं उनको थोड़ा सा उनको कम किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है डिजास्टर को। तो आप युवाओं की एक बहुत अच्छी भूमिका है इसमें, आप वो मतलब जागरूक कर सकते हैं। उनकी भूमिका केवल सबको बचाने की नहीं, बल्कि सबसे पहले उनकी यह है कि किसे पहले सहायता की आवश्यकता है ये आइडेंटिफाई करने की भी है। तो वो अर्ली वार्निंग और लास्ट माइल वार्निंग में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: जी धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, आज डीएवी कॉलेज के हमारे युवा साथियों के साथ हमारी बहुत ही शानदार बातचीत रही, जहां हमें हमारे युवा साथियों से खुद ये जानने को मिला कि हमारे युवा साथी आपदा में क्या भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है तो आप अपनी हेल्थ का भी खासा ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारा आज का ये खास सेगमेंट कैंपस से काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब मैं विनायक तिवारी मिलूंगा आपको कैंपस से के एक और नए विषय के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत नमस्कार।
5: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विनायक तिवारी द्वारा कैंपस से प्रोग्राम, और अब आपको सुनाते हैं फिल्म एयरलिफ्ट से अरिजीत सिंह की आवाज में बेहतरीन सा गीत।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन युवाओं के बारे में जिन्होंने अपने काम से साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ किसी पद पर बैठने का नाम नहीं है।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि लीडर बनने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ा पद हो। कई बार आपका काम, आपकी सोच और आपकी सफलता ही लोगों को दिशा देने लगती है।
0: और आज हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे देखकर लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलती है।
1: तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी उपलब्धि से जिसने भारत के स्पेस सेक्टर में एक नई उम्मीद पैदा की है।
0: बात हो रही है हैदराबाद की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी एरोस्पेस की। स्काईरूट की शुरुआत पूर्व इसरो इंजीनियर्स पवन कुमार चंदना और नागा भारत धाका जी ने करी थी। साल 1922 में स्काईरूट ने विक्रम एस को लॉन्च करने की बात करी और प्राइवेट रॉकेट इंडस्ट्री में अपना एक नया अध्याय शुरू किया।
1: और दोस्तों, अब जुलाई 2026 में स्काई रूट ने विक्रम 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: सोचिए दिव्य जी, आज प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कठिन क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
1: और दोस्तों यही लीडरशिप की खूबसूरती है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ खुद को आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ऐसा रास्ता बनाना भी है जिस पर आगे चलकर दूसरे लोग भी चल सकें।
0: और स्काईरूट के उदाहरण से आज युवा क्या सीख सकता है?
1: सबसे पहली बात, बड़ी समस्या को देखकर डरना नहीं चाहिए। अगर कोई क्षेत्र बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें युवाओं की जगह नहीं है।
0: बल्कि कई बार सबसे कठिन क्षेत्र में काम करना ही सबसे बड़ा बदलाव लेकर के आता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों यही बात हमें स्पोर्ट्स में भी दिखाई देती है। अगर हम भारतीय एथलेटिक्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है नीरज चोपड़ा का।
0: नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया। एक ऐसा खेल जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं इस खेल के बारे में।
1: दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक इंस्पिरेशन बन गए।
0: और उनकी लीडरशिप किसी पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन से नहीं आती साथियों, उनकी लीडरशिप उनके प्रदर्शन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से आती है।
1: दोस्तों जब कोई युवा अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है तो उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या अपने आप भी बढ़ने लगती है।
0: और यही कारण है कि किसी भी छोटे शहर का कोई भी बच्चा जैवलिन उठाकर भारत में यदि अपना नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहता है तो नीरज चोपड़ा जी उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं।
1: और दोस्तों ये एक पूरी जनरेशन को दिशा देने वाली सफलता है।
0: अब स्पोर्ट्स में एक और नाम हम लेते हैं, दुमराजू दुकेश जी का।
1: दोस्तों सिर्फ 18 साल की उम्र में गुकेश ने 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा और वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने।
0: और यहाँ भी लीडरशिप हमें एक अलग रूप में देखने को मिलती है। चेस एक फिजिकल स्पोर्ट नहीं है, एक मेंटल स्पोर्ट है जिसमें पेशेंस, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है।
1: और दोस्तों यही क्वालिटीज एक लीडर के अंदर भी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, एक अच्छा लीडर वही है जो कि सभी लोगों को एक रास्ता दिखाए और हर परिस्थिति में ढल जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिए।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। हमारा पिन कोड है 2480001।
1: आप हमें ईमेल या मैसेज के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। दोस्तों हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
0: तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहेंगे।
1: दोस्तों इसी के साथ मैं दिविज और मेरे साथ मानस सुनियाल को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है पर्वतांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

सुनदर हो, स्वागत छे आप सभी को पर्वतीय आंचलों को कार्यक्रम अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत में मी छो दीपक नेगी। मेरे तरफा बटेन आप सभी सुनदरों ते सेवा सौंदी नमस्कार सीमान्या और पहलाग। उम्मीद करदा आप सभी लोग राजी खुशी होला। तो सुनदरो, मैनू लग्यू चो सोना को और चौर तरफी बरख की झुलमुली झुलमुली बरखा रगी च और डांडी काठियों में कुएड़ लौकी च हरिया भरिया होया चन डांडी कांठी। तो सुनदरो, सोना को मैं ना आप दगड़ी केवल बरखा ही नहीं लियंदू बल्कि लेके आंदू आस्था और शिव भक्ति को अद्भुत संगम। आजकल देश भर बटिन हजारों श्रद्धालु शिवमय वे की हरिद्वार और गंगा तट पर एकी गंगा जल लेकी कहीं मिलूं पैदल यात्रा करी अपड़ा कंधों पर कावड़ लेकी हर हर भोले का जयकारों का दगड़ी अपड़ा परिवार और समाज की सुख समृद्धि का खातिर यही कामना का दगड़ी शिवधाम की ओर जाना चन। लेकिन ये बगत पर मौसम भी अपड़ो अलग रंग दिखाणो, कखी तेज बरखा त कखी चटकताली का घाम त कखी भारी बरखा का कारण भूस्खलन रोड ब्लॉक जन तमाम समस्याएं भी आना चन। इनमें हम सभियों ते और कावड़ यात्रियों ते सावधानी बेहद जरूरी हुए जांदी। सुन दरो, आस्था का दगड़ी सतर्कता भी बहुत जरूरी च। इनमें सभियों ते सावधानी बरतण का बहुत जरूरी च। नदी नालों गाड़ गदड़ों का आसपास जान से बचा किले की हमारा पहाड़ों में अक्सर इन दिखे जांदू कि माला छोड़ तो भारी बरखा होनी तो और निशा घाम रहेंदू। तो इनमें नदी नालों गाड़ गदड़ों को पानी कब अचानक बढ़ जांदू पता ही नहीं चल दो। और पहाड़ी बाटों में यात्रा करते वक्त मौसम और सड़क की स्थिति पर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अनुसार अपनी यात्रा करा, जल्दबाजी तो कतई ना करा। सुन दरो, कावड़ कंधों पर रखी केवल एक पवित्र यात्रा नहीं बल्कि यू हमते स्वयं अनुशासन सेवा और धैर्य को संदेश भी देंदू। रास्तों में श्रद्धालुओं की सेवा ते लगाया शिविर भंडारा सहायता केंद्र हमारी सामाजिक एकजुटता की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत कर दें। और बरखा का जब धरती पर बूंद पड़ना तो इन लगणों जन प्रकृति भी शिव आराधना में शामिल हुए गए। पहाड़ों की हरियाली लौकेदी कुएड़ी मंदिरों में घंडेलियों की आवाज़ सोना का मैनते और भी मनमोहक बने देंदी। तो सुन दरो, हम सभी भी आस्था और प्रकृति को समान करी अपना आसपास नदियों ते स्वच्छ बने के रखला, प्लास्टिक को उपयोग जथ का कम हुए सकलो उत्या करा। और यात्रा का दौरान अपड़ों को ख्याल रखण का दगड़ा दगड़ी दूसरों की सुरक्षा को भी ध्यान जरूर रखा। हर हर महादेव। और हाँ, पेड़ डाली बोटी लगाउन जरूर लगाया। प्रकृति का प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करी स्वच्छ व सुंदर प्रकृति धरोहर ते अपनी आने वाली पीढ़ी की भविष्य ते खुशहाल जीवन देना का खातिर डाली जरूर लगावा। तैयारी आज की तो सफलता आपका आने वाला जीवन की। तो सुन दरो, सभी कावड़ यात्रियों ते इन विभुन चौला की कावड़ यात्रा श्रद्धा आस्था और समर्पण का प्रतीक च। आपकी यात्रा तब ही मंगलमय होली जब आप आस्था का दगड़ दगड़ी सभ्य व शासन प्रशासन को जिन नियम बनया चन उनका अनुसार चली की अपनी यात्रा पूरी करला। यात्रा का दौरान दया बहुत जरूरी चे। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा बड़ो ना बनावा वो की समाप्त कर दियावा। दयालुता ही एक आस्था को भी एक अंग च। तो सुनता रहो, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहा भारत छोड़ो आंदोलन पर और दगड़ा माँ गीत संगीत रंत रेबार और आपते सुनोला स्टूडियो बिटिन भैर जोशीमठ ब्लॉक का गांव पुलोना गोविंद घाट और ढाक की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शन बिने ध्यानी। तो सुन दरो, आपते सुनंदा गढ़वाली भजन सौरव मठाणी को गयों यू भजन तल्यावा सुना।

0: पता है 2026-27 से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान SNES स्पर्श प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को किया जाना है।
1: अच्छा,
0: अब पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनकी सही सही जानकारी समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
1: तो उसके लिए क्या करना होगा?
0: बताता हूँ, बस आपकी आधार संख्या विभागीय पेंशन पोर्टल पर सही सही दर्ज हो, बैंक खाते में आधार लिंक के साथ ही DBT की सुविधा भी चालू हो, जिसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मानक छूटा हो तो तुरंत अपने क्षेत्र के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 6395221188 पर कॉल करें या हमें ईमेल आईडी swditsale@gmail.com पर लिखें। समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: सुन दो रहा अभी आपन सुनिन रैबार, और रैबार से पहली आपन सुनी गढ़वाली देवी भजन सौरभ मैठाणी का स्वरमा। तो सुन दो रहो, आज हम बात कला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक आंदोलन की, जोन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दे छे, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन का खिलाफ निर्णायक संघर्ष को आह्वान करी। गांधी जी देशवासियों को बोली कि करो या मरो। यहाँ का बाद 9 अगस्त 1942 बिटिन देश भर में आंदोलन तेज हुएगिन, हजारों भारतीयों ने विरोध करी। युवाओं और महिलाओं, किसानों और विद्यार्थियों ने भी स्वतंत्रता का ये लड़े में बड़ी चढ़ी भाग लेनी। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों का खिलाफ आवाज नहीं छो, बल्कि यू भारत की आज़ादी का वास्ता एकजुटता भारतीय जनशक्ति को प्रतीक बन गए। कई स्वतंत्रता सेनानियों ते गिरफ्तार करे गए, लेकिन आज़ादी की लॉ बुझनी। आंदोलन ने यू स्पष्ट कर दे कि अब भारत की जनता विदेशी शासन ते स्वीकार करना को तैयार नहीं छे। सुन दरो, भारत छोड़ो आंदोलन हम यू याद दिलोंदु कि एकता, साहस और देश का प्रति समर्पण से बड़ा बड़ा परिवर्तन संभव छन। आवा आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ते नमन करदन जो अपना देश का भविष्य का वास्ता समर्पित हुए गेन। तो सुन दरो, अब आपते सुनंदा स्टूडियो बिटिन भैर जोशीमठ ब्लॉक का गांव पुलुना, गोविंद घाट और ढाक की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करता छन बिने ध्यानी। तो लियावा सुना।

0: श्रोताओ, अपन पहाड़ का कोई भी क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हुआ, ब्लॉक मुख्यालय हुआ या कखी हो, आज के ये अंक में हम आपता है सुदूरवर्ती चमोली जनपद को सीमावर्ती गांव पुलना, जो कि गोविंद घाट बिटी के फूलों की घाटी का खातिर जो मार्ग जान उखमा चाहिए, यानी भिंडार घाटी को एक इन गांव जो कि आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से परेशान छ, सड़क नीच, बिजली का हाल कोहाल छन, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तौर पर उपलब्ध नहीं छन, शिक्षा का हाल भी तन्नी छन, खेती बाड़ी कुछ होनी नीच, किले कि आए दिन यख प्राकृतिक आपदा की मार्च आवा, यख का ही कुछ रहवासियों से जनदा उनकी खेरी।
1: जो हमारे यख पांडुकेश्वर च गोविंद घाट च वही का नजीक के गांव च पुलना, ये पुलना गांव जख गोविंद घाट बटक हम चला 4 किलोमीटर कच्चू रास्ता छ, रास्ता देखे कि लग गया कि यूं लोगों का समय में बहुत सारी दिक्कत हुई। सबसे पहले एक मन की से हम बात करना, आप अपना क्या छ?
2: मेरे नाम रघुवीर चौहान जी।
1: चौहान जी, आप पहले पुलना के बारे में बताओ कि कितना आबादी वो गाँव छो?
2: यो कम से कम 100 परिवार एक रहो ना, लेकिन बहुत सारे लोग एक स्कूल नहीं होने वजह से और बड़ी स्कूल दूर होने वजह से जोशीमठ और देहरादून निकले। और
1: अच्छा, आप ही बताएं ना कि पुलना में खास करके आप लोग क्या काम धंधा क्या करते हैं आप?
2: हमारे तो मेन तो यू टूरिज्म पर डिपेंड करना, यात्री पर डिपेंड।

0: करना बस 8 महीना बैठ के खाना और 4 महीना हम कमाना बस जो भी हमसे हुआ।
1: समस्या सड़क की दिखनी चाहिए, पहले तो एक सड़क भी नहीं छा और अब ये जो सड़क चाहिए का हाल भी ठीक नहीं चन, ये बाबत क्या बोलना चाहिए ये क्षेत्र का लोग?
0: सड़क के बारे में तो बहुत ही ज्यादा सोची सरकार, जो नीति बनवानी नए नए विभागों को सुधियोनी काम देनी, लेकिन फिर काम दे के पैसे दे के और तय पर सुनी कन देख रेख नहीं करनी, बिल्कुल कने के बनी सड़क हमको मालूम ची खाल माटा और यो रास्ता उबे आया आप सो रास्ता टूटन नहीं थे जब डंपिंग जोन ढंग से बनाई रन से और जब कोरी कोरी के कोरो ची तो तदी भी टॉफर है देना ची पहाड़ों रास्ता ची तो तेल यो बार टूटन नहीं टूटन। हम तनको कई बार समझे सिद्धम की जनता है कि भाई हम आप काम बंद करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आगे वो शिकायत कर देंगे। हम तो
1: अच्छा भिंडार और पुलना को क्या रिश्ता चक्के लगे? भिंडार में तो ये कोई भी नहीं ची ना,
0: भिंडार की जी एक जमीन जायदाद बहुत कम ची साहब और जो लोग पहले आया था एक बस तो इमें लगी कि जमीन कम ची तो और अगे जान शुरू के दो तो पुलना में 8 महीना रहना और 2-3 महीना वास्ता भिंडार चल जाना या समर में और तो भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी वन थे तो तब फिर तो भी लौट के वापस उनते हैं।
1: अच्छा भिंडार का लोग पर्यटन से जुड़े हैं करना चाहिए गाइड को काम जन के पहल जाना चाहे फूलों की घाटी हेमकुंड साहब और खास कर फूलों की घाटी तो ये का जवान दगड़े रोजगार से जुड़े हैं पर्यटन का?
0: हाँ जरूर साहब, ये का लोग मैक्सिमम लोग तो होटल वगैरह और घोड़ा खच्चर और ये में करना दुकानदारी करना और खुद में फूलों की घाटी जानते हमेशा अभी भी जानू कबर कबर क्योंकि अब उम्र ज्यादा होगी बहुत कम जानो।
1: धन्यवाद चौहान जी।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, ये बात हम पुलना में छुआ गौत खारियों बड़ो दिखेणु हमते और जिनकी चौहान जी बना चाहे कि हाँ एक सड़क की समस्या छ यख का हौर लोग से सुन जा कि हौर यख लोक जीवन यख क्या छ। नमस्कार, आप अपनों क्या?
2: मेरा नाम दीपक चौहान।
1: दीपक जी आप ही बताएं कि यख जो हम खेती बाड़ी की बात कर ला क्या क्या कर देना आप लोग?
2: वैसे अब खेती बाड़ी तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब ये को मतलब 2013 में जब आप दया थे तय बात तो सब खेती बाड़ी सब बोगी थे, अब तो ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जोगड़ा वाल तो मैं थोड़ा आलू साग सब्जी बस तय कला कोई नहीं बने।
1: अच्छा, आजीविका का खातिर हम सिर्फ आलू पर ही छुआ ये वे अलावा रोजगार क्या चाहिए?
2: रोजगार तो सीजन चाहिए हमारा 4 महीनों सीजन ची तो 4 महीनों सीजन को तो तई पर रोजगार बताई में जो भी कमाई दमाई हुई तो बस 8 महीने तय
1: सीमांत क्षेत्र चु सीमांत गाँव चु तो आप भी बताएं कि जन खास जरूरत आम जरूरत और जो जीवन यापन का जरूरी होते बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य यूँ क्या स्थिति
2: तो छी भी हॉस्पिटल 4 महीने माते रहन घंगरे में और बाकी तो एक हॉस्पिटल मतलब तनी हल्का फुल्का दवाई दुई एक फार्मेसिस्ट रहनी का या डॉक्टर भी रहन कभी कभी उन्हें हफ्ता में 1-2 दिन राउंड मारते रहना स्कूल तो नहीं स्कूल बंद हुई
1: तो बच्चा कक्ष दिन पढ़ना
2: बच्चा सब अब बेर गया
1: तो एक बड़ी समस्या नहीं है जो गरीब गुरु बच्चे ना जो जा नहीं सकना ही ना होना उनका बच्चा फिर कक पढ़ा ला
2: अब कह वो यही मतलब कह 5 पास के 8 पास के छोड़ दे जाए बात जाए पढ़ने से नहीं छोड़ दे ली और बाकी जय मन ठीक ठाक जिससे लोग बेर पढ़ना बच्चा और बाकी सब अपने वहीं पर
1: सरकार अगर सुननी चाहिए तो देखा कि एक पर्यटक गांव का तौर पर भी जे गांव पुलना था हम विकसित कर सकता है क्योंकि हेमकुंड साहेब और फूलों की घाटी का खातिर बीच में चाहिए गांव तो ये गांव तथा हम तो पर्यटक गांव बनाना चाहिए वक स्कूल नीच बच्चा स्कूल खुजाना छन शिक्षक का वास्ता परेशान छन। चला कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, आप अपनों क्या
3: चाहिए? मेरा नाम बलदेव सिंह चौहान।
1: बलदेव जी आप ही बताएं कि एक माजू माता मैणी छन कि लगी ये बात हम तक कोई नहीं दिखना सब काम धाड़ी में होला लेकिन आप बताएं कि महिलाओं का खातिर जो आंगनबाड़ी च ANM दीद च सुविधा छ चिकित्सा
3: आंगनबाड़ी तो छो आंगनबाड़ी एक छो गाँव में छो आंगनबाड़ी लगाए रहने आंगनबाड़ी बालवाड़ी सब चीज व्यवस्थाएं छो।
1: अच्छा, ये गाँव में ज्यादातर लोग खेती किसानी काश्तकारी कर दें या नौकरी में छन
3: सब बिजनेस बाकी खेती तो कुछ होने सब 13 में जो फ्लड सब होगी मैं खेती सब 4 महीने जो सीजन चाहूँ सब डिपेंड मतलब
1: ये गाड़ को बगनी
3: ये लक्ष्मण गंगा।
1: अच्छा, ये माँ भी जो आपदा आया था
3: यही में थे पूर्व
1: तो यखा का लोग बोलना चाहे कि साहब हम सब जो घुण बोले आल केल कुछ नहीं करना है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हुई या पंचायत का प्रतिनिधि हुई वो भी ठसगुर लगना छन और ये गांव की जो मूल जरूरत छन उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। कुल मिला एक ही बात यूँ लोगों के समझ में आया कि हाँ साहब और कुछ दियो ना दियो हम ते सड़क दे दिया किला कि यही सड़क से यख ये यात्रा की सड़क से जखमा हेमकुंड साहेब और फूलों की घाटी का वास्ता पर्यटक आंदा और जांदा छन और पर्यटक का आणो और जोण से ही यूं लोगों को व्यवसाय छ यूं लोगों की जीविका छ। तो अगर सरकार

0: कर तक ये गांव का यूं वाशिंदों की बाच पहुंचने च तो कृपा करी की ये गांव का छोड़ जरूर देखा कि ये था एक उपेक्षित गांव न बना के बल्कि ये था एक पर्यटक गांव बनाओ। पुलना गोविंद घाट ब्लॉक जोशी मठ बटके में विनय ध्यानी आकाशवाणी ग्राम जगत का खातिर।
1: अजय ठहरा स्टूडियो से बाहर आज आप नारदगढ़ चुने जनपद चमोली का जोशी मठ ब्लॉक जैसे कि अब ज्योतिर्मठ का नौ सिंह जड़े जा चला जोशीमठ से 12 किलोमीटर अग्नि हिटता और वक्त कुछ लुखों से उनका लोक जीवन का बाबत छी पत लगंदा।
0: नमस्कार आप अग्नो क्या छे
2: सप्तम यर पहले प्रणाम और आप लोग हमारे गांव में आया देखकर वास्ता आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद। मेरे नोच मोहन बजवाल और हमारा गाँव जनपद चमोली का विकास खंड जोशीमठ से 12 किलोमीटर आगने चु और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 150 मीटर तो हो चु।
0: आबादी कतना चु कतना परिवार चु
2: आबादी तो यो साहब लगभग 1000 से ऊपर चु और 300 कुछ परिवार चु।
0: यखा को लोक जीवन क्या चु यखा का लोक कर्द क्या चु खेती पाती क्या चु?
2: जी यखा का लोग जो छो ज्यादातर कृषि कार्य करना और मजदूरी के अपन भरण पोषण कौन लग्या छो और यख शिक्षक स्तर पहले छे नीचे लगभग 2000 के बाद ही अब शिक्षक स्टार्ट हो तब जे करके हमारा पहली बालिका छे जेन्द्र जी की बालिका छे जनूल फर्स्ट जो छो 2010 में इंटर कैन छे पहली बालिका छे
0: वे बात खैरी छे शिक्षा की आज कैसे स्थिति
2: आज उन्नति होने लगी छे धीरे धीरे करके जब लोग चिल्लाना छे ते के बावजूद थोड़ा सरकार जरा सुननी छे हल्का सा तब जा करके इतना हो रहा।
0: अच्छा बनवाल जी एक बात बताओ दी जी आप जब प्रधान बनी तो आपक प्राथमिकता क्या छे कि गांव ढाका खातिर मेन यू करुण करुण छे?
2: जी मैं जब 2003 में प्रधान बनी छे तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का तख कहे छे मैं तख मैं आमरण अनशन पर भी बैठ चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ लोग दूर जान छे आईटीआई कौन पॉलिटेक्निकल कौन तो तब मिल जे करके जिलाधिकारी तो आमरण अनशन में बैठ गई तब तन से अनुबंध हो चाहिए तब तन हमारे गांव में 2005 में आईटीआई खुल छे 2014 में पॉलिटेक्निकल खुल।
0: क्या बात युवा है अचीवमेंट बोल देना अंग्रेजी में ये तो है यहाँ मतलब ये हो चुकी दोबारा बन गए ना प्रधान है ना 2003 के बाद भी करी अपन तो दोबारा भरोसा ये गांव का लोगों को आसपास का क्षेत्र का लोगों को बाकी ये गांव का आसपास छोटा छोटा राजस्व गांव भी होला उन परिचय भी दिया कोको गांव छ
2: हमारा गांव में 3 रेवेन्यू विलेज चमतोली कुंडी खोला ढाक।
0: तो यूं सभी लोगों को समय में आज अगर हम आपसे पूछला कि सबसे बड़ी समस्या क्या छे जय का बान सब लोग काम कर रहा
2: सबसे बड़ी समस्या तो यक शिक्षा की क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र में यज्ञ छ जो हमारे प्राइमरी स्कूल छ तो अभी मास्टर लोग नहीं छ। अच्छा। और जो छ सिक्वे काम करनी जब 26 जनवरी हुए छे परसिपन हाल हाल ही में ही तो तनुल यो राष्ट्रीय झंडा तक नहीं फेरे दिन
0: ओहो चिंता की बात
2: जी जी जी है। और फिर जो जूनियर हाई स्कूल छ तो कभी समझता नहीं छ थोड़ा जरा पार छ तब वन राज की इंटर कॉलेज में ही वहाँ पर स्टाफ तो है पर प्रधानाचार्य तो भी नहीं है। अब जो घरों को गार्जियन नहीं रोलू तो परिवार कने चल सकोल और मैन जो गणित विज्ञान टीचर वो चाहिए नहीं। अब पॉलिटेक्निकल भी खोलनी चु हमारे यो आईटीआई भी खोलनी चु तो यो केवल मात्र 3 सब्जेक्ट च और तेम भी पूरी स्टाफ नहीं।
0: मूलभूत जरूरत हूँ आदमी की कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य तो होने चाहिए। स्वास्थ्य की क्या हालत
2: स्वास्थ्य की हाल साफ देने बिल्कुल बेकार च जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र च और जो 2021 में जो आपदा आये छ और जो जोशीमठ में सारे लोग मतलब एक बार काफी पत्राचार भी हुए अखबारों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में आप लोग देखे टीवी में सब जगह की जोशीमठ का जना हाल हुए तो ते हाल होने से जो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सो टूट फूट हुए और तो जगह भी नहीं ताकि ते को ऊपर से भवन बन सको के कर क्योंकि सर निर्माण कार्य पर सरकार है की जोशीमठ में रोक नहीं च अब तो बने के रेफर सेंटर जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर सेंटर च कोई उचित व्यवस्था नहीं दवाई भी नहीं डॉक्टर भी नहीं और ये पूरे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान तो तब जे के मेन छो 29/1/2026 जो छो हमारी बीडीसी बैठक हुए तो जिला का सारे अधिकारी लोग आए थे तो मेन सबसे बड़ी प्रस्ताव ये उधर ही कि हमारा गाँव में ये जमीन सामने पर देखो मैं आप अभी तो हम जमीन पर्याप्त छ मेन ये सोचे कि इस क्षेत्र वास्ते छो एक हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 50 बेड को खुल जाए ताकि ये पूरे क्षेत्र में जो 37 गांव पंचायत हो ना उन 37 गांव पंचायतों को जो कुछ स्वास्थ्य में लाभ मिलो पहले नंबर तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य से सब कुछ स्वास्थ्य नहीं तो कुछ ही नहीं तो स्वास्थ्य वास्ते ही जो दरे मांग मिल।
0: प्रधान जी क्या सोचे हूं? क्या संभावना है क्या क्या हो सके ये गाँव में?
2: ये संभावना तो ये छ कि पहले तो ये सीमांत ब्लॉक जो सीमांत जनपद और चीन का सीमा से लगी हूँ गाँव चु और ये में जो

0: वो मुख्य कारण यू छ कि यो रोजगार नहीं, मेन चीज रोजगार पे। अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो छ ये विशेष क्षेत्र वास्ते विशेष दर्ज दिए दियो, जो कि 2014 में छ स्टेट गवर्नमेंटल ये बिल ओबीसी घोषित कहें चाहिए, तो 14% तो स्टेट गवर्नमेंटल दिल, 14% आरक्षण तो दिल, और 13% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे दियो तो जो पोस्टें खुले ली, अगर 1000 पोस्टें खुले तो 227 लोग यो खग लागल जोशीमठ विकास खंड, तो यो मामला अभी लटक्यू छू। तो सबसे पहली हम ये पर कोशिश करूँ कि केंद्र सरकार बेटी ये स्वीकृत करूँ ना करूँ। ठीक,
1: एक बहुत बड़ी मांग सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि ये क्षेत्र था विशेष आरक्षण दिए जा, जनके की यख का लोगों तक रोजगार मिल सक, यख को विकास हो सक। ये का अलावा और क्या संभावनाएं ढूंढ देने प्रधान जी आप?
0: और संभावना ये है कि सर मैं तो यू फतवन चाहू अपने पब्लिक को कि अगर हमारा जोशीमठ विकास खंड में बद्रीनाथ केदारनाथ और ये भवोष्य बद्री क्वारी पास ओलिनी वन छी, तो हम लोगों यो पूछना जा चाहू कोई नहीं वन छे, तो बद्री विशाल खेत पर से जो पर्यटक लोग हो ना, तो हमारा पास बड़ा बड़ा सोचो वो क्या हो चु, जैसे ओली चु या वो विंटर गेम होते हैं, और साथ में यू क्वारी पास डाली सेरा चु और टिमर सेने चु, तो पर्यटक वास्तव जो यो संसाधन चु जब ने होम स्टे छ या रेस्टोरेंट छ और ये जो पैदल ट्रैक चु ते मतलब उतन मैक्सम जोड़ी जो और उन लोगों को प्रशिक्षण दी जो जो हमारे ये खबर रोजगार छ।
1: खेती में अगर कुछ नए अनुसंधान करे जा, कुछ नए केंद्र खोले जाए?
0: जी हाँ, तो मेल साहब ये बारे में परसों बीडीसी में बिधारी छी और डीएम साहब से भी सीडीओ साहब से मेरे बात हुई कि भाई ग्वालदम से लेकर के नीतिमाना तक 400 किलोमीटर ऊन जानो गाड़ी को सफर, तो अगर कृषि विज्ञान केंद्र एक बीच में कखी नहीं, तो मेरी अपनो ढाको नौ दौरी प्रस्ताव बीडीसी बैठक में पारित कल प्रधान संघ बैठक में भी, अब सारा क्षेत्र का प्रधान 58 प्रधान लोग मोर मार के भी दिल से संस्तुति प्रदान के।
1: खास करे कि अगर पिछल दाग प्रधान इबरी दाग प्रधान का चौक में बैठे के हमारे दगड़ छुई लगा, तो यहाँ से साफ हो जान कि हाँ सभी एक मंशा च गद्दी में कोई विवाह लेकिन विकास होना चाहिए। पूर्व प्रधान ये बात हमारे दगड़ छ। नमस्कार, आप अपनो क्या छ?
2: मैं मुस्लिम देवी जी।
1: जी आप कब बेटे कब तक रहे प्रधान?
2: 8/12।
1: अच्छा 2008 बेटे है ना, क्या क्या कार हुए बताओ अपन कार्यकाल में?
2: यहाँ तो तवार क्या वन चाहिए गारंटी रोजगार विधायक निधि सांसद निधि और पंचायत निधि।
1: गांव का लोग तो ठीक से एक मोटे एकजुट हुए यहाँ छा है ना, पर जो हमारा जनप्रतिनिधि छ ना उनका क्या हाल छन, वो देखदा छन सुनदा छन या के खैरी विपदा विकास का खातिर?
2: हमारे तो प्रधान जी बहुत बढ़िया चीज
1: जैसे ऐंच वाला जो बड़ा वाला छन
2: विधायक जी बड़ा है तलब गो मनी और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो क्या ये सकन हमारा द्वार, बस यही स्थिति जी हम जो अपन समस्या बोली अपन प्रधान जी में बोन,
1: लेकिन
2: प्रधान जी तो हमारे गाँव वाल भी मैं बोली कभी कभी कोई कार्य हो जान तो तब ये जान विधायक जी बुलाये तो बस।
1: प्रधानमंत्री बना छ सीमावर्ती क्षेत्र का जो भी गाँव छ तक खास सुविधा मिलन चाहन, किले कि वो बिल्कुल हमारे सीमा पर तैनात छ और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण छ, कभी कुछ लाग चाहिए इनकी या फिर कुछ होना चाहिए या आखिर गाँव तक पकड़ना छ?
2: पता नहीं सर, यू तो हम कुछ पता नहीं, कागज मर लियो अखंड से और खाली मौखिक बोन से कुछ नहीं हुआ, धरातल पर काम होना चाहिए तभी हम लोग भी पता चला कि कुछ यो होने चाहिए और हम लोग लास्ट सीमा पार चाहिए।
1: अच्छा एक बात और आपसे पूछना चाहूँ और महिलाओं का तरफ बटे पूछना चाहूँ, माता बहनों का समय माँ सबसे बड़ी समस्या क्या चाहिए ये गाँव में?
2: माता बहन समस्या क्या चाहिए, अब हम जंगा जुंगा जाना दूर दरार जाना और गाय बाछे सेंताने की परेशानी छी, बाकी वे लड़का लोग बेरोजगार छी जंगा में जान तो भालू सुअर डोर छी और बच्चे लोग बेरोजगार छे, तो हम तो जाने पन ना जंगा जान पन खेती करण पन गोरू बछड़ा सभी चीज सेंतन पन।
1: पानी ठीक छे गोमा?
2: पानी भी छे छे ना पानी भी दार मंगर एनटीपीसी सुकायली।
3: धन्यवाद श्रीमती मुसली देवी जी। इच्छा पूर्व प्रधान ग्राम ढाक ज्योतिर्मठ चमोली बेटे और वे से पहले आपन सुन वर्तमान प्रधान जी का, यू एक संयोगी छे कि जब हमारा पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान एकजुट एकमुट हुए कि गांव का विकास का खातिर काम करना छन, तो यह एक भली पहल छ और खास करे कि जो हमारा जन प्रतिनिधि छन वो अगर एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया कि गांव का सर्वांगीण विकास का खातिर एकजुट राला, तो पक्के बात छ

0: समस्याओं की कमी हुली और विकास ने एक नई दिशा मिले। ग्राम ढाक, ज्योतिर्मठ, चमोली बटी की विनय ध्यानी।
1: सुन दो, अभी अपन सुनी जोशीमठ ब्लॉक का गांव पुलना गोविंद घाट और ढाक की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुत करता छा विनय ध्यानी। तो सुन दो, अब आपते लेके चलता कुमाऊं का छोड़ और सुनदा एक कुमाऊं ने गीत जगत सिंह धपोला का स्वरमा तल्यावा सुना।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनदरो, अभी अपन सुनिन रैबार, और रैबार से पहली अपन सुनी कुमाऊनी गीत जगत सिंह धपोला का स्वरमा। सुनदरो, आजकल चौमास मा पानी अपड़ा आसपास जमा नहीं होने दिया, किले की साफ पानी मा मच्छर वे जनन, खास करी डेंगू मच्छर जैसे बीमारियों को खतरा बढ़ जान दो, और अपड़ा आसपास साफ सफाई झाड़ पात काटी साफ जरूर रखें। सप्ताह में एक बार कीटनाशक दवे भी छिड़की देन चेणो, जैसे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सको। तो सुनदरो, अब आपते ले जानन जौनपुर, अब आपते सुनदन जौनपुरी गीत अंकित कुमार का स्वरमा, तल्यावा सुना।

0: सुन दरो अभी आपन सुनी गढ़वाली जौनपुरी गीत अंकित कुमार का स्वरमा। तो सुन दरो आप बगत हुएगी उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को। तो लियावा जिटेक मसुणा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं से कैसा हो अपना उत्तराखंड विषय पर सुझाव और विचार साझा करने का आह्वान किया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस

0: विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। हमारा आज का प्रश्न है, पेशावर कांड के समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस सैन्य इकाई में थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, पेशावर कांड के समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस सैन्य इकाई में थे? श्रोता अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037888643 या ईमेल आईडी rnudehradun@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1921। सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले विजेता हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के निखिल कुमार जुनेठा। आकाशवाणी समाचार देहरादून की ओर से आपको हार्दिक बधाई।
1: मेरा नाम विक्की कुमार जुनेठा है, मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। मेरे को आकाशवाणी सुनना अच्छा लगता है, मैं काफी समय से आकाशवाणी सुन रहा हूँ और भविष्य में भी सुनता रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं से कैसा हो अपना उत्तराखंड विषय पर सुझाव और विचार साझा करने का आह्वान किया। आगामी 10 अगस्त को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभिनव पहल के तहत राज्य के 2,800 से अधिक विद्यालयों के 3,00,000 से ज्यादा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। सरकार का दावा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थियों से भविष्य के राज्य के विकास को लेकर इस स्तर पर सीधे सुझाव लेने की यह पहली पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन सुझावों को प्रदेश के विकास की योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करेगी। विद्यार्थी अपने विद्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टियां अपलोड कर सकेंगे। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। सफलतापूर्वक प्रविष्टि जमा करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। गत 28 जुलाई को नंदा की चौकी के पास टौंस नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड धंस गई थी। इस मामले में शासन ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने, पर्यवेक्षण में शिथिलता बरतने के चलते प्रांतीय खंड देहरादून के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष को डिजाइन कंसल्टेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। कांवड़ मेले का अंतिम चरण पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती से भरा हुआ है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवजीत सिंह भुल्लर ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि भारी संख्या में आ रहे डाक कांवड़ियों को देखकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।
4: बड़ी संख्या में डाक कांवड़ उनकी आमद हुई है हरिद्वार में, और इसमें जो ट्रक्स हैं उनको बैरागी पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है और लाइट व्हीकल्स और टू व्हीलर्स को कोर एरिया की जो ट्रेडिशनल पार्किंग है हमारी वहाँ पार्क कराया जा रहा है। अब इसमें व्यवस्था में बदलाव ये किया गया है कि जो पैदल कांवड़ के टाइम पे ड्यूटी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे, जिनका रेलिवेंस

0: नहीं रहा है या कम हो गया है, उनको ड्यूटी पॉइंट्स को तोड़कर हाईवे पे ड्यूटी शिफ्ट की जा रही है। और आज 11 बजे एक जो है नया ड्यूटी चार्ट निकाला गया है, और प्रयास यही है कि मोटरसाइकिल्स को हम रेगुलेट कर सकें, जो कि अगर गलत डायरेक्शन में जाते हैं जिसके दुर्घटना की संभावना भी रहती है और ट्रैफिक जैम भी होता है, पूरी तरह गियर अप है और कंटिजेंसी प्लान हमारे कई तरीके के बने हुए हैं। अगर कहीं ट्रैफिक जाम होता है तो पीछे से किस तरीके से जो कांवड़ निकल रहा है उसको निकालते हैं। हाईवे बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, हाईवे बिल्कुल चालू रहेगा और हाईवे ही मेन हमारा एग्जिट मार्ग है। हाँ ये है कि कुछ समय के लिए हाईवे के चारों लेन जो है हम एग्जिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अपरिहार्य परिस्थितियों में होगा और वो 10 की शाम को हम कुछ समय के लिए करेंगे जब हमारी एंट्री लगभग बंद हो जाती।
1: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जनसभा में चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। साथ ही दावा किया कि देवभूमि से शुरू हुआ कांग्रेस का विजय शंखनाद प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने तक जारी रहेगा। रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने आज विकास भवन अल्मोड़ा के सभागार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले में आपदा से संबंधित तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों एवं समन्वयात्मक व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
2: आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हम लोग 3 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हम सारे जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हैं। इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वर्ष भर चलता है। दूसरा प्रोग्राम होता है हम मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल के आधार पर हम सारे जिलों में एज्यूम करके कि किस प्रकार की आपदा आ सकती है और कैसे हमें तत्काल उसको करना है, ये प्रोग्राम भी हमारा आपदा से पहले हम लगभग हर जिले को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा होता है कि हम एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें उस जिले में जाकर उस जिले के सारे विभागों को बुलाते हैं, हमारे एक्सपर्ट आते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है सारे जिलों में चल रहा है।
1: श्री कौशिक ने कहा कि संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभागों की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं। चमोली जिले के गोपेश्वर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। पर्यावरण मित्रों, नगर पालिका कर्मचारियों, वार्ड पार्षदों और पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य बाजार से पोस्ट ऑफिस तक सफाई की गई। इस दौरान नगरवासियों ने स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील भी की गई। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वच्छ नगर न केवल देखने में सुंदर लगता है बल्कि स्वच्छ वातावरण से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं से कैसा हो अपना उत्तराखंड विषय पर सुझाव और विचार साझा करने का आह्वान किया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा, संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम स्वतंत्र बंधानी, जिला उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। मैं जो खेती करती हूँ जिसमें सारे मिलेट से हमारे बीमा करना इसलिए जरूरी है, जो किसान बीमा करते हैं, हम लोगों ने खुद बीमा किया। पिछले साल हमने 40,000 प्रीमियम जमा करा और उसका हमें 4 गुना मिला।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनदरो, स्वागत है आपको पर्वतीयांचलों को कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसरी पाली माँ मिछो दीपक नेगी। तो सुनदरो, अब आप ते ले चलदा जौनसार का छोड़ और सुनदा जौनसारी गीत रतियानंद का स्वरमा। तो ल्यावा सुना ये जौनसारी गीत।

सुन्दर हो अभी आपन सुनी जोन सारी गीत रतियानंद को गयू ये गीत। उम्मीद करदा कार्यक्रम आपते भलो लगी होलो। कार्यक्रम का बारे में आप हमते अपना रंत रे बार भी भेज सकदन हमारो पतच चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर। और यहाँ का दगड़ ही ग्राम जगत कार्यक्रम भी इखिमा बिसोंदा सीमानिया।

0: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने 9 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों से 146 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि डीबीटी का माध्यम से हस्तांतरित करी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बोली, सरकार सामाजिक न्याय समावेश

0: विकास और समाज का सभ्य वर्गों का कल्याण का बाबत प्रतिबद्ध च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली थे संबोधित करी और मौसम विभाग ने अगला 48 घंटों का दौरान बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और चंपावत जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 9 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों थे जुलाई 2026 की पेंशन राशि डीबीटी का माध्यम से हस्तांतरित करी। लाभार्थियों का खाता में 146 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि भेजेगी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार समाज का प्रत्येक वर्ग का कल्याण करने प्रतिबद्ध छ। उन बोली की पेंशन राशि समयबद्ध और पारदर्शी तरीकों से सीधा लाभार्थियों का खाता में भेजेणी छ। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि लाभार्थियों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का करीब 2,15,000 पेंशनर भी शामिल छन। यूं थे पेंशनर थे SNA स्पर्श प्रणाली का माध्यम से भुगतान करेणु छो। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बोली कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और समाज का सभ्य वर्गों का कल्याण का बाबत प्रतिबद्ध छ। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उन बोली कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय SC OBC दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण को लगातार काम करनी छ। उन बताए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का तहत देश भर में 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाता खुलेगे न, जहाँ उत्तराखंड का 40 लाख खाता शामिल छन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत देश भर में 58 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि उत्तराखंड में 36 लाख लाभार्थियों ते ऋण उपलब्ध करेगी। श्री अठावले ने उत्तराखंड में संचालित विकास कार्यों की सराहना करी। मुख्यमंत्री थे अपन भलो दगड़िया बते और उनका नेतृत्व मां राज्य मां होना विकास कार्यों की प्रशंसा करी। कांवड़ यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच गए। यात्रा का अंतिम दिनों में हरिद्वार में शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़नी छ। देशक जग जग बटेक श्रद्धालु गंगा जल लेना को धर्मनगरी पहुंचना छन। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन का दगड़ छोड़ बटी व्यापक इंतजाम करेगी न। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। हरियाणा बटी आया शिव भक्त राजेश ने बताया कि बैरागी कैंप में डाक कांवड़ का वाहनों को करीब 5 से 6 हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करी छ। पार्किंग में प्रकाश, पीणा पानी, खाणु और शौचालय की सुविधाएं भी छ। उन बेहतर व्यवस्थाओं का बाबत मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करें।
1: राम जी सभी का, मैं असंध करनाल से हरियाणा से हूँ। मेरा नाम राजेश है और यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 5-6 हजार गाड़ियां हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है सभी की, पार्किंग की और खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया है। जो प्रशासन है यहाँ पे व्यवस्था करके हम उससे संतुष्ट है। उत्तराखण्ड सरकार की हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हल्द्वानी का रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली थे संबोधित करी। ये दौरान श्री खड़गे ने देश और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखी। उन भाजपा पर उत्तराखंड का हितों की अनदेखीकरण और देवभूमि थे नुकसान पहुंचाने का आरोप लगे। उन बोली कि भाजपा थे सत्ता बट्टी हटाना को सभ्यों थे एकजुट हूं वाल। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अग्निवीर योजना थे लेकी भाजपा पर निशाना साधी। उन आरोप लगे कि अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य पर असर पड़े।
3: अग्निवीर 4 साल काम करो घर को जाओ, अब पहला बटालियन वापिस आ रहा है ट्रेनिंग लेके। कौन भाई, पहले तो जितने आर्मी में वैकेंसी होते थे उस वैकेंसी को भर्ती करते थे। तुम लोग कह रहे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके लोग तो आर्मी में जाते नहीं, जान देते नहीं। ये तो जान लेने वाले लोग है, जान देने वाले नहीं है। या आजादी के लिए हो, देश के लिए हो, ये लड़ने वाले नोक नहीं। ये अग्निवीर करके लगाकर हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद किए।
0: कांग्रेस ने दावा करी कि रैली में उमड़ी भीड़ उत्तराखंड में बदलाव का संदेश देनी। रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सेल

0: प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड़ियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज अल्मोड़ा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करी। ये अवसर पर श्री कौशिक ने बोली कि सरकार आपदा से निपटना को तीन चरणों में कार्यक्रम संचालित करनी च। पहला चरण में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिए गए, जबकि दूसरा चरण में सभ्य जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करेगी। तीसरा चरण में जिला स्तरीय अधिकारियों का दगड़ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगी।
1: प्रबंधन की दृष्टि से हम लोग तीन तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हम सारे जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हैं। इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वर्ष भर चलता है। आपदा की दृष्टि से हम क्या काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम होता है हम मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल के आधार पर हम सारे जिलों में एज्यूम करके कि किस प्रकार की आपदा आ सकती है और कैसे हमें तत्काल उसको करना है। ये प्रोग्राम भी हमारा आपदा से पहले हम लगभग हर जिले को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा होता है कि हम एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें उस जिले में जाकर उस जिले के सारे विभागों को बुलाते हैं। आज आकर मैंने अल्मोड़ा जिले की पूरी स्थिति को समझा, सबको बताया हमें क्या करना है और इस सारे काम को हम कर रहे हैं।
0: श्री कौशिक ने बोले कि आपदा प्रबंधन सभ्यों की सामूहिक जिम्मेदारी च और यामा अधिकारी प्रतिनिधि और आम नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका च। उन बते कि आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटना को नियमित प्रशिक्षण और मार्ग ड्रिल आयोजित किए जाने च। अल्मोड़ा निवासी युवा नवाचारी रवि टमटन सिंगल सीटर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग व्हीकल हैपिडा स्काई नेक्स की सफल ट्रायल उड़ान भरी की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी। सीमित संसाधनों में तैयार करियूं यू फ्लाइंग व्हीकल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पावर से संचालित। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल का माध्यम से रवि टमटा का दगड़ उनकी उपलब्धि की सराहना करी। उन यूथ प्रदेश का युवाओं को प्रेरणादायक बते की बोली कि यह नवाचार विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र में नए संभावनाओं थे जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने रवि टमटा थे उनका नवाचार थे अग्नि बराना को हर संभव सहयोग का आश्वासन दे। मौसम विभाग ने आगामी 14 अगस्त तक राज्य का ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई च। अगला 48 घंटों का दौरान बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली नैनीताल और चंपावत जिलों में कभी कभी भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी करेगी। वखी 11 और 12 अगस्त तक राज्य का विभिन्न जिलों को येलो अलर्ट घोषित करेगी। पिछले 24 घंटों का दौरान राज्य में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज करेगी। मौसम विभाग की चेतावनी थे देखे कि सरकार ने लोगों से संवेदनशील जगहों पर जान से बचण और गाढ़ गदेरों से दूर रहना को बोली। दगड़ ही लोगों से मौसम की स्थिति थे देखे कर सावधानी बरतना की अपील करे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 9 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों से 146 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि डीबीटी का माध्यम से हस्तांतरित करी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बोली सरकार सामाजिक न्याय समावेशी विकास और समाज का सभ्य वर्गों का कल्याण का बाबत प्रतिबद्ध च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली से संबोधित करी। और मौसम विभाग ने अगला 48 घंटों का दौरान बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली नैनीताल और चंपावत जिलों में बरखा का ऑरेंज अलर्ट जारी करूँ छ। यहाँ दगढ़ ही गढ़वल में प्रादेशिक समाचारों का यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। नमस्कार किसान साथियों, आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम किसान वाणी में मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इस समय बारिश का मौसम पूरे जोरों पर है। सावन बारिश का मौसम ही नहीं है बल्कि

0: कि मन की गहराइयों को स्पर्श करने वाले भावों का उत्सव भी है। प्रकृति का ये मनोहारी रूप मनुष्य के अंतर मन में भी नई उमंग, उत्साह और संवेदनाओं का संचार करता है। लेकिन आप जानते हैं कि खेती किसानी में बारिश होना ही पर्याप्त नहीं होता, समय समय पर छोटी छोटी बातों की समझ और ध्यान रखना भी बहुत मायने रखता है। श्रोताओं, खेती किसानी में सबसे ज्यादा जरूरत फसलों की देखभाल की है। इसके लिए आप बड़े बुजुर्गों से तो सलाह लेते ही हैं, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे आप और अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले किसान मौसम की जानकारी, मंडी के भाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी तक ले सकते हैं। मोबाइल तकनीक से किसान कम समय में अच्छी जानकारी और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मोबाइल ऐप से आप मोटर पंप चालू और बंद कर सकते हैं, पीएम किसान ऐप से किश्त और ई केवाईसी की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम कृषि योजनाएं आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं। ऐसे में आप अच्छा और अपडेट मोबाइल वाला किसान बनिए।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इसका उत्तर आप जानते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको कार्यक्रम के अंत में दूंगा। हमारा आज का सवाल है, जिंक की कमी से फसलों में कौन सा रोग होता है? श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा कीट का प्रकोप इस समय देखने को मिलता है। ऐसे में बिजाई से पहले तेज धूप में खेत की जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी में छिपे कीटों के अंडे और लार्वा नष्ट हो जाते हैं। हमेशा प्रमाणित और रोग प्रतिरोधी बीजों का चयन करें। हर साल एक ही खेत में एक जैसी फसल उगाने से बचें। यदि फिर भी आपकी फसल में कीट लग गया है तो नीम के तेल या नीम की पत्तियों के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। ये कीटों को दूर रखने में काफी असरदार होता है। खेत में फेरामोन ट्रैप या पीले चिपचिपे ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये उड़ने वाले कीटों को अपनी ओर खींचकर चिपका लेते हैं। खेत का लगातार मुआयना करते रहें ताकि कीटों के हमले की शुरुआत में ही आप पहचान कर सकें। किसान साथियों, खेत में पानी जमा ना होने दें और निकासी की सही व्यवस्था रखें, क्योंकि नमी से फसलों में बीमारियां ज्यादा होती हैं। यदि कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह तुरंत लें। किसान साथियों, अब समय है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये गढ़वाली लोकगीत।

0: किसान साथियों, आज दिन है शनिवार और आज के दिन हम लाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद मधवाल जी। विषय है मत्स्य पालन। डॉक्टर मधवाल जी, फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद पंडित जी।
0: डॉक्टर साहब, उत्तराखंड की जलवायु यहाँ की अलग अलग ऊंचाइयों और पहाड़ों के कारण अलग अलग है। राज्य में उष्ण कटिबंधीय से लेकर बर्फीली ठंड तक का मौसम पाया जाता है। ऐसे में प्रदेश में मत्स्य पालन की कितनी संभावनाएं हैं?
1: देखिए, मत्स्य पालन की तो पंडित जी इसमें कृषकों के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं।
0: जी
1: हमारे जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है, इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरे मैदानी जिले हैं और नैनीताल और देहरादून के कुछ भाग मैदानी इलाके में आते हैं।
0: जी
1: शेष सभी जो जनपद हैं अन्य, वो पर्वतीय जनपदों में आते हैं।
0: जी
1: पर्वतीय जनपदों में ठंडे पानी की मछलियों का पालन किया जाता है, और
0: अच्छा
1: जो मैदानी जनपद हैं इनमें समन्वित और मिक्स कल्चर की मछलियों का पालन किया जाता है।
0: यानी कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में मछली पालन अलग अलग है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, ठंडे पानी की मछलियां हैं जैसे रेनबो ट्राउट और महाशीर के साथ साथ कार प्रजाति की मछलियों का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्या सरकार द्वारा इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है?
1: हाँ, सरकार के

0: चयनित कृषक होते हैं उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन की पूरी तकनीक,
1: जी
0: मछलियों को कैसे खिलाना है, मछलियों का रखरखाव कैसे करना है, तालाब की देखरेख कैसे करनी है, ये सारे प्रशिक्षण के विषय होते हैं। इसके साथ साथ कृषकों को 1 दिन का सेमिनार किया जाता है और उस सेमिनार में कृषकों को पूरी मछली के पालन की जानकारी दी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान साथी हमसे जुड़ रहे हैं, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं इनका क्या सवाल है।
2: हेलो
1: हाँ
2: सन्नाटा
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम
2: जी,
1: बताइए।
2: ओमवीर चौधरी जी
1: ओमवीर चौधरी जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर, जिला हरिद्वार, ब्लॉक लखतर जी,
1: अच्छा
2: और गांव का नाम है मोहम्मदपुर बजरू
1: अच्छा
2: जी।
1: जी, आपका सवाल क्या है भाई साहब?
2: सर, एक तो जैसे हम फार्मिंग है, खेती करते हैं,
1: जी
2: इसके साथ साथ जो है हम कुछ और भी जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे मतलब मछली पालन हो गया,
1: जी
2: और जैसे खेती में ही एक बांस की खेती भी करना चाह रहे हैं
1: जी चौधरी जी, आज हमारे साथ मत्स्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधवाल जी, आप इनसे
2: जी।
1: सीधा सवाल पूछ सकते।
0: तो आपका सवाल ये है कि आप मछली को पालन करना चाहते हैं खेती के साथ साथ,
2: जी
0: तो
2: जी सर,
0: उसके लिए यह है कि हमारे मत्स्य विभाग में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जाती है। आपको एक एप्लीकेशन सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय हरिद्वार को देनी होगी और उसमें ये लिखना होगा कि साहब मैं यहाँ पर अपना तालाब बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं मत्स्य पालन करना चाहता हूँ, कृपया इसका निरीक्षण करके और मुझे सुझाव दें। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे भी आप आते हैं, तो जो सामान्य लोगों को 50% की सब्सिडी मिलती है और महिलाओं को और SC ST को 60% की सब्सिडी दी जाती है। तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद एक इंस्पेक्टर आपकी जमीन को देखेगा और आपको पूरा प्रोजेक्ट आपका बनाएगा और आपको बताएगा कि इसमें आपको कितनी धनराशि की सब्सिडी मिलेगी, कितना आपको जो है अपने आप लगाना पड़ेगा। आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मछली पालन कैसे किया जाना है, साथ ही साथ आपको मछली पालन के साथ बत्तख पालन और सब्जी पालन जहाँ पर पानी होगा, इसके भी समन्वित एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको तकनीक दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप सबसे पहला काम इसमें यही करेंगे, सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय संपर्क करके उनको एप्लीकेशन दे दें और एक मत्स्य कृषक के रूप में अपने को दर्ज करें।
1: ठीक है चौधरी साहब,
2: जी श्रीमान जी, हम एक छोटी सी जानकारी और प्राप्त करना
0: हाँ
2: चाहते
0: बताइए।
2: हैं।
1: जी
2: जैसे जैसे हमने मछली पालन बना दिया, या मतलब खेत की हमारी मेड़ होती है
1: हाँ जी
2: उस पे जो है हम थोड़ा बांस का प्रयोग करना चाह रहे हैं। ये बांस के हमें जो अच्छी प्रजाति के पौधे और कहाँ से हमें पौधे मिलेंगे?
0: अब देखिए, बांस के जो पौधे हैं इसके लिए आपको उद्यान विभाग से संपर्क करना होगा
2: अच्छा सर, जैसे ये योजना जो आपने बताई है,
0: जी।
2: इसमें इसके अंतर्गत जो है हमें जैसे अच्छी प्रजाति का बीज मछली का कहाँ से उपलब्ध होगा?
0: ठीक है, अच्छी प्रजाति का बीज तो जो आपको जहां पर प्रोजेक्ट आपका सैंक्शन करेंगे वही जो हमारी राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र से बीज को लाते हैं। सामान्यतः जो है मैक्सिमम जो बीज सप्लाई होता है हरिद्वार के लिए वो आपको उधम सिंह नगर में काशीपुर में हैचरी है हमारी एक, उसमें जो है रोहू, कतला, नैन, इन सब के जो बीज आपको उपलब्ध होंगे शासकीय दरों पर।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, उसके लिए किसान जाएगा वहां पे
0: नहीं नहीं
1: या?
0: किसान को वहीं पहुंचाया जाएगा, आपको पूरा ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और अब बीज के टाइम पर आपको बीज वहीं पहुंचाया जाएगा,
1: आपके स्थान पर ही
0: आपके
1: या
0: स्थान पर जहां पर आपका प्रोजेक्ट होगा वहीं पर वो बीज को पहुंचाएंगे।
1: आपको जाने की जरूरत
0: ठीक
1: नहीं है
2: है,
1: चौधरी साहब कहीं पे?
0: आपको आप तो वहां संपर्क जब कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी, आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा पूरा मत्स्य पालन का, आपको पहली बार में बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब आप एक बार अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा लेंगे फिर आपको दोबारा से अपने हिसाब से मत्स्य बीज आप उसमें संचित कर सकते हैं।
1: ठीक है चौधरी साहब,
2: जी
1: आपकी शंका का समाधान हुआ।
2: जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे सर बातचीत करके
1: जी,
2: और बहुत संतुष्टि से आपने समझाया हमको।
1: ठीक है चौधरी जी, धन्यवाद आपका फोन करने के
2: ओके
1: लिए।
2: सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल पूछना चाहते हैं हम, जैसे आप हमारे किसान साथियों को बता रहे थे अभी प्रशिक्षण के बारे में बता रहे थे, तो मत्स्य पालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन और सरकार की ओर से इस समय क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो उत्तराखंड सरकार ने जो है इसके लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और
1: जी
0: भारत सरकार की जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाएं
1: जी
0: शुरू
1: जी
0: की हैं,
1: जी जी
0: और इसके तहत

0: क्या होता है कि किसानों को एप्लीकेशन देना पड़ता है मछली पालन के लिए, यदि कोई इच्छुक है तो किसान द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में।
1: जी सर, डॉक्टर साहब, एक जैसे किसान ने तालाब बनाने की अनुमति दे दी, तो उस तालाब के पानी का पीएच और तापमान कितना होना चाहिए?
0: देखिए पीएच तो जो है उसका जो नॉर्मल जो होता है 7 के करीबन 7 और 8 के बीच में पीएच को रहना चाहिए, तो आदर्श तालाब की वो होती है। तो एसिडिक माहौल नहीं होना चाहिए और उसका जो है एल्कलाइन होना चाहिए पीएच।
1: डॉक्टर साहब, हमसे एक और किसान साथी जुड़ गए हैं, जान लेते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो किसान,
2: हेलो सर,
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम दिव्यांश है, मैं
1: कहाँ से दिव्यांश जी?
2: पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ।
1: जी दिव्यांश जी, बताइए आपका सवाल।
2: जी मेरा सवाल यह है कि जैसे पौड़ी एक ठंडा इलाका है जहाँ
1: जी
2: बर्फ भी पड़ती है, तो ऐसे इलाके में मेरे को मछली पालन कैसे करना चाहिए?
1: अच्छा, डॉक्टर मधुहर सर,
0: प्रियांश जी आप कौन सी गांव से बोल रहे हैं जहां आप कह रहे हैं बर्फ गिरती है?
2: जी मैं प्रॉपर पौड़ी बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, प्रॉपर पौड़ी में मैं रहा हूँ। तो पौड़ी में ऐसा है, देखिए जो भी 3,000 मीटर से ऊपर के जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर यदि आपको मछली पालन का व्यवसाय करना हो तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आपको ये बताना होगा कि हमारी जमीन कहाँ पर है और वहां पर पानी का स्रोत क्या है, पर्वतीय स्रोत। और अगर
2: जी
0: आपकी अपनी जमीन है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय पौड़ी में, जो विकास भवन में अवस्थित है। तो वो अपने इंस्पेक्टर को आपके जो स्थान है उसका निरीक्षण करवाएंगे, पानी का वो देंगे, देखेंगे कि पानी का सोर्स क्या है, वहां पर तालाब बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, किस टाइप का तालाब बनाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ठंडे पानी की जो मछलियां हैं, अगर ज्यादा हाइट पे है तो उसमें ट्राउट, और कम हाइट पे है तो उसमें कार्प, मिरर कार्प या महाशेर आप उसमें पालन कर सकते हैं। तो पूरी
2: जी
0: जानकारी आपको सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में मिल जाएगी, उससे पूरे एल्टीट्यूड और उसका पता लग जाएगा कि आपका गांव किस जगह पर है।
1: ठीक है प्रियांश जी, धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। भाई साहब, एक और जानकारी चाह रहे थे, पहाड़ों में हम मछली पालन की बात करते हैं तो वहां ट्राइट फिश फार्मिंग के लिए विशेषज्ञ जोर देते हैं, तो
0: हाँ
1: इस ट्राइट फिश
0: उत्तराखंड
1: फार्मिंग के लिए न्यूनतम पानी कितना होना चाहिए?
0: देखिए इसमें ऐसा है कि कम से कम जो है 1 मीटर तो करीबन होना चाहिए, नहीं
1: तालाब में?
0: तो इसमें रेसवेज बनते हैं। एक्चुअली जो
1: अच्छा
0: ट्राउट मछलियां हैं,
1: जी
0: ये ट्राउट मछलियां ठंडे पानी की मछलियां हैं जो साफ पानी में रहती हैं,
1: जी
0: और इनके लिए ऊपर से एक्स्ट्रा फीड दिया जाता है। ब्राउन, दो प्रजातियां, ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट।
1: अच्छा
0: ब्राउन ट्राउट बहुत वैसी मछली होती है सोफिस्टिकेटेड, और
1: जी
0: जो दूसरी ट्राउट है ये थोड़ा हार्डी फिश है। तो
1: अच्छा
0: इसमें रेसवेज बनाए जाते हैं, रेसवेज बना के लंबे रेसवेज,
1: अच्छा
0: जैसे 25 मीटर लंबा होगा, 1.5 मीटर जो है चौड़ा होगा, तो उसमें करीबन 1.25 मीटर से 1 मीटर तक पानी, जिस
1: अच्छा
0: तरह से पानी का फ्लो है इतना होना चाहिए, तो मछली को दौड़ने के लिए जगह स्पेस मिलती है। तो
1: अच्छा
0: वहां पर क्लस्टर में भी तालाब बनाए गए हैं कई जगह, और ट्राउट में कई समितियां बनाई हुई हैं उत्तराखंड में हायर
1: अच्छा
0: एल्टीट्यूड में, और इसका तो बाहर भी इसका इंपोर्ट यहाँ उत्तराखंड से इस मछली का होता है, कई समितियों के द्वारा इसको किया जाता है। तो अगर
1: अच्छा
0: कोई भी समिति या कोई महिला मंगल दल या कोई भी किसान यदि ट्राउट को पालना चाहता है तो इसके लिए भी उसको वही करना होगा कि संबंधित जिले के सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन देनी होगी,
1: जी जी जी
0: उसके बाद उसकी प्रशासनिक अनुमति मिलेगी
1: जी
0: और उन इंस्पेक्टर चेक करेगा कि पानी कैसा है, कहाँ पर रेसवेज बनेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितनी उनको सब्सिडी नियमानुसार मिलेगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ट्राउट पालन का, सेमिनार
1: अच्छा
0: होगा 1 दिन का, और सेमिनार में भी पूरी जानकारी दी
1: दी
0: जाती है।
1: जाएगी। डॉक्टर साहब, मछलियों में आने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने तालाब बना दिया तो उसमें कौन सी बीमारी घर कर जाती
0: देखिए
1: है?
0: ऐसा है कि जो सामान्यतः है ठंडे पानी की मछलियों में तो बीमारी की संभावनाएं काफी
1: कम
0: कम
1: होती है?
0: होती हैं,
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी मैदानी इलाकों में यदि पानी गंदा है तो इसमें मछलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, लीचेस, फिश
1: जी जी
0: लीचेस,
1: फिश लीचेस।
0: ये उसमें जो मछली के उसमें चिपक जाती हैं, जिससे मछली को जो है नुकसान होता है। तो
1: अच्छा
0: जब बाह्य इन्फेक्शन मछलियों में होता है तो फिर उनके ट्रीटमेंट की भी प्रशिक्षण के दौरान बताया जाता है कि
1: अच्छा
0: कैसे किसानों को इसके ट्रीटमेंट करना है, इनको उसको निकालना है और KMnO4 के घोल में उसको डाला जाता है, तब उसके वो इन्फेक्शन को दूर किया जाता है और पुनः उनको तालाब

0: मछलियों को छोड़ा जाता है
1: अच्छा
0: यदि ऐसी संभावना होती है। लेकिन किसान खुद ही इतना अलर्ट रहता है कि वो पानी को देखता रहता है कि गंदा ना होने पाए और जो है उसमें बीमारी ना लगे।
1: ना लगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल पूछते हैं, मछली को बेचने के लिए हमारे पालक जो है कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं, और क्या उत्तराखंड मत्स्य विभाग भी मछली खरीदता है क्या?
0: अब इसमें देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड मत्स्य विभाग
1: जी
0: तो ऐसा सच मछली नहीं खरीदता है, लेकिन फिर भी
1: जी
0: मत्स्य विभाग के सहयोग से जो शहर हैं
1: जी
0: शहरों में इसके आउटलेट बनाए हुए हैं कि
1: विभाग की ओर
0: मत्स्य
1: से।
0: मत्स्य विभाग ने बनवाए हैं,
1: अच्छा
0: वो
1: मत्स्य
0: इंटरप्रेन्योर ने किए हैं, दूसरे लोगों ने बनाए हैं मत्स्य विभाग के सहयोग से। तो वो मत्स्य विभाग की जो जो किसान हैं कृषक वो सीधे सप्लाई उन आउटलेट में करते हैं और आउटलेट वाले पैसा उनको देते हैं। ये तो है बड़ी समितियों में जहां ज्यादा बल्क में उत्पादन है।
1: अच्छा
0: दूसरा चीज ये है कि
1: जो छोटा
0: जो
1: किसान होता
0: जो
1: है।
0: छोटा किसान होता है उसमें तो ये संभव मछली की इतनी खपत है उत्तराखंड में, सभी लोग मछलियों को खाना पसंद करते
1: पसंद
0: हैं,
1: करते
0: तो
1: हैं
0: उसमें ये होता है कि जैसी मछलियां बढ़नी शुरू होती हैं ऐसे ही कृषक वहां आ जाते हैं लेने वाले कि साहब ये हमारे लिए रखिए इतना, तो
1: हाँ जी
0: उसको
1: जी
0: जो वहीं पर उसका सौदा हो जाता है। और बड़े किसानों के लिए जो सरकार सहयोग करती है जैसे ITPP में ट्राउट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि
1: कॉन्ट्रैक्ट हुआ
0: उनको
1: है
0: जो
1: था
0: है ट्राउट मछली का सप्लाई किया जाएगा, तो
1: जी।
0: और जो आउटलेट बने में उसके लिए भी जो ट्राउट की वो आती हैं, तो मेरे ख्याल इस चेन बनने से जितने भी हमारी समितियां बनेंगी उनको ट्राउट बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लेन में जितने भी छोटे कृषक हैं उनको तो मैक्सिमम उनको तालाब में ही वो मिल जाते हैं खरीदार, अन्यथा वो जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं बाइक और आइस बॉक्स की, वो अपना जाके भी बेच सकते हैं और
1: अच्छा
0: किसी मंडी में भी जैसे हरिद्वार में मंडी है मंडी में जो है अपनी उसको बेच सकते हैं, तो उसकी पूरी वो है बेचने की।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक जाते जाते एक सवाल और पूछ रहते हैं कि इसकी परिवहन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था एक मत्स्य पालक को कैसे करनी चाहिए?
0: इसमें जो परिवहन की व्यवस्था बड़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि
1: जी
0: मछली एक पेरिशेबल गुड है, वो जल्दी खराब
1: खराब हो
0: होने वाली
1: जाती
0: चीज़
1: है
0: है। तो
1: जी।
0: मछलियों को क्या है कि आइस बॉक्सेस में रख के जो आइस बॉक्स मिलते हैं उसमें डाल के तब मछलियों को
1: डॉक्टर साहब आइस बॉक्स क्या मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवा
0: नहीं
1: जाता है?
0: नहीं मत्स्य विभाग आइस बॉक्स जो बेचने के लिए मत्स्य पालकों को आइस बॉक्स की प्रथम उसमें वो देते हैं सब्सिडी देते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन बाद में फिर आइस बॉक्स जो है वो जिस कंपनी से उनको देंगे उस कंपनी की मदद से भी आइस बॉक्स को वो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट करके।
1: अच्छा
0: साथ ही साथ जैसे हम बीज लाते हैं तो बीज को भी हम ऑक्सीजन पैकिंग के साथ देते हैं, तो मत्स्य का बीज और मत्स्य की जो संपदा आगे ट्रांसपोर्ट होती है
1: जी
0: इनको बड़े एहतियात से ही हमको
1: इसमें ज्यादा
0: ले
1: सतर्क
0: जाना
1: रहने की जरूरत
0: सतर्क
1: रहती है
0: रहे, क्योंकि अगर इसमें सतर्क नहीं रहेंगे तो
1: तो
0: वो
1: नुकसान
0: उसमें
1: होगा हमारे
0: नुकसान हो।
1: मत्स्य पालक को। डॉक्टर साहब अंत में आप हमारे किसान साथियों को या मत्स्य पालकों क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये बहुत एक अच्छा व्यवसाय है,
1: जी
0: इसमें जो है बहुत शुद्ध मुनाफा है,
1: जी जी
0: और ऐसे हमारे बड़े बड़े किसान हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया है
1: जी
0: उधम सिंह नगर में, बड़े बड़े कृषक हैं जो मिलीनियर हो गए हैं, तो इसमें आप इंटरेस्ट रखिए
1: और जो
0: और इस
1: योजनाएं
0: और
1: हैं
0: जो
1: जो
0: योजनाएं
1: उनका
0: हैं
1: फायदा
0: उनका
1: उठाइए,
0: फायदा उठाइए।
1: इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है डॉक्टर
0: इसमें
1: साहब?
0: सब्सिडी का है, इसमें जो है आपको 50% तक सब्सिडी जो है सरकार की ओर से सामान्य लोगों को दी जाती है और
1: जी
0: 60% तक जो है सब्सिडी पैसे की वो महिलाओं को और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दी जाती है। तो अगर कोई कृषक इसके लिए इच्छुक है तो सहायक संबंधित जिले के सहायक निदेशक कार्यालय में संपर्क
1: संपर्क कर
0: करके
1: सकते हैं
0: और अपनी एप्लीकेशन देके समस्त सुविधाओं का लाभ उठा
1: लाभ
0: सकते।
1: उठा से। डॉक्टर साहब आप हमारे फोन इन कार्यक्रम में जुड़े और किसान साथियों और मत्स्य पालकों को उनकी समस्याओं का समाधान किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

0: आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: किसान साथियों, तो चलिए जानते हैं आज का मंडी भाव। देहरादून मंडी में आज आलू 1000 रुपए से 1050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका, जबकि प्याज 950 रुपए से 1250 रुपए क्विंटल का भाव रहा। लौकी 1200 रुपए क्विंटल और हरा अदरक का भाव 3500 रुपए क्विंटल रहा। किसान साथियों, मंडी में जाने से पहले अपनी फसल के भाव के बारे में जरूर जानकारी जुटा लें और ध्यान रखें फसल साफ सुथरी ले जाएं, क्योंकि कोई भी आढ़ती या ग्राहक किसी फसल या फल को पहले आंखों से खाता है, उसके बाद जीभ से खाता है। श्रोताओं, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय है। कई जिलों में कल यानी रविवार को भी भारी बारिश की पूरी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई पहाड़ी और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। उमस रहेगी, नदी नालों के आसपास जाने से बचे।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: श्रोताओं, अब समय है आज के सवाल के जवाब का। सवाल था, जिंक की कमी से फसलों में कौन सा रोग होता है? सही जवाब, खेरा रोग। ये रोग इस समय धान की फसल में मुख्य रूप से लगता है। इसकी पहचान कर कृषि विशेषज्ञों से दवा जरूर पता कर लीजिए। अगर आपने भी यही उत्तर सोचा था तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज के इस अंक में किसान वाणी आपको सलाह देता है कि अपनी फसल में खरपतवार ना उगने दें, क्योंकि ये फसल के पोषक तत्वों को खत्म कर देते हैं, जिससे फसल कमजोर पड़ जाती है। इसी उम्मीद के साथ आपकी फसल अच्छी हो, आप समृद्ध बने, आपके खेत खलियानों में अच्छी फसल लहलाए, मैं कुलदीप आपसे अनुमति चाहता हूं। आप अपनी फसलों की नियमित देखभाल करते रहें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमावनी में प्रादेशिक समाचार उगदगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार 9 लाख हबे ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के 146 करोड़ रुपए हबे ज्यादा डबल डीबीटी के माध्यमल हस्तांतरित करी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को सरकार सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सामाजिक सभी वर्गों कल्याणक लिजी प्रतिबद्ध छू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वान में विजय शंखनाद रैली के संबोधित करो। और मौसम विभाग अगिल 48 घंटों के लिजी बागेश्वर, पिथौरगढ़, चमोली, नैनीताल और चंपावत जिलों में

0: समाज कल्याण मंत्री खजान दासल बताया कि लाभार्थियों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम करीब 2,15,000 पेंशनर ले शामिल छी। इन पेंशनरों के एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम भुगतान करी जा रो। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को की केंद्र सरकार सामाजिक न्याय समावेशी विकास और सामाजिक सभी वर्गों कल्याणक लिजी प्रतिबद्ध छू। देहरादून में ही प्रेसवार्ता में उन्होंने को की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एससी ओबीसी दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों कल्याणक लिजी लगातार काम कर रो। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में 58 करोड़ हबे ज्यादा बैंक खात खोली जरी जिन्होंने उत्तराखंडक 40 लाख खात शामिल छन। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश भर में 58 करोड़ हबे ज्यादा ऋण स्वीकृत करी जा रही जबकि उत्तराखंड में 36 लाख लाभार्थियों के ऋण दी जा रो। श्री अठावले उत्तराखंड में संचालित विकास कार्यों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपूर्ण भड़ दगड़ी बता और उनर नेतृत्व में राज्य में हो रही विकास कार्यों की तारीफ करी। कांवड़ यात्रा में अब अंतिम चरण में पूज गए। यात्रा के अंतिम दिनों में हरिद्वार में शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रहे। देशक विभिन्न हिस्सों बटी श्रद्धालु लगातार गंगा जल लेणक लिजी धर्मनगरी पूज रही। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिजी उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन ओर बटी व्यापक इंतजाम करी जा रही। यात्रा मार्गो पर सुरक्षा साफ सफाई पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करी जा रही। हरियाणा बटियाई शिव भक्त राजेशल बता कि बैरागी कैंप में डाक कावड़क वाहनों के लिए करीब 5/6,000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करी जा रही। पार्किंग में लाइट पेयजल खान और शौचालय के लिए सुविधा उपलब्ध छू। उन्होंने बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करो।
1: राम जी सभी का। मैं असंद करनाला से हरियाणा से हूँ। मेरा नाम राजेश है और यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 5-6,000 गाड़ियां हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है सभी की पार्किंग की और खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया है। जो प्रशासन है यहाँ पे व्यवस्था करके हम उससे संतुष्ट है। उत्तराखंड सरकार की हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
0: कांग्रेसक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली के संबोधित करो। यह दौरान श्री खड़गे देश और प्रदेश से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर अपन विचार रखी। उन्होंने भाजपा और उत्तराखंडक हितों का अनदेखीकरण और देवभूमि के नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता बटी हटाने के लिए सबों के एकजुट होना पड़त। कांग्रेसक राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्निवीर योजना के लिबेर भाजपा पर निशाना साधो। उन्होंने आरोप लगा कि अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य पर असर पड़ रहा।
2: अग्निवीर 4 साल काम करो घर को जाओ। अब पहला बटालियन वापिस आ रहा है ट्रेनिंग लेके। कौन भाई, पहले तो जितने आर्मी में वैकेंसी होते थे उस वैकेंसी को भर्ती करते थे। तुम लोग कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके लोग तो आर्मी में जाते नहीं, जान देते नहीं। ये तो जान लेने वाले लोग हैं, जान देने वाले नहीं है। ये आजादी के लिए हो, देश के लिए हो, ये लड़ने वाले लोग नहीं। ये अग्निवीर करके लगाकर हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद किए।
0: कांग्रेस दावा करो कि रैली में उमड़ी भीड़ उत्तराखंड में बदलावक संदेश दी रहे। रैली में कांग्रेसक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्यकदगड़ बहुते संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिकल आज अलमाड़ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करो। यह मौके पर श्री कौशिकल को की सरकार आपदा हबी निपटने के लिए 3 चरणों में कार्यक्रम संचालित कर रहे। पहली चरण में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दी गो जबकि दूसरे चरण में सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करी गई। तीसरे चरण में जिला स्तरीय अधिकारियों दगड़ बैठक कर भी तैयारियों की समीक्षा करी गई।
3: प्रबंधन की दृष्टि से हम लोग 3 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें हम सारे जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हैं। इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वर्ष भर चलता है। आपदा की दृष्टि से हम क्या काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम होता है हम मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल के आधार पर हम सारे जिलों में एज्यूम करके कि किस प्रकार की आपदा आ सकती है और कैसे हमें तत्काल उसको करना है, ये प्रोग्राम भी हमारा आपदा से पहले हम लगभग हर जिले को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा होता है कि हम एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें उस जिले में जाकर उस जिले के सारे विभागों को बुलाते हैं। आज आकर मैंने अल्मोड़ा जिले की

0: स्थिति को समझा, सबको बताया हमें क्या करना है और इस सारे काम को हम कर रहे हैं।
1: श्री कौशिकल कौ की आपदा प्रबंधन समूह सामूहिक जिम्मेदारी छू और इमें अधिकारी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका छू। उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति है भी प्रभावी ढंगल निपटनक लीजी नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करी जा रही। अलमर निवासी युवा नवाचारी रवि टमटाल सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काइनेक्सक सफल ट्रायल उड़ान भर बेर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर है। सीमित संसाधनों में तैयार करी गई यो फ्लाइंग व्हीकल पूर्व तरीकल इलेक्ट्रिक पावरल संचालित हूँ। मुख्यमंत्री वीडियो कॉलक माध्यमल रवि टमटा हेते बात कर बेर उन्हें उपलब्धि की तारीफ करी। उन्होंने लिखे प्रदेशक युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कौ की यस तरीकक नवाचार विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में नई संभावनाओं के जन्म दिनी। मुख्यमंत्री रवि टमटा के उन्हर नवाचार के अखिल बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग आश्वासन दियो। मौसम विभागल आनवाल 14 अगस्त तक राज्यक ज्यादातर जिलों में हल्क बटी मध्यम द्यो हुणक संभावना जते रहे। अगिल 48 घंटों के दौरान बागेश्वर पिथौरगढ़ चमोली नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भौते द्योग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहो। वहीं 11 और 12 अगस्त हेते राज्यक विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित करी जा रहो। पिछड़ 24 घंटों के दौरान राज्य में तापमान सामान्य है बे ज्यादा दर्ज करी गो। मौसम विभाग चेतावनी के देखते हुए सरकारल मैसू हेते संवेदनशील स्थानों पर नी जान और गाढ़ गदेरू है बे दूर रुणक अपील कर रहे। एक दगड़ मैसू हेते मौसमक स्थिति के देखते हुए सावधानी बरतनक अपील कर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रदेश सरकारल 9 लाख हबे ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के 146 करोड़ रुपए हबे ज्यादा डबल डीबीटी के माध्यमल हस्तांतरित करी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावलेल को सरकार सामाजिक न्याय समावेशी विकास और सामाजिक सभी वर्गों कल्याणक लिजी प्रतिबद्ध छू। कांग्रेसक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेल हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली के संबोधित करो और मौसम विभागल अगिल 48 घंटों के लिए बागेश्वर पिथौरगढ़ चमोली नैनीताल और चंपावत जिलों में द्योग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रो। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का यौ अंक समाप्त हो। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कुमावनी प्रादेशिक समाचार FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। रेड फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत। आवाज है राहत फतेह अली खान की, तनिष्क बख्शी का संगीत, गीतकार है मनोज मुंतशिर।

रमैया वस्तवैया फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। सचिन जिगर का संगीत है, प्रिया सरैया के बोल।

0: आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम योजना संवाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश से मैं योशिता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम योजना संवाद, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण बचत योजना की जो देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी परिवार की खुशियों का आधार होती है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और उसके भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना आए। लेकिन बढ़ती शिक्षा लागत, महंगाई और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए समय रहते बचत करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि

योजना की शुरुआत की थी। यह योजना न केवल यह बचत की आदत विकसित करती है बल्कि बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है जिसे विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। यह योजना सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण सुरक्षित मानी जाती है और इसमें मिलने वाला ब्याज भी सामान्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होता है। वर्तमान समय में इस योजना पर लगभग 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है जिसे सरकार समय समय पर संशोधित करती है। अब सवाल यह उठता है कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत केवल बालिका के नाम पर खाता खोला जा सकता है। बच्ची की आयु खाता खोलने के समय 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से यह खाता खुलवा सकते हैं। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए यह खाता खुलवा सकता है। विशेष परिस्थितियों जैसे जुड़वा बेटियों के जन्म पर नियमों के अनुसार अतिरिक्त खाते की अनुमति भी दी जा सकती है। यह खाता देश के किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो की आवश्यकता होती है। आजकल कई बैंक ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं जिसमें जमा राशि की जानकारी और खाते का संचालन आसान हो गया है। अब बात करते हैं निवेश राशि की। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये प्रतिवर्ष जमा करना आवश्यक है जबकि अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा किया जा सकता है। यह राशि एक मुश्त या किश्तों में जमा की जा सकती है। यदि किसी वर्ष न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती तो खाता निष्क्रिय हो सकता है जिसे बाद में जुर्माना देकर पुनः सक्रिय कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका लंबी अवधि का लाभ है। खाते की अवधि 21 वर्ष की होती है। हालांकि जमा राशि केवल 15 वर्षों तक ही जमा करनी होती है। इसके बाद खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई परिवार हर महीने नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करता है तो बेटी के 21 वर्ष की आयु तक एक बड़ी राशि तैयार हो सकती है। यही राशि आगे चलकर उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स या विवाह जैसी जरूरतों में सहायक बनती है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ भी इसे बेटियों के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद योजना मानते हैं। अब जानते हैं इस योजना में मिलने वाले टैक्स लाभ के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना को ईईई श्रेणी में रखा गया है यानी इसमें जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि तीनों कर मुक्त होती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत इसमें जमा की गई राशि पर कर छूट का लाभ भी मिलता है। यही वजह है कि योजना निवेश और टैक्स बचत दोनों दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस योजना में बीच में पैसे कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर या 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए खाते से लगभग 50% तक राशि निकाली जा सकती है। यह सुविधा परिवारों को शिक्षा खर्च के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है और अगर किसी कारणवश खाता समय से पहले बंद करना पड़े तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। चलिए जानते हैं। बालिका की गंभीर बीमारी, अभिभावक की मृत्यु या अन्य विशेष परिस्थितियों में समय पूर्व खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। श्रोताओं, आज के समय में आर्थिक योजना बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। जब परिवार बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य की आर्थिक तैयारी शुरू कर देता है तो वह बेटी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का तेजी से विस्तार हुआ है। डाकघरों और बैंकों के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। कई परिवारों ने इस योजना को अपनाकर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित निवेश की दृष्टि से यह योजना काफी मजबूत है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। हालांकि निवेश करने से पहले परिवार को अपनी आय, आवश्यकताओं और लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बेटी न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही दिशा देती है।
आज के समय में

0: बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन, चिकित्सा, व्यापार और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे देश का नाम भी रोशन कर रही हैं और समाज की सोच को बदलने का काम भी कर रही हैं। लेकिन किसी भी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए केवल हौसला ही नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी बहुत आवश्यक होती है। अक्सर देखा जाता है कि उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर परिवारों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बेटियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है या उनके सपनों को सीमित करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि माता पिता पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से बचत करें तो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियां काफी आसान हो जाती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसी सोच को मजबूत करती है। यह योजना माता पिता को प्रेरित करती है कि वे बेटी के जन्म के साथ ही उसके भविष्य के लिए बचत शुरू करें। धीरे धीरे ये बचत एक बड़े आर्थिक सहारे में बदल जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल धन जमा करने की योजना नहीं है बल्कि यह बेटियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है। यह संदेश देती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जब परिवार बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे यह एहसास होता है कि उसका परिवार उसके सपनों के साथ खड़ा है। अब माता पिता बेटियों के शिक्षा और करियर को लेकर पहले से गंभीर और सजग हो रहे हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि बेटी की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता ही उसके सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम बेटियों को केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि अवसर भी दें, उन्हें अच्छी शिक्षा, सही मार्गदर्शन और आर्थिक मजबूती प्रदान करें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को खुलकर पूरा कर सकें। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज प्रगतिशील बनेगा और देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इसी के साथ अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये थी क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम योजना संवाद। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक

को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी।
हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से अपने जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख

0: सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को रमेश चंद्रा और
1: कल्पना पंकज की ओर से नमस्कार।
0: कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ प्यारे प्यारे पत्र हैं और कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं
1: जी,
0: क्यों ना इनको पढ़ने का सिलसिला आप शुरू करें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे श्रोताओं ने हमें बहुत सारे मैसेज लिख भेजे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से बहुत बड़ा आदाब। 1 अगस्त को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम सुना, इसमें गीतों के साथ देहरादून शहर की जानकारियां भी बताई गई, सुनकर अच्छा लगा। 2 अगस्त का बच्चों का प्रिय कार्यक्रम

0: मंडल भी सुना, इसमें कहानी सुनी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी कहानी लगी, चर्चा भी पसंद आई। और लिखते हैं कि माँ का दूध स्वस्थ बचपन का आधार, इस विषय पर हमने चर्चा भी सुनी। और लिखते हैं किसी दिन व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, नमस्कार देहरादून कार्यक्रम भी सुना, और नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान को लेकर बातचीत सुनी, पसंद आई। और लिखते हैं कि युवाणी कार्यक्रम में हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम सुना, हमें अच्छा लगा। कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा सुनी, मित्रता दिवस पर बहुत पसंद आई। और लिखते हैं कलाकार कार्यक्रम में गीतकार शकील बदायूनी के गीत सुने, कार्यक्रम पेश किया था कल्पना पंकज ने, और कार्यक्रम अच्छा लगा। 4 अगस्त को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में हेमलता पांडे जी से समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष जानकारी सुनी, अच्छी लगी। महिला जगत कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनी, बैंक बचत और महिलाएं श्रीमती तनुजा जोशी के साथ सुमन बगासी जी की बातचीत अच्छी लगी। और लिखते हैं कि एक कलाकार कार्यक्रम में गीतकार किशोर कुमार को सुना, बहुत अच्छा लगा। और लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून से कार्यक्रम अच्छे अच्छे सुनने को मिल रहे हैं। और पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम हमारी तरफ से ऐप पर नहीं चल रहा था, तो हमने फोन कॉल कर कार्यक्रम को सुना, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम में खतों के जवाब सुनकर अच्छा लगा। और लिखते हैं कि मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे शहर बरेली में 6, 7, 8 अगस्त को उर्स ए आला हजरत चल रहा है। इस उर्स में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और देश विदेश से भी लोग तशरीफ लाते हैं, और बरेली शहर से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर वापस जाते हैं।
1: नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी जी, महजवी निसार अंसारी जी, नुजहत फातिमा अबरार और आपके जो परिवारीजन हैं निसार जी, उन्होंने जो पत्र लिखा है और
0: जी
1: बहुत ही प्यारा सा पत्र लिखा है, क्योंकि आपने पत्र बहुत ही विस्तार से लिखा है। आप लिखते हैं कि 1 अगस्त को नमस्कार देहरादून सुना,
0: जी
1: इसमें देहरादून शहर की जानकारियों के अलावा जो गीत सुनाए गए आपको बहुत पसंद आए। 2 अगस्त को बच्चों का कार्यक्रम भी सुना आपने, और सबसे बड़ी बात कि
0: जी
1: आपको ये याद है कि इस कार्यक्रम में आपने सुना क्या, आपने
0: जी
1: कहानी तक के बारे में लिखा है कि कहानी का शीर्षक क्या था, है ना, मेरी
0: जी
1: मम्मी कहानी।
0: हाँ
1: बच्चों के लिए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी ही है कहानी, और आपको पसंद आई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
0: जी
1: आपने एक भेंट वार्ता की भी चर्चा की जिसका विषय था माँ का दूध स्वस्थ बचपन का आधार,
0: जी
1: व्हाट्सएप फरमाइश भी आपको अच्छी लगी, नशा मुक्त अभियान को लेकर जो बातचीत थी वो भी आपको बहुत पसंद आई। आपने हमारे आकाशवाणी देहरादून के अनेक कार्यक्रमों के बारे में
0: जी
1: लिखा है। आपने एक ही कलाकार में गीतकार शकील बदायूनी के गीतों के बारे में भी लिखा है, जिसे कल्पना पंकज जी ने प्रस्तुत किया था, नमस्कार देहरादून, जिसमें हेमलता पांडे जी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष जानकारी आपने सुनी इस कार्यक्रम में, वो भी आपको अच्छी लगी। तो आपने इस तरह से तमाम बातें जो बहुत ही अच्छी अच्छी हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में
0: जी
1: आपने लिखी, और सबसे बड़ी बात यह है आपको ये जानकारियां बहुत अच्छी लगी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है
0: जी
1: निसार अहमद अंसारी जी। और हम यही चाहेंगे आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, उनके बारे में इसी तरह से विस्तार से जानकारी साझा करते रहें। और आपने लिखा है निसार जी कि 6, 7, 8 अगस्त से आला हजरत का जो उर्स है वो चल रहा है, और इस उर्स में सारी दुनिया से लोग आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, और बरेली शहर से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है,
0: जी
1: प्यार मोहब्बत का देश है, और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहते हैं कि इसी तरह से भविष्य में भी सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रहेंगे। और आपने एक प्यारा सा हमें पत्र लिख भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी और जहां तक रमेश चंद्र जी, हम देख रहे हैं हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम ऐप पर नहीं चल रहा था, तो ऐसा तो नहीं होता कि हर बार ऐप पर प्रोग्राम आपको नहीं मिलते? प्रोग्राम हमारे यहाँ से लगातार प्रसारित हो रहे हैं, और लेकिन अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आजकल मोबाइल ऐप के साथ ओटीटी वेव्स प्लेटफॉर्म पर भी हमारे प्रोग्राम उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन कभी कभी निसार जी होता ये भी है
0: जी
1: कि ऐप पर कार्यक्रम जा रहा होता है और हमारे मोबाइल में जो डेटा स्पीड है वो बहुत स्लो होती है,
0: स्लो होता
1: तो
0: है।
1: इस कारण भी कभी कभी हम अपने कार्यक्रम जो हैं उन्हें नहीं सुन पाते हैं,
0: जी
1: और कभी कभी हमारे यहाँ से भी ऐसा हो जाता है कार्यक्रम ऐप पर नहीं जा पाता इंटरनेट की वजह से, या हमारा जो ट्रांसमीटर है
0: जी
1: उसमें भी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, वो मशहूर दूरी में है, काफी ऊंचाई पर है, आपने मोबाइल पर हमारा कार्यक्रम सुना, ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। और हम यही चाहेंगे कि आपका जो प्यार है इसी तरह से आकाशवाणी देहरादून को मिलता रहे
0: जी।
1: और आपको पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं शेरकोट जिला बिजनौर से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में हमारे नाम शामिल नहीं होते।
1: शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता है नदीम बाकी, इन्होंने एक मैसेज लिखा है और इस मैसेज में उन्होंने लिख भेजा है कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में इनके मैसेज शामिल नहीं होते हैं। तो नदीम बाकी जी, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे प्रत्येक श्रोता के जो मैसेजेज हैं या पत्र हैं कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। श्रोता ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा हर कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा संख्या में मैसेज या पत्र आ जाते हैं तो सभी मैसेज या पत्र शामिल हो पाना संभव नहीं होता है। नदीम बाकी जी, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप आगे भी अपने मैसेज और पत्र इसी तरह भेजते रहिए, कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज और पत्र हमारे कार्यक्रमों में यथाशीघ्र शामिल हो। आपने एक मैसेज भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहम, साथ में मोहम्मद आलम हाशमी लिखते हैं कि 6 अगस्त को प्रसारित व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, जिसमें खूबसूरत गीतों की प्रस्तुति दी गई थी।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद और आपके परिवारीजन हैं जो सैयद आलम हाशमी जी, इन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रमों को भी सुनिएगा, उनके बारे में भी आपके जो विचार हैं उनको भी हमें लिख भेजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। आपने ये जो मैसेज भेजा सैयद आलम हाशमी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालो मिस्त्री मोहम्मद मोनाजिर अंसारी। आप लिखते हैं एक शेर, एक कसक से दिल में दबी रह गई, एक कसक से दिल में दबी रह गई, जिंदगी में उनकी कमी रह गई, इतनी चाहत के बाद भी वो हमें न मिले, शायद मेरी मोहब्बत में कुछ कमी रह गई। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। लिखते हैं कि हमें देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। एक कलाकार कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसमें सभी कलाकारों के बारे में अच्छी जानकारी दी जाती है। महिला जगत कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगता है, उसमें जो जानकारी प्रसारित की जाती है वो बहुत अच्छी होती है। और लिखते हैं कि कहीं ना कहीं हम पुरुष भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा लेते हैं। नमस्कार देहरादून, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इस कार्यक्रम में देहरादून की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है। और लिखते हैं कि सप्ताह भर के कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है और पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश नहीं किया गया, ऐसा क्यों?
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी जी, आपने ये जो शेर लिखा है, एक कसक सी दिल में दबी रह गई, जिंदगी में उनकी कमी रह गई, तो हम ये कहेंगे कि अगर आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनेंगे तो हमारे कार्यक्रमों को सुनकर आपके दिल में कोई कसक नहीं बचेगी
0: जी।
1: और कोई कमी भी अनुभव नहीं होगी
0: जी।
1: तो इसके लिए आपको हमारे कार्यक्रमों को सुनना होगा। और आपने कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब लिखा है, तो हमारी ओर से भी आपको नमस्कार, प्यार भरा आदाब। आपको केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, एक कलाकार कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया
0: जी।
1: और आप आगे लिखते हैं इस कार्यक्रम में कलाकारों के बारे में जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती है, आप महिला कार्यक्रम भी सुनते हैं और इस कार्यक्रम में महिलाओं के अलावा जो पुरुष होते हैं वो भी इस कार्यक्रम से लाभ उठा लेते हैं, तो कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। निश्चय ही हर कार्यक्रम से हर कोई लाभ उठा सकता है
0: जी।
1: आप नमस्कार देहरादून कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं, ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, इससे आपको देहरादून के बारे में दी गई जानकारी भी मिल जाती है, साथ ही अन्य जानकारी भी मिल जाती है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है लाल मोहम्मद अंसारी जी कि आपको इतना सारा हमारे कार्यक्रमों के बारे में पता है, और हम यही चाहेंगे कि इनके अलावा आप हमारे अन्य कार्यक्रम भी सुने, उनके बारे में भी अपने मैसेजेस और पत्र के माध्यम से विचार साझा कीजिए।
0: जी, जी।
1: आपने लिखा है पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश नहीं किया गया, ऐसा क्यों? हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम

0: किया गया। समय था 8:15।
1: जी
0: हो सकता है कि नहीं कारणों बस आप इस कार्यक्रम को न सुन पाए हो, लेकिन हमारे ही एक श्रोता ने हमें लिख भेजा है कि उन्होंने ये कार्यक्रम मोबाइल फोन के द्वारा सुना। तो देखिए, उन्होंने सुना, कार्यक्रम तो प्रसारित हुआ ही। और हम लाल मोहम्मद अंसारी जी आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे कार्यक्रम को सुनाए। ऐप में कभी कभी तकनीकी कारणों से जब हमारे ही नेट की स्पीड कम आ रही होती है तो हम आकाशवाणी देहरादून ही नहीं अन्य केंद्रों के जो कार्यक्रम है उनको भी नहीं सुन पाते। इसके अलावा जब हम नेट की सर्फिंग कर रहे होते हैं तो वो तो उन चीजों को भी हम नेट की स्पीड कम होने के कारण सर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसा कई बार होता है, लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने एक मैसेज भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईश्वर राज पप्पू ठाकुर, साथ में प्राची ठाकुर लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम कब और कौन सा प्रसारित किया जाता है कृपया हम लोग जानना चाहते हैं, ताकि कार्यक्रम में हम भी अपनी सुझाव जिज्ञासा और साथ में कार्यक्रमों की तारीफ भेज पाए।
0: नया पारा बेराई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई, ईशराज और आपके परिवारी जनों ने हमें ये एक प्यारा सा, और मुझे लगता है पहली बार आपने एक मैसेज लिखा है हमें।
1: जी जी,
0: आपने लिखा है कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम कब और
1: कौन
0: से दिन प्रसारित किया जाता है। तो हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे बसंत कुमार जी कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम हर शनिवार को 8 बजे प्रसारित किया जाता है, लेकिन जब हमारी संसद चल रही होती है तो संसद समीक्षा के प्रसारण की वजह से हम इस कार्यक्रम को 8:15 पर प्रसारित करते हैं उसी दिन, मतलब शनिवार को।
1: जी,
0: तो आप जब संसद चल रही हो तो हमारे कार्यक्रम को 8:15 पर सुन सकते हैं, जब संसद नहीं चल रही होती है तो 8 बजे दिन रहेगा
1: शनिवार
0: का सुन सकते हैं। आपने लिखा है कि आप हमारे आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों के बारे में अपने मैसेज और पत्र के माध्यम से प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर हमें आप अपने मैसेज या पत्र के माध्यम से कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिक्रियाएं भेजेंगे, अपने सुझाव भेजेंगे। तो बसंत कुमार जी, मुझे लगता है आपको अब जानकारी हो गई होगी कि कार्यक्रम शनिवार को 8:15 पर प्रसारित होता है, जब संसद चल रही होती है तब, जब संसद नहीं चल रही होती है तब कार्यक्रम शनिवार को 8 बजे प्रसारित होता है। अगर हमें आप अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, शिकायतें भेजेंगे हमें अच्छा लगेगा। कल्पना जी, मैं देख रहा हूं अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो क्यों ना आप हमारे श्रोताओं को मैसेज और पत्र भेजने का पता बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 है। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
0: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। इशक जादे फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत शालमली खोलगड़ी की आवाज में। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: आकाशवाणी देहरादून केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: भूमि फिल्म से आइए अब सुनते हैं ये अंतिम गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। संगीत है सचिन जिगर का।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और

0: की राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा

0: क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना

0: समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein.

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और

व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से है। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के वृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण

0: संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्यायसंगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: January 14, 1902 दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917 पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही

0: गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिली राम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान के भेष तैयार करने में हेलन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय किया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलन लेपचा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा। अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके, थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के। लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्रों में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलन लेपचा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वन।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वो भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I am acting today as a hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग धैर्य समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता

0: आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
1: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
2: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए अब महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीप शिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है, कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है, जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

लेंगे। किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए

0: आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channavira Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishen जपताल और द्रुत तिंताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्वरी।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिंस हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्वरी इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिंताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री will now present राग जोग।

0: तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you will listen.

0: According to Shahna Ye recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
0: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है.
3: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां. आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं. देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे. 100.5 AIR FM देहरादून पर. गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून.
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं. स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है. आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा. कृपया प्रतीक्षा करें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है. श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें. श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौती का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है.
5: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है. अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है. मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है. श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
6: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा. इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी.
4: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया. सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डाविन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा

जी को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।